नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देशभक्ति वह है जो कठिन समय में भी अपने देश के साथ खड़े रहने का साहस दें और समृद्धि के समय में उसे बेहतर बनाने का प्रयास सिखाएं। यह भावना हमें केवल देश से प्रेम करना ही नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने, सुधारने और उसकी गरिमा को बनाए रखने का संकल्प भी देती है।

भक्त नहीं थी बल्कि भक्ति की साक्षात मूर्ति थी। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन, भय या सामाजिक नियमों से परे होती है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था।

तुलसीदास की भक्ति का केंद्र भगवान श्री राम थे। उन्होंने राम को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि आदर्श पुरुष, मर्यादा और धर्म के प्रतीक के रूप में देखा। उनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने राम कथा को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया।

मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सच्चा और संतोष देने वाला मार्ग है। जब व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर को स्वीकार करता है, तब उसे बाहरी संसार की कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। मीरा ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा से बड़ी होती है।

तुलसीदास की भक्ति का सबसे बड़ा गुण उनका समर्पण था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से राम भक्ति में अर्पित कर दिया था। उनके लिए संसार के सभी मोह माया तुच्छ थे। वे केवल अपने आराध्य के नाम में ही लीन रहते थे। उनकी रचनाओं में बार बार यह भाव प्रकट होता है कि सच्ची शांति और आनंद केवल ईश्वर की भक्ति में ही मिल सकता है।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन। विषय है सकारात्मक सोच।
1: सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की अप्रिय परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दें। इसका अर्थ यह है कि आप उन परिस्थितियों का सामना अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से करें। आप यह विश्वास रखते हैं कि सबसे अच्छा होगा, न कि सबसे बुरा। सकारात्मक सोच अक्सर आत्मसंवाद से शुरू होती है। आत्मसंवाद उन अनकहे विचारों की निरंतर धारा है जो आपके मन में चलती रहती है। ये स्वचलित विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। कुछ आत्मसंवाद तर्क और समझ से आते हैं, जबकि कुछ गलत धारणाओं, अधूरी जानकारी या पहले से बनी अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि आपके मन में चलने वाले विचार अधिकतर नकारात्मक हैं, तो आपका जीवन दृष्टिकोण निराशावादी होने की संभावना है। वहीं यदि आपके विचार अधिकतर सकारात्मक हैं, तो आप आशावादी हैं, यानी सकारात्मक सोच का अभ्यास करने वाले व्यक्ति। सकारात्मक सोच के स्वास्थ्य लाभ। शोधकर्ता लगातार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सकारात्मक सोच और आशावाद का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके संभावित लाभ इस प्रकार हैं: जीवन काल में वृद्धि, अवसाद यानी डिप्रेशन की कम दर, तनाव और दर्द का कम स्तर, बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, हृदय स्वास्थ्य का बेहतर होना और हृदय रोग व स्ट्रोक से मृत्यु का खतरा, कैंसर से मृत्यु का कम जोखिम, श्वसन संबंधी रोगों से मृत्यु का कम खतरा, संक्रमण से मृत्यु का कम जोखिम, कठिन समय और तनाव में बेहतर तरीके से सामना करने की क्षमता। हास्य को अपनाएं, कठिन समय में भी मुस्कुराने और हंसने की अनुमति दें, रोजमर्रा की घटनाओं में हास्य को खोजें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन सीखें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणादायक और सहयोगी हों। सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें, अपने आप से वही बातें कहें जो आप दूसरों से कहेंगे, खुद के प्रति दयालु और प्रोत्साहित करने वाले बने। जीवन में कठिन समय का आना स्वाभाविक है, ऐसे में दुख, क्रोध या तनाव महसूस करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना। यह अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाता है। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रोज उन लोगों, अनुभवों और चीजों के बारे में लिखें जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। नियमित अभ्यास आपको कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखेगा। दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप किसी की कठिनाई में साथ देते हैं तो आपको संतोष मिलता है और एक जुड़ाव की भावना विकसित होती है। दूसरों की मदद करना एक ऐसा कार्य है जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आपके जीवन में आशावाद, स्वास्थ्य, आर्थिक संतुलन और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यदि नकारात्मक विचार आए तो उसे तर्कसंगत रूप से समझें और सकारात्मक पुष्टि में बदलें। सकारात्मक मानसिकता यानी पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आपके स्वास्थ्य और सफलता को बेहतर बनाता है। जब आप कृतज्ञ यानी आभारी और खुश महसूस करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। सकारात्मक लोग आमतौर पर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं। शोध से पता चलता है कि आशावादी लोगों में अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं और वे दैनिक जीवन में कम तनाव महसूस करते हैं। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और संतुलित आहार अपनाते हैं। ये सभी स्वस्थ आदतें आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। दीर्घकालिक पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच के कुछ और लाभ: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आप अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने, रचनात्मक बनने, मजबूत नेतृत्व विकसित करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाते हैं। सकारात्मक सोच एक आदत है जो अभ्यास से विकसित होती है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए हमेशा खुद से कहें, स्टे पॉजिटिव।
0: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बायो गैस का क्या उपयोग है, इस विषय पर जानकारी। जानकारी दे रही हैं बिंदु भाटे।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम खेती की बात में बात करेंगे बायोगैस संयंत्र कसो लगाओ। ये सबसे सस्तो और सुरक्षित आसानी से लगना वालो संयंत्र छे, जो कि प्रकृति को एक सहायक भी छे और अपना स्वास्थ्य का लेना भी घणो अच्छो छे। ये संयंत्र लगाना में अपना ज्यादा खर्चो नहीं आवतो है और कम खर्च में एक अच्छी सुविधा अपना को मिलज, अपना परिवार का मिलज। हम खेती बाड़ी वाला लोग छे, ढोर डंगर भी पाड़े, तो ये ढोर डंगर का जो गोबर निकल ओकासी ये चलज, एका लेनो एक गोबर गैस भी कवान। आपने देखो छोएगा आपका गाँव में भी ये संयंत्र लगेल छे, ने एका लगावना सी घर में भी न अपनी खेती बाड़ी में घनी सारी सुविधा वी जाए। घर में छे तो अपन जैसा चूल्हा में लक्कड़ बाड़ा कंडा बाड़ा, एकासी अच्छो छे कि अपन ये गैस जो संयंत्र लगाए, एकासी अपन गैस को चूल्हो लगे के ना ओम छे तो अपनो घर को जो भी भोजन छे ओखा बनाई सकान और दूसरा काम में भी अपन इनी गैस को उपयोग करी सकान। मुख्य रूप से अपन छे तो ईंधन का रूप में एक उपयोग में लावन। स्थिर गुंबद वाला संयंत्र लगावना का लेना एम ईट सीमेंट बोल्डर रेत गिट्टी जीआई पाइप सॉकेट सीमेंट पाइप निकास की टंकी न पेंट, ये सब सामान लगे। एकासी बनावना से एक अपना का आरु फायदो मिली सकल कि एकासी गोबर गैस अपन ऊपर गोबर तो उपयोग में लावांगा न ओकासी जो छे तो ये खाद बनेगा वो छे तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश ये तत्व है और ये अपना खेती बाड़ी का लेना घना जरूरी भी छे। ये छे तो गैस संयंत्र लगाने से एम गोबर बहुत जल्दी अपघटित हुई जाए और एक ही खाद बनी जाए। ये एक सड़ल खाद अपना छे तो अपना खेती बाड़ी का लेना मिलज और एकासी अपना खेत की माटी दुई तीन साल तक घनी उपजाऊ हुई जाए और की उर्वरा शक्ति बढ़ी जाए। तो अपनी खेत की जो माटी छे उर्वरा शक्ति बढ़ावना का लेना हमको ये संयंत्र जरूर से लगाउनु चाहिए। ये माँ छे तो लगावना का लेना कुछ अनुदान भी अपना को मिला और छे तो लगावना में अपना सरकार की तरफ से जो सहायता मिले। एक छे तो काली माटी न जहाँ झाड़ होए वो का पास में नहीं लगाउनु, क्योंकि एकी जो दीवाल न छे ओम अगर झाड़ की जड़ न चली जाए काली मट्टी लगी जाए तो ये जो एकी दीवाल न छे वो खसकी सकज ओम दरार न भी आई सकज। तो एका लेना एक ऐसी भूरभूरी मुरुम वाली जगह होए वहाँ लगाउनु चाहिए। ये संयंत्र का अगर शौचालय से जोड़ान तो ओका लेना कुछ अनुदान कम मिलज, तो को भी अपन ध्यान रखा और छे तो इस तरह से हम इस संयंत्र को उपयोग करी सकान। एकासी मिलने वाली खाद घणो फायदो दे, इनी खाद को हम अपना खेत में उपयोग करान तो जो खेत में जो भी फसल हो वो बहुत अच्छी हो, उत्पादन अच्छो मिले और वो हमारा स्वास्थ्य का लेना भी अच्छी रहे। तो हमका इना बायोगैस संयंत्र को उपयोग एका लेना भी करना चाहिए। हर कोई एक चला ही सकज और एको उपयोग करी सकज। एकासी जो मीथेन गैस निकल वो ज्यादा मात्रा में निकल तो एको उपयोग हम अपना ईंधन में करंज और ये छे तो अपना को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। एका लेना हमका इना गैस संयंत्र को उपयोग जरूर सी करनु चाहिए और हर किसान भाई बहन का अपना आरू भी जो किसान भाई बहन छे उनका सहयोग से ये संयंत्र लगाउनु चाहिए और एको उपयोग करनु चाहिए। एका लेना कहो गयो कि बायोगैस लगाओ न जीवन खुशहाल बनाओ। आज हमारा सभी किसान भाई बहन ने सी योज कहनु छे।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुना बायोगैस का क्या उपयोग है, इस विषय पर बिंदु भाटे की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक की। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अतुल भट्ट के गाए गीत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे शंकरलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे 11:00, फिल्म संगीत 12:00 और 2:00। संग्रहालय से 12:30 पर महिला कार्यक्रम 1:00, लोक संगीत 1:30 पर, सुगम संगीत 1:45 पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश 2:30 पर। रोजाना शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी। 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुगम संगीत के अंतर्गत विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गीत हम आपको सुनवाएंगे। 6:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं शिल्पा मिश्रा और मुकेश बागड़ा के गाए लोकगीत। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 का समय है कार्यक्रम चित्रगीत का। 9:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा मन भावन होगा 10:00। 10:30 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन आप सुन सकते हैं। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94+200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायां आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायां आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000+ मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60+200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये चतुस्त्रिंशदुत्तर द्विशतम् निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन अष्टोत्तर शतम् आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायां च विश्वासं स्थापितवन्तः।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य विंशत्यधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते। इति वार्ताः।

0: लिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालूकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल और 8:30 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक की।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं अतुल भट्ट के गाए गीत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शंकरलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग गुजरी तोड़ी आप सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार हम आपको आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित, बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत। समाज सेवा में ही जीवन की सार्थकता, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में अब तक 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। तोल पर्ची बनाने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 170 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। पुडुचेरी में कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कल दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए नए सवेरे का प्रतीक है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि समाज की सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। भारतीय संस्कृति के ध्येय वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार शिक्षित व्यक्ति का परम कर्तव्य वंचितों और गरीबों की खुशहाली और उत्थान के लिए कार्य करना है। राज्यपाल श्री पटेल कल भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आत्मविश्वासी, नवाचारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी शिक्षा और प्रतिभा के द्वारा आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत बनाने में सहभागिता करें। इस अवसर पर राज्यपाल ने फार्मेसी, विधि, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पत्रकारिता और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पीएचडी उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। देश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एलपीजी वितरकों के लिए कोई कमी नहीं है और कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग 70% तक बहाल कर दी गई है।
2: कमर्शियल एलपीजी में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,05,000 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
0: वहीं उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता शिविर देशभर में आयोजित किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 7,48,000 किसानों से 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय अब शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक का तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि अभी तक 14,75,000 किसानों द्वारा गेहूं उपार्जन

लिए स्लॉट बुक कराए गए हैं। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 की गई है तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए समयबद्ध एवं समन्वित रूप से कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में CTVS एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी न होने पर विशेष जोर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बुधनी, दमोह एवं छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्रदेश में शिक्षा को मानवीय एवं मूल्य आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूली शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ वाल्मीकि ETC सेंटर नीलबड़ और राज्य आनंद संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार ने किया। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 18 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 2160 शिक्षक सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम तथा भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सहयोग से आयोजित कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का कल रविन्द्र भवन में समापन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 4 मई तक तथा स्पेशल ब्रांच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की विभिन्न विशेष इकाइयों के चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि वर्तमान समय में ड्रोन हमलों सहित नई प्रकार की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए इस प्रकार का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से तेज गर्मी के साथ कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने हरी झंडी दिखाकर कल 10 इलेक्ट्रिक वाहनों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान गोले के मंदिर के समीप निर्माणाधीन आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की OPD का अवलोकन किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान नामांकन, ट्रांजिशन दर, ड्रॉपआउट, FLN गतिविधियां और साइकिल वितरण तथा अपार ID के संबंध में दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। बड़वानी में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। डिंडौरी जिला प्रशासन के द्वारा कल गल्ला गोदाम मंडी में चाट चौपाटी का शुभारंभ किया गया। नीमच के मनासा में शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई कल प्रशासन के द्वारा की गई। बैतूल में जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए बैतूल कलेक्टर ने HLBC यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जनगणना में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए और इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागीय गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत। समाज सेवा में ही जीवन की सार्थकता, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा। प्रदेश में अब तक 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। तौल पर्ची बनाने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। और IPL में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरमू में जाना। ये चौपाई रामायण के उस प्रसंग की है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचते हैं तो गंगा पार करने के लिए एक नाव मांगते हैं। केवट, जो प्रभु का परम भक्त था, तुरंत नाव लेकर नहीं आता है बल्कि बहाने बनाता है। केवट कहता है कि उसने सुना है कि आपके चरणों की धूल में जादू है जिससे पत्थर की शिला सुंदर स्त्री यानी अहिल्या बन गई। केवट डर जताता है कि उसकी लकड़ी की नाव तो पत्थर से भी कोमल है, कहीं वो स्त्री बन गई तो उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। केवट शर्त रखता है, पहले वह प्रभु के चरण धोएगा फिर नाव में बिठाएगा। दयालु श्री राम केवट के प्रेम को समझ जाते हैं और मुस्कुराकर उसे पैर धोने की अनुमति देते हैं। केवट आनंदित होकर चरण धोता है और चरणामृत प्रसाद की तरह ग्रहण करता है। ये प्रसंग सुनते हुए आपके स्मृति पट पर नदी, नाव, केवट, श्रीराम सब दिखाई दे रहे हैं ना? मैं आपका ध्यान उस नाव की तरफ ले जाना चाहती हूँ जो गंगा तट पर है। लकड़ी की नाव का प्रसंग हमें उस युग यानी त्रेता युग में भी मिलता है, यानी पशुओं को छोड़ दें तो शायद नाव परिवहन का सबसे पुराना माध्यम है जो आज भी प्रचलित है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी नाव पर बहुत सारी फिल्में जो है वो फिल्माई गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज अमृता लगता है नाव पर फिल्माए गए गीत सुनवाने वाली है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइए आपको नाव में बिठाकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं में नदी की सैर करवाते हैं। नाव पर फिल्माया ये गीत सुनिए और याद कीजिए कि आप कौन कौन सा गीत जानते हैं जो नाव पर फिल्माए गए हैं। सोचिए जरा।

ये गीत ललिता देउलकर के गाए सबसे मशहूर गानों में से एक है और साथ में है रफ़ी साहब। इस गाने में दिलीप कुमार साहब नाव चला रहे हैं और शुरुआत में ही जिस तरह से वे चप्पू चलाकर नाव को आगे बढ़ाते हैं, ओहो, कभी इस गाने के वीडियो में उनका वास्तविक प्रयास तो देखिए। साथ में है कामिनी कौशल जो अपनी आँखों से ही बहुत कुछ कह देती हैं। आपको बता दें कि इस गाने की जो शूटिंग हुई है वो किसी असली बाहरी लोकेशन की नहीं है बल्कि सेट पर फिल्माया गया है। इसे सी रामचंद्र जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, दिलीप कुमार, कामिनी कौशल जैसी दिग्गज एक्टर ने इसे जीवंत बना दिया। नाव फिल्मों को ही नहीं बल्कि साहित्य को भी, यानी लेखकों और कवियों को भी आकर्षित करती रही है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार, जिसमें चांदनी रात में नौका विहार के खूबसूरत परिदृश्य को विश्लेषित किया गया है। चांदनी रात में नौका विहार करना एक अत्यंत रोमांटिक, शांत और मनमोहक अनुभव है, जहां पानी की सतह पर चांद के किरणों की चादर ऐसी प्रतीत होती है जैसे चांदी की चादर हो। शांत लहरों के बीच नाव का धीरे धीरे चलना, शीतल हवा और चारों ओर प्रकृति का सुनहरा सौंदर्य मन को अद्भुत शांत और राहत प्रदान करता है। और ऐसे में ये गीत बज उठे तो

कहिए, नाव से जुड़ी आपकी कौन सी खूबसूरत यादें हैं? भारत में बहुत सारे लोगों के लिए तो नाव जो है वो रोजगार का साधन है, जीवन यापन का हिस्सा है। कुछ लोगों को अपने गांव नाव ही पहुंचाती है। कभी कभी तो दुल्हन विदा होती है नाव पर, एक गांव से दूसरे गांव। हमारे कुछ श्रोता तो विद्यालय भी गए होंगे नाव पर। 3-4 लोग धक्के देकर जब नाव पानी में उतारते हैं और फिर उसी पर सवार होकर पानी की सतह पर तैरते हुए अपने साथियों के साथ चलते हैं तो मानो मन में उमंग भर जाता है। सीधी साधी लकड़ी की नाव हो या शाही अंदाज में सजी धजी नाव, कुछ शाही नाव की सजावट तो इतनी खास होती है कि झील में जब तैरती है तो मानो उसकी चाल भी शाही हो जाती है। याद कीजिए कश्मीर का शिकारा, जिस पर कई गीत फिल्माए गए। हाँ, कश्मीर की कली का दीवाना हुआ बादल गीत, जिसमें कश्मीरी पोशाक पहने शर्मिला जी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और अपने ख़ास अंदाज में नज़र आए शम्मी कपूर साहब, खिली धूप में भी रोमांस को एक अगले पायदान पर पहुंचाते हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का ये गाना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जिसमें शर्मिला जी बेहद खूबसूरत कश्मीरी पोशाक पहनी हैं और सखियों की टोली है, ढेर सारे नाव हैं और शम्मी कपूर अपने मदमस्त अंदाज में पूरे जोश के साथ ऐलान करते हैं कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, चारों ओर नाव ही नाव। और गाने के आखिरी में शम्मी कपूर साहब सूट बूट पहने नाचते नाचते छपाक से झील में गिर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, याद कीजिए जरा, जब हम नाव में चल रहे होते हैं, लहरों का बहाव, चप्पू की आवाज, चारों तरफ पानी जब होता है, तो एक पल ऐसा जरूर आता है मानो आसपास कोई नहीं है, हम खुद के साथ बैठे हैं, है ना। नाव और जीवन का संबंध बहुत गहरा और प्रतीकात्मक है। जीवन को अक्सर एक नदी और मानव को नाविक माना गया है, जो जीवन रूपी नाव को लेकर चल रहा है। नाव का उद्देश्य एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है। ठीक इसी प्रकार जीवन का उद्देश्य जन्म से मृत्यु तक की यात्रा को पूरा करना है। जिस तरह नाव को नदी की लहरें, हवा का रुख और मौसम प्रभावित करते हैं, वैसे ही जीवन में भाग्य, परिस्थितियां और चुनौतियां प्रभावित करती हैं। एक कुशल नाविक पूरे संतुलन के साथ तूफान में भी नाव को किनारे लगा ही देता है। हालात चाहे जो भी हो, मांझी को तो चलते रहना है ताकि मौजों की पायल जो है वो छम छम बजती रहे।

नाव संभवतः इंसानों द्वारा बनाया गया ये पहला यातायात साधन था। संभवतः नहीं, यकीनन नाव ही पहला साधन था शुरुआत में। जल मार्ग पर यात्रा के लिए लकड़ी के तने को खोखला करके बनाई गई जो डोंगी थी वो सबसे पुराना साधन मानी जाती है। फिर क्या था, मनुष्य तो सदा से ही खोजी रहा है। डोंगी से छोटी छोटी नदियों में चलते हुए लकड़ी की नाव बना ली, धीरे धीरे उस पर कपड़े के बने पाल लगा दिए और जिससे हवा की दिशा और दबाव का उपयोग करके नाव जो है वो आगे बढ़ती थी। बड़ी नाव बनने लगे, लंबी यात्राएं होने लगी, व्यापार होने लग गया। नाव की बात करें और केरल के प्रसिद्ध नाव प्रतियोगिता की बात न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। यह प्रतियोगिता वल्लभकाली या स्नेक बोट रेस के नाम से जानी जाती है, जो केरल की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें चुंदन वल्लभ नामक लंबी पतली सांप के आकार की नाव का उपयोग होता है। ये नावें लगभग 100 से 120 फीट लंबी होती है और नाविकों की संख्या भी 100 से 120 होती है, यानी नाव खचाखच नाविकों से भरी होती है। चप्पू चलाने वाले लोग पारंपरिक गीतों को गाते हुए एक ताल में यह प्रतियोगिता बड़े उत्साह से मनाते हैं। जो जितना लय में एक साथ आपसी सामंजस्य के साथ चप्पू चलाता है वो टीम जीत जाती है। टीम वर्क का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। पर अगले गाने में नाव पर एक ही इंसान चप्पू चला रहे हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षक, मुस्कान मनमोहक, बेहद हैंडसम और खूबसूरत अदाओं के धनी। हम बात कर रहे हैं शशि कपूर साहब की। चप्पू चलाते हुए इस गाने में उनका अंदाज़े बयां ही कुछ और है।

इटली का वेनिस शहर पानी पर बसा हुआ दुनिया का सबसे अनूठा और रोमांटिक शहर माना जाता है। यह शहर लगभग 100 से अधिक छोटे द्वीपों पर स्थित है। वेनिस की मुख्य विशेषता यहाँ की सड़कें नहीं बल्कि नहरें हैं, जिस पर बोट या नाव परिवहन का मुख्य साधन है। यानी पड़ोसी के घर जाना हो तो नाव से जाइए। वेनिस का सबसे प्रसिद्ध नाव गोंडोला है, जो एक लंबी पतली काले रंग की नाव होती है। गोंडोला चलाना एक कला है, जिसे कोई कुशल नाविक या गोंडोलियर ही चला सकता है उसे। कहते हैं सूर्यास्त के समय गोंडोला में बैठकर सैर करना एक रोमांटिक अनुभव देता है। आपको याद है इटली की वेनिस शहर का गोंडोला? अरे हमारी हिंदी फिल्मों में दिखाया गया है इसे। गोंडोला चलाने वाला गोंडोलियर इस गाने की शुरुआत करता है, अमोरे मियो दोवे स्टाइ तु स्तो कावाकोंडो सेई सोलो मियो। और फिर आशा जी की खूबसूरत आवाज़ दो लफ्ज़ों की है ये जिंदगानी। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर फिल्माया ये गाना, आइए सुनते हैं।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

अभी जो गीत आपने सुना वो इटली के वेनिस शहर की मशहूर नहर ग्रैंड कैनाल में एक गुंडोला में ही फिल्माया गया है। नाव का चाव तो हर समय बना रहा है। 1948 की फिल्म नदिया के पार में दिलीप कुमार साहब ने नाव चलाया तो सन 2000 में ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल और साथियों ने नाव पर जोरदार डांस किया। हर युग में नाव हमें रोमांचित करता आया है। जीवन की हर परिस्थितियों से आगे बढ़ते रहना, जूझना उससे और आगे बढ़ते रहना, यही संदेश देता आया है।

श्रोताओ, नाव पर फिल्माए और भी कई गाने हैं। सावन का महीना, पवन करे शोर, ये यकीनन आप सबने सोचा होगा। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, आजा आई बहार, चलो दिलदार चलो, दिन है बहार के, फिल्म वक्त से और भी कई गाने, पर समय अभाव के कारण हम आपको सुनवा नहीं सकते। तो फिलहाल इजाजत दीजिए अमृता को,

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार।

0: अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कसगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाईवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल

0: पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच हुरमुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. Three Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilagavetri Kadagam or TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than two-thirds majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. TMC trailed far behind, managing to win 80 seats in the first election after special intensive revision of electoral rolls in the state. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Our correspondent reports, Congress and Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPIM clinched 1 seat.
5: With a vote share of nearly 45.84%, the BJP has won 206 seats in West Bengal. Meanwhile, the Trinamool Congress's vote share dropped by almost 8 percentage points to 40.8 compared to the 2021 election when it bagged 48.5% votes. Several heavyweight leaders of the Trinamool Congress faced defeat. In this election, the BJP not only swept North Bengal but also gained a firm hold over almost all the South Bengal. Mamata Banerjee suffered a crushing defeat in her constituency Bhavanipur. Shubhendu Adhikari defeated Banerjee by more than 15,000 votes. Adhikari also secured victory in the Nandigram seat. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
4: For the first time since 1972, West Bengal appears set to be governed by a party that is also in power at the centre. In Tamil Nadu, actor turned politician Vijay's party, Tamilagavetri Kadagam, TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. The party is falling short of 10 seats for the majority to form the government in the 234-member assembly. The election has produced hung assembly in the state. TVK has emerged as the largest party with 108 seats. TVK chief C. Joseph Vijay won both Perambur and Tiruchi East seats. The ruling DMK secured 59 seats, while its main rival, the All India Anna Dravida Munnetra Kadagam, won 47 seats. Chief Minister M. K. Stalin lost to TVK candidate V. S. Babu at Kolathur in Chennai. However, his son and Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin retained the Chipok Tiruvallikeni seat. Former Chief Minister O. Paneerselvam, who recently joined the DMK, won from Bodinayakanur constituency. Among other parties, the PMK won 4 seats and the Congress secured 5. The BJP, DMDK and AMMK won 1 seat each. The CPIM, VCK and Indian Union Muslim League secured 2 seats each. More from our correspondent.
6: The protagonist of blockbusters like Talewa, Jananayagan, Marcel and Sarkar, actor-politician Joseph Vijay, who steered his party, the TVK, to victory, will be a real-life chief minister soon. Police officials were at his residence yesterday night to discuss the security and other protocol details. The police convoy meant for a chief minister is at his residence since yesterday night. After winning Perambur and Tiruchi East constituencies, he received the declaration from the Election Commission yesterday at Loyola College Counting Centre. As an alumni of Loyola College, the 51-year-old actor expressed happiness and looked cheerful as he received the recognition of being elected from Perambur. Vijay is likely to be elected by his party MLAs as a chief minister today. The party is tight-lipped about the formation of a coalition government. It remains to be seen what will be their next move. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
4: In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. The BJP has bagged 82 seats, while its allies Ahom Gan Parishad AGP has won 9 seats and Bodoland People's Front has secured 10 seats. On the other hand, Congress has gained 19 seats, All India United Democratic Front and Raijor Dal clinched 2 seats each, and TMC has secured 1 seat. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally, IUML, added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. Almost all the prominent UDF leaders were elected with clear majorities across the state. More from our correspondent.
7: The process of government formation in Kerala is expected to move forward after the meetings of Congress Legislative Party and subsequently the UDF legislators. The swearing-in ceremony is likely to be held either on Thursday or Friday. Party sources suggested that the Congress Legislative Party meeting will take place in the presence of representatives from the All India Congress Committee while informal discussions on cabinet formation continue. Meanwhile, the outgoing Chief Minister Pinarayi Vijayan has already submitted his resignation. In a notable development, the BJP, which previously had no representation in the assembly, has won 3 seats this time. The LDF, which held 99 seats in the outgoing assembly, has been reduced to just 35, marking a significant shift in the state's political landscape. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
4: In Puducherry, the National Democratic Alliance, NDA, has regained power, securing a comfortable majority of 18 seats in the 30-member house. A report from our correspondent.
8: Speaking to media after receiving his certificate, Chief Minister N. Rengasamy described the victory as an endorsement of good governance by the people of Puducherry. He stated that the welfare measures implemented over the past 5 years, including the enhancement of old age pension and the Kamarajar housing scheme, played a key role in bringing his government back to power. He further stated that an announcement regarding the swearing-in of the new Council of Ministers would be made soon and reaffirmed that efforts to attain statehood for Puducherry would continue. The Chief Minister also presided over a meeting of the elected MLAs of All India NL Congress at night. Bibinastad, Akashwani News, Puducherry.
4: Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at the BJP headquarters in Delhi last evening after the poll results, the Prime Minister said that BJP-NDA governments are in power in more than 20 states. He said BJP's mantra is citizen is God and party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party.
1: Jai Parajay Loktantra aur Chunavi Rajniti ka ek swabhavik hissa hota hai. Lekin 5 pradeshon ki janta ne pure विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है. लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, भारत का संविधान भी जीता है.
4: The Prime Minister said new dawn has heralded for the nation and people have placed their trust in India's great democracy and politics of performance.
1: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है. ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है. ये भरोसे का दिन है. भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर.
4: Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah has hailed his party's win in West Bengal, Assam and Puducherry. He commended the Bengal win as the people's reply against fear, appeasement and those who shelter infiltrators. Mr. Shah congratulated the people of Assam for a historic hat-trick mandate. He said in a social media post that the boundless affection and cooperation is strengthening their resolve to deliver even better services to people and fulfill their hopes and aspirations. Expressing gratitude to people in Puducherry for a second consecutive poll victory in the Union Territory, Mr. Shah said, this mandate is a victory of the politics of performance delivered under the visionary leadership of Mr. Modi and Chief Minister N. Rangasamy. In West Bengal, industry bodies and trade associations have warmly congratulated the Bharatiya Janata Party on its sweeping victory in the assembly elections. Business leaders say they are hopeful the new government will usher in a fresh era of industrialization, infrastructure development and investor-friendly policies to revive the state's economy. The Bharat Chamber of Commerce declared that a new dawn is on the horizon, with Bengal pinning its hope on big-ticket investments and stronger center-state relations. The Bengal Chamber of Commerce and Industry also extended its congratulations, calling the mandate overwhelming. Kolkata's Merchants Chamber of Commerce and Industry described the BJP's decisive win as historic, adding that the resounding mandate reflects people's confidence in Prime Minister Narendra Modi's leadership. The West Bengal Hosiery Association expressed optimism that the textile sector will receive special support under the new dispensation. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. A large fire broke out at the Fujairah Oil Industry Zone yesterday after what authorities described as a drone attack originating from Iran, the first such strike to cause significant damage on UAE soil since a ceasefire took hold last month. Civil defense teams were deployed immediately to contain the blaze, with three Indian nationals reported to have sustained moderate injuries and been taken to hospital. Indian Embassy in Abu Dhabi said it is in contact with local authorities to ensure the well-being of those affected. More from our correspondent.
9: Monday's strikes shattered weeks of relative calm since the ceasefire between Washington and Tehran came into effect on April 8th. Tension had been running high all day after U.S. President Donald Trump declared that American forces would begin guiding trapped commercial vessels out of the blockaded Strait of Hormuz, a move Iran rejected, warning that any foreign military force entering the waterway would be attacked. Against that backdrop, Iranian drones and missiles targeted the UAE, sparking a fire at a major oil facility in Fujairah, a port city critical to UAE's ability to export oil without using the Strait of Hormuz. Residents across the country received emergency alerts for the first time since the ceasefire, urging them to shelter indoors. Vinod Kumar, Akashwani News, Dubai.
4: On to sports. In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants in Mumbai last night by 6 wickets. Chasing the target of 229 set by Lucknow Super Giants, Mumbai overhauled the score in 18.4 overs, losing 4 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
10: Thank you, Anuja. The dailies are full of interesting headlines on BJP tsunami breaching Trinamool bastions. The Times of India writes, BJP is Bengal Janata's party, Vijay Diwas in Tamil Nadu, Kerala for Congress. The paper adds, three cheers in Assam and more. BJP majority on its own for the first time. The Pioneer, quoting the Prime Minister, calls the West Bengal win a new sunrise of Badlav and not Badla. Life without power, nationwide for the first time since 1977. Cites the Statesman. The Indian Express notes the young voters asserting politically for change in each of the verdicts in the election results from all states. The headline says, first time, young voters, high turnout, Gen Z, restless, restive, and aspiring for opportunities ask for more. And finally, Srinagar resumes its role as JNK's summer capital after hiatus of 6 years, notes the Hindu. And with that, it's back to you, Anuja.
4: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP set to form government in West Bengal and Assam, NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Kerala. Hung Assembly in Tamil Nadu, TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. Three Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति है आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक की।
12: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है दिनांक 12 अप्रैल 2026 को इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित मोको कहां ढूंढे रे बंदे कबीर जन उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, गत दिनांक 12 अप्रैल 2026 को इंदौर के कृषि महाविद्यालय में कबीर जन उत्सव मनाया गया। वर्तमान समय में कबीर की जरूरत, इस विषय पर कार्यक्रम किए गए। मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में मौजूद थे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति एवं आईसेक्ट के चेयरमैन डॉ संतोष चौबे। साथ ही इस अवसर पर सरस्वत अतिथि के रूप में मौजूद थे पद्मश्री पहलाद टिपानिया, पद्मश्री भैरव सिंह चौहान एवं पद्मश्री कालूराम बामनिया। काफी संख्या में दर्शकगण मौजूद थे। इस अवसर पर योग मुद्राएं एवं योग नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। ट्रांसजेंडर समूह द्वारा कार्यक्रम मेरा कुनवा प्रस्तुत किया गया। उज्जैन के प्रेम मनमौजी द्वारा अंधविश्वासों की वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई। श्री अनिल भंडारी, राजेंद्र गोयल के अलावा जबलपुर से पधारे समाज सेवी श्री भागचंद पटेल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संयोजन किया सुरेश पटेल ने। संपूर्ण वातावरण कबीरमय हो गया था। ऐसा लग रहा था कबीर आज भी प्रासंगिक है, कबीर जन जन में मौजूद है।

0: संगठन विकास समूह के बारे में डॉक्टर सुरेश पटेल जी और निरंतर 35 वर्षों से कबीर की बेचारी में कार्यरत है आदरणीय डॉक्टर सुरेश पटेल जी।
1: हम इन उत्सवों में ऐसे लोगों को पहुंचाते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में श्रम करके संघर्ष करके सफलता पाई है, ताकि हमारे साथ के सब लोग उनको देख के उनके कार्यों को समझ के ये समझ पाए कि यदि ये महानुभाव ये सब कर सकते हैं तो हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम वो सब कुछ कर सकें। और वो सभी लोगों को, युवाओं को, ग्रामीणों को प्रेरणा देते हैं कि उत्तम के बिना जीवन बदलने वाला नहीं है। मैं भी ऐसा सीखा, ऐसे रक्षण जैसी का हम भाव से चाहते हैं। 1992 में जब हमने जी जो ये कबीरचंद विकास समूह की शुरुआत 1992 टगर ग्राम से लिखी, कला सिंह की कहानियां भी उसमें थे और हरचंद जैन जी भी उसमें थे, तो तब मेरा इसे परचम हुआ। और उसके बाद लगातार कबीर के विचारों को पूरे देश में और अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलाने में उनकी विशिष्ट भूमिका है। उन्होंने एक कबीर सत्संग भवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका बनाई है, जो कि उस कार्यक्रम से के विचार से निकला था। और अब वहाँ पर ग्रामीण लोगों की काफी मीटिंग होती है। ऐसे भागचंद जी जबलपुर से यहाँ आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत हैं। काजीराम भाई एक बात कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ नहीं, कबीरा तुझको प्रेम की आई नहीं तो ठीक, यदि तुम पढ़ लिख के पत्थर जैसे हो गए, कठोर हो गया, अपने हृदय निर्मल नहीं हुआ, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखा है कोई बात नहीं। कबीर साहब मालवा में आज बहुत, कबीर साहब को पता नहीं कि मालवा क्यों रुचा। मालवा में कुमार गंधर्व जी जन्मे, मालवा में तीनों विभूतियां जन्मी, तो मुझे लगता है कि कबीर साहब ने कि इनके कंठ में कबीर साहब ने एक वाणी अपने आप भेजी कि आप वहां जाओ, उसका प्रचार प्रसार करें। तो ये हमारा सौभाग्य मालवा का कि हमारे सामने कबीर साहब की वाणी और उनके कंठ में यहाँ हजारों की मात्रा में गायक हैं, और वो सारे गायक कबीर साहब की वाणी को देश दुनिया में कहते हैं। तो सबसे पहले आप
2: कबीर की बात दो मिनट में नहीं की जा सकती। नंबर एक, जो अनुभव अनुभूति होती है उसको शब्दों के रूप में अभिव्यक्त इसलिए किया जाता है कि हम उसको खुद महसूस करें, और इसीलिए उस प्रेम और प्रत्यक्षानुभूति की अगर धारा हमने जो आदरणीय डॉक्टर संतोष चौबे जी के अंदर देखी, क्योंकि इनसे हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं 33 साल से, और जो इनकी विनम्रता इतना होने के बाद भी जो हमने देखा, उनकी जो आत्मीयता है वही एक प्रकार का कमी है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि जागृत प्रेम में संसरे और सुगर जान मसान, और जैसे खा लोहा की श्वास लेत दिन प्राण। वो प्रेम और सद्भाव अंतर में होने के बाद में उसको बांटना और पूरे जनमानस के बीच में हमारी जो ना समझी है उसको किस तरह से हम समझ कर अंदर परिवर्तित कर दें, वो है। और वो क्योंकि वो तो बहुत विद्वान और पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां हासिल करी है, परंतु डिग्री हासिल करने के बाद भी यदि हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी दिशा यदि पॉजिटिव नहीं है, तो हम कितनी बात कबीर के लिए किया करें या कबीर और अन्य संतों के लिए किया करें, और जमाने भर के धर्म और मत पंथ और संप्रदाय के लिए बात करा करें, वो केवल और केवल निरर्थक होगा, आप सब लोग जानते हैं। और इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि भणिया बुनिया दोनों थकिया, वो समझा भी उलझ जाए, और स्वर्ग नर की गेल मैंने पित्र को तखाए। स्वर्ग है पता नहीं कहां कहां पर, मरने के बाद हम कहां जाते हैं और उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और कितना रूढ़ी और अंधविश्वास के बीच में लोगों को अपने जाल में फंसा करके लोग अपना उल्टी सीधा कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए अभी जैसे जन प्रमंत्र के बारे में वो बता रहे थे, कबीर कहते कि जन प्रमंत्र सब झूठ है, मत भरमों से कोई, फिर भी हम कह रहे हैं तीर्थ करू ना जब तक साधु नाम की घरों में ध्याना, और ऐसा हो खलक मैं खेलू नहीं मूर्त स्थान। इस खलक में पूरी कायनात में जो इंसान खेलता है वहां पर किसी प्रकार की दुविधाएं, किसी प्रकार की बाउंड्रियां, किसी प्रकार की हदें होती है, तो हम कितनी बड़ी बड़ी बात कर लें, परंतु हमने उस नूर को, उस सुप्रीम पावर को जो आप हम सबको पूरी कायनात को चलाता है, उसको नहीं जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और इस आयोजन की साधुआ क्या कर सकता हूँ, खुद महसूस करने की कोशिश करें, बस इतना ही निवेदन है।
3: और जैसे इतना कहना चाहूंगा कि कबीर जी के जो दोहे हैं, कबीरदास जी के, वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं और आध्यात्मिकता सिखाते हैं। हमें सही में आज के जीवन में अगर विश्व का परिदृश्य देखे तो उसकी प्रासंगिकता का इसी में होगी, क्या आतंकवाद कहाँ जा रहा है, युद्ध कहाँ जा रहा है, हम पड़ोसी को पड़ोसी नहीं विचार रहे हैं, ऐसा नहीं पूरे विश्व में, हमारे भारत की भी स्थिति बहुत डाउनफॉल में जा रही है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं। आज हम सब मई में आ गए हैं, जब हमारा देश पूरे विश्व में आगे बढ़ता है, हमसे आगे बढ़ता है, हम आज मई की तरफ आ गए हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो आज भी हमारे जीवन में अगर हमें जीवन के सहार को देखना है तो आज कबीर दास जी के जितने दोहे हैं, वाणी ऐसी बोलिए का पाठ हो, एक एक दोहा आप उनको देखो तो एक एक दोहे पे आप एक एक किताब लिख सकते हो। तो मेरा इस आज मुख्य में यही कहना है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हम बड़े बड़े मेरे सीनियर लोग हैं, पटेल साहब में आयोजन इतने सालों से, आप सब बुद्धिजीवी लोग यहां हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें कबीर को अगर जिंदा रखना है तो उसे हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। कबीर जी के दोहे सब अच्छा कहते हैं, 5-7-10 साल के बच्चों को भी कहोगे कबीर के ये दोहे बहुत अच्छे हैं, 90 साल के एक बुजुर्ग को भी कहेंगे तो सबको मालूम कबीर के अच्छे दोहे हैं। मगर कबीर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो सारी अच्छी बातें हैं, वो है उसको इम्प्लीमेंटेशन, कर्मों में परिणित करने का बुद्धि हम लोग कोई नहीं बना पाता। आज भी वो कबीर ने कहा है कि मेरा क्या है, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आज हम क्या, आज हम सब कैसे की दौड़ में लगे, आज कैसे व्यक्ति है तो अपने जीवन में अपनी कमाई का 50% काम कर ले, बहुत कम बचेंगे। मगर ये ट्रेन पूरे विश्व में आता जा रहा है, बिल गेट्स से लेके वॉरेन बफेट से लेके लोगों ने ट्रेन चालू कर दिया कि 90% अपनी प्रॉपर्टी 100% जनसेवा में लगा रहा है। तो मेरा आज इतना ही कहना है कि हम कबीर के बहु को अपने जीवन में उतारें, वो एक जीवन जीने की कला है, आपको नैतिकता सिखाती है, आध्यात्मिकता सिखाती है, और तीनों के सही हमारा जीवन चलता है। और जब हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है जो वर्ल्ड का इंडिया का, उसको हम बढ़ाएं, हमारे जीवन में उतारें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। और आज खुश विश्व के लिए कबीर वासुदेव जी से यही कहना चाहूंगा, भारत माता की जय, जय भारत, जय हिंद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं जबलपुर से आए हमारे अतिथि भाजन जी जैन से कहूंगा कि वो दो शब्दों में,
5: और भी बहुत सारी चीजें हैं, देर चीजों में देखते हैं अपने मन में कई बारी खराब हो जाती है, तू तू मेरे हो जाती है, तो कबीर साहब ने बड़ा जोड़ दिया, दूसरी बार उन्हें जोड़ दिया है। बचपन में सुनता था पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख घर में हो पाया, तीसरा सुख नारी पिता और चौथा सुख पुत्र हो अज्ञा का आया। और इसका प्रमाण कबीर साहब ने दिया भी है कि कबीर साहब जो इतिहास है उसमें 120 साल जिंदा रहे, और 120 साल जिंदा होना बहुत बड़ी बात है। तो ये बात तो साबित होती है कि उन्हें जो है वाणी के ऊपर और शरीर के ऊपर का उन्हें बहुत जोर दिया। मैं तो इनका छोटा सहयोगी हूं, ज्यादा सहयोगी नहीं, इसने जो बताया मैं बहुत कम सहयोगी, पर डॉक्टर साहब का आज भी जो लगन में देखता हूं, चाहे कबीर की लेखनी में हो, चाहे शिक्षा में हो, कभी पीछे मैं चाहता हूं कि अब समय हो भी गया है, मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
4: काजूराम जी भवन जैसे निवेदन है, आशीर्वाद मंच पर बुलाते सभी ज्ञानी और गुणी और ज्ञान के दाता, मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति महोदय चौबे साहब पराजित हैं। हम कभी जन विकास समूह ने एक अच्छा गठन किया और हर वर्ष समाज को जगाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उसमें विशेषता हमारे सुरेश पटेल जी, छोटू भारती जी और इनके समस्त साथी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए कबीर साहब को गायन से देखना है या सुनने से देखना है या उस शरीर से देखना है या विधेय देखना है, ये सब उनकी वाणी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि उनका संदेश सदगुरु कबीर साहब का कि कभी खड़ा बाजार में सत्य मांगे खेर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, कभी खड़ा बाजार में नहीं रुपा के हाथ, जो घर जा रहे आपन चले हमारे साथ। तो देखिए सतगुरु कबीर साहब ने धर्म का प्रचार नहीं किया है, उन्होंने मानवता का प्रचार किया है, समाज का प्रचार किया है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को ही नहीं गहरा। देखिए अभी पटेल साहब ने कुछ उनके शब्दों से कहा था कि कुछ शिक्षा के बारे में, सतगुरु कबीर साहब के समय में तो कोई स्कूल नहीं होगा शायद। पोथी पढ़ जब मुआ पंडित भया न कोई, भई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैंने नहीं तो कोई ग्रंथ पढ़ा है, नहीं कोई वेद शास्त्र पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मैं एक गाता रहा और दृढ़ विश्वास करके सतगुरु कबीर साहब को पाया, आप सबको पाया। देखिए हम सतगुरु कबीर साहब कौन है यह समझने की अभी एक लाइन में मौको बांटू ढूंढे बंदे, हम ढूंढने के लिए लगे हैं। मोटो कांटू ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, हम सब ढूंढने के हिसाब में लगे हुए हैं कि हम ढूंढे कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, विश्व वंदने ब्रह्मांड के नायक सतगुरु कबीर साहब को समझने के लिए हमें बहुत चिंतन करना होगा। और मैं तो यह सुना ठोक के कह रहा हूं कि सतगुरु कबीर साहब को गाय उनके ऊपर नृत्य भी करें। एक माणी ने भजन में कहा कि नाच खुद वो खेत तमाशा ये थारा मन भावे है और मेरा माई बाजे ढोलकी तो थोड़े जा रहे हैं, अवसर जावे रहे कर सुमरण जग से क्यों सुना रहे थे। उनके हर शब्दों में, हर वाणी में, हर भजन में संदेश है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम 600-700 तंबूरा पे भजन गाने वाले मंडलियां हैं। गाना एक अलग चीज है, पर सतगुरु कबीर साहब पर जीने की कोशिश करें हम। इसी के साथ में मेरी वाणी को नहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई धैर्य सिंह जी चौहान साहब। अब मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर संतोष चौबे जी से कि वो हमें ऐसे बचा। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौबे जी,
6: आज के इस कबीर जन्मोत्सव में मेरे साथ मंच पर उपस्थित देश के बड़े कबीर गायक पद्मश्री के सम्मानित आदरणीय दीपानिया जी, आदरणीय बामनिया जी, आदरणीय भाई भैरव सिंह जी और मंच पर उपस्थित इंदौर के और जबलपुर से पधारे हमारे अतिथिगण, यहाँ बैठे बहुत सारे साहित्यकारों को देख पा रहा हूँ, सदाशिव कौतिक हैं, हरिराम जी हैं, आकाश हैं, यहाँ भी जगीब मिश्र हैं, तो बहुत सारे साहित्यकार भी यहाँ पर हैं और कबीर साहब को चाहने वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ मुझे देखने मिल रहे हैं। भोपाल में तो त्रिपाणिया जी और बामनिया जी और धर्म सिंह जी बड़े लोकप्रिय, मतलब आइकॉन जैसे हैं, हीरो हैं और कबीर के बारे में बहुत सारी बातें लोगों भी कही जाती है। मेरा त्रिपाणिया जी से लगभग 35-40 साल का संबंध है। भोपाल गैस शताब्दी में जब हम लोग काम करते थे उसके विरोध में, तो हमने त्रिपाणिया जी को एक बार एक शांति पार्क में शांति समारोह में बुलाया था और वो अद्भुत कार्यक्रम था। ये बात 84-85 की है और आज हम 25-26 में हैं, करीब 40 साल इस बात को हो गए। तब से त्रिपाणिया जी से रिश्ता बना हुआ है और अभी हाल में बनवाली कैसा सम्मान दे दी उन्होंने, और मैं जब भी फोन करता हूं तो अजय हो या ये हो एक ही बात कहते हैं कि आपके यहाँ आने में हमें बहुत आनंद आता है, आपके लोग कबीर को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो मैं आता हूँ और वो हर बार बिना किसी नाम रिकॉर्ड के हमारे यहाँ पधारते हैं, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ भी रायपुर में भारती बंधु हैं जो छत्तीसगढ़ी में कबीर गाते हैं और छत्तीसगढ़ में उनको बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। मैं बिहार जाता हूँ, बिहार में बाकी सब लोग के अलावा कबीर भी हैं। राजस्थान जाइएगा तो वहां भी आपको कबीर मिलेंगे। ये कबीर की लोक व्याप्ति जो है ये क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है कि कबीर को बार बार हमें कबीर की याद आती है? और आज जब पूरे विश्व में युद्ध का उन्माद फैला हुआ है, आज जब विश्व में सिविलाइजेशन का क्लैश जैसी बात होती है, सभ्यताओं की लड़ाइयों की बात होती है, हमें बड़ी शिद्दत से कबीर याद आते हैं जो कि हमें एक समरसता की और सद्भाव की बात करते थे और बहुत जगहों पर उनका आपको काव्य भी ये देखने मिलता है। मित्रों, पहले हम ये देख लें कि कबीर का समय क्या था और उस समय में कबीर कैसे कबीर बने होंगे। 1378 ईस्वी सन के आसपास, जो कि आज से लगभग 800 साल पुराना समय है, हमें मालूम पड़ता है कि कबीर साहब अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ। कबीर के लगभग 400-500 वर्ष पूर्व पहले शंकराचार्य हो चुके हैं और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की बात कर ली है और माया की बात कर ली है। और इस अद्वैतवाद और माया का जो प्रपोजिशन शंकराचार्य ने किया था उसको एक उत्तर भी उसी समय में मिल जाता है। आप देखिए कि प्रबुद्ध व्यक्तियों ने, जिनमें माध्वाचार्य और भीमकाचार्य वगैरह शामिल थे, ये शंकराचार्य से कहा कि भाई साहब, ये आपका जो अद्वैतवाद है ये है ठीक, मतलब तार्किक रूप से ठीक है, लेकिन आम आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। उसको तो सामने संसार दिखता है, उसको लोग दिखते हैं, संसार दिखता है, सारा संसार और दुख सुख दिखता है, तो ये माया से काम नहीं चलेगा। और इसको ध्यान में रखे, इसी को सामने रखते हुए दक्षिण से एक आंदोलन शुरू होता है, वो भक्ति आंदोलन की पहली शुरुआत है और भारत में जिसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है उसकी शुरुआत वास्तव में दक्षिण से होती है, जो 1100-1200-1300 तक। तो आप लोग जानते हैं कि नयनार हुए और अंबार हुए, उसने शैवाइट ने शिव की भक्ति वाले और विष्णु की भक्ति वाले, ये अलग अलग दल थे जिन्होंने कि ये कहा कि तार्किक रूप से अद्वैतवाद और माया ठीक है, लेकिन व्यक्तियों की समझ के, आम आदमी की समझ के लिए उसको एक मूर्ति, उसको एक प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रतिमा के लिए उन्होंने ये अलवाद में और नैनार में शिव भक्ति और विष्णु भक्ति के बारे में किया, जो व्यापक रूप से दक्षिण में फैली है। उत्तर में जब ये आती है, जो कि 14वीं शताब्दी के आसपास आना शुरू हो जाता है, तो हम देखते हैं कि कबीर पैदा हो चुके हैं। और कबीर को मैं उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का पहला कवि मानता हूं। मुझे लगता है कि कबीर ही वो है जहां से कि हमको अपने भक्ति आंदोलन शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि वल्लभाचार्य से बात होती है, जो 16वीं शताब्दी के आदमी थे, जिन्होंने सगुण लीला पर बात की, सगुण धर्म पर बात की और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। तो पहली घटना तो जो कबीर के आने के पहले होती है, जो महत्वपूर्ण भारत के लिए है, वो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत और माया के कॉन्सेप्ट को त्यागना और वापस सगुण भक्ति की तरफ लौटना, ये काम होता है उत्तर भारत के लिए लौटना। दूसरी जो बड़ी घटना इस समय में कबीर के समय में हुई है, कबीर के आसपास हुई है, वो इस्लाम के भारत आगमन को लेकर होती है। आप जानते हैं कि खिलजी सल्तनत की शुरुआत 1209 के आसपास भारत में मानी जाती है और कबीर से लगभग 150-200 साल पहले इस्लाम का आगमन भारत में हो जाता है। अब दो चीजें हैं जो कबीर को, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कि शायद मती कागज छुआ नहीं था, और उनको ये चीजें भारत में विकसित होते हुए दिखी होंगी निश्चित रूप से। तो इस्लाम आ चुका है और एक तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी दक्षिण से हो चुकी है जो उत्तर में आती है। अब मित्रों दूसरी बात जो इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि कबीर के बाद के समय का विकास किस तरह से हुआ और उसमें पश्चिम ने कैसे सोचा और भारत ने कैसे सोचा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि कबीर के कुछ 100-150 वर्षों बाद आपको यूरोप में नवजागरण होते दिखता है, और मैं आधुनिकता के विचार पर आना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि हमको कबीर को क्यों आधुनिक मानना चाहिए। तो ये नवजागरण शुरू होता है यूरोप में, आप पाते हैं कि विज्ञान का आगमन हो चुका है, विज्ञान धरती को नियंत्रित करने की बात कर रहा है, और विज्ञान के जो मूल्य हैं जिसमें तार्किकता, खुलापन, जो कुछ कर सके उसको करके देखना और उसके माध्यम से सच तक पहुंचना, ये सारी बातें आपको यूरोपीय नवजागरण में देखने मिलती हैं। और वहां से जो विज्ञान का विस्तार होता है वो पूरे यूरोप में और आगे चल के अमेरिका में और भारत में भी उस तरह से विज्ञान का विस्तार होता है। दार्शनिक दृष्टि से विज्ञान के बारे में ये देखा जाना चाहिए कि विज्ञान ने किस तरह की विचारधाराओं को जन्म दिया और उन विचारधाराओं ने दुनिया का क्या बनाया। जो कबीर आंखें खोलने की बात कहते हैं, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप आंखें खोल के देख लें तो सारी विचारधाराएं आपको बेकार मालूम पड़ती हैं। आपको सिर्फ आंखें खोल के देखना मन है कि दुनिया का क्या हो रहा है, और आप देखेंगे कि जितनी दृष्टियां आपको दी गई थी, जितनी विचारधाराएं आपको दी गई थी, वो सारी विचारधारा दृष्टियां बेकार हैं। और भारतीय परंपरा की ओर लौटना आपके लिए बहुत आवश्यक महसूस होता है। बहुत संक्षेप में कहूं तो जो 6 मूल विचारधाराएं जिनके बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूं, जो 19वीं शताब्दी तक विकसित हो चुकी थी, इस प्रकार थी। पहली विचारधारा जो मनुष्य की श्रेष्ठता के बारे में थी, जिसने आगे चलकर दोनों विश्व युद्धों को जन्म दिया कि भाई एक रेस है जो ज्यादा श्रेष्ठ है और बाकी जो रेस है वो निकृष्ट है, तो जो श्रेष्ठ रेस है वो दुनिया भर पर शासन करेगी। तो जर्मनियों ने मान लिया कि हम श्रेष्ठ हैं, तो जर्मनी ने 2 विश्व युद्ध लड़े और बाद में ये तय हुआ कि वो ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं थे, हालांकि लड़ाई में उन्होंने करोड़ों लोगों को मारा। दूसरी विचारधारा हम सब जानते हैं, साहित्यकार यहां बैठे हैं, मार्क्सवादी विचारधारा थी, जिसने कहा कि हमारी सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधि पर निर्भर करती हैं, इसलिए जो कुछ नीचे आर्थिक रूप से हो रहा होगा, दर्शन है, विज्ञान है, धर्म है, सब उस पर निर्भर करता है। तीसरी बात मनुष्य को पहचानने को लेकर हमारी फ्रायडियन विचारधारा थी जो पश्चिम से आई थी, एक मनोविज्ञान नाम की चीज है, मनोविज्ञान के नाम से आप मनुष्य को पहचान सकते हैं। फिर एक विचारधारा पॉजिटिविज्म की विचारधारा थी, जिसको कि डिकार्टे ने कहा कि आप जो करके देख सकते हैं वही सच है, उसके अलावा कोई भी चीज सच नहीं है। मित्रों, इन 6 विचारधाराओं ने 20वीं शताब्दी के मनुष्य के सामने ऐसा पर्सपेक्टिव प्रस्तुत किया जिससे कि वो दुनिया को देखना ही भूल गया। उसके जो दुनिया को जानने पहचानने के तरीके थे वही वो भूल गया। हमारे जानने पहचानने के तरीके में तो विज्ञान के अलावा ज्ञान भी शामिल था, भारतीय ज्ञान परंपरा शामिल थी, साहित्य शामिल था, संगीत शामिल था। हम साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ज्ञान परंपरा के माध्यम से, अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य के हृदय में उतरते थे, जो हमें बचपन से परंपरा में दिए जाते थे। कबीर के यहां ये जो खोज की प्रवृत्ति है, दुनिया को देखने की प्रवृत्ति है, मनुष्य को देखने की प्रवृत्ति है, प्रकृति को देखने की प्रवृत्ति है और अंततः एक निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रवृत्ति है, मुझे कवि के रूप में ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा गुण लगता है। और वो एक तार्किक दृष्टि भी उनके यहाँ, अभी मैंने आपको जो पद सुनाया उसमें पूरी तरह तार्किक दृष्टि आपको देखने मिलती है, और विज्ञान का आधार तार्किक दृष्टि है कि हमारे यहाँ तर्क के साथ साथ मतलब संवेदना को बनाए रखने की बात भी होती है, और कबीर में आपको तर्क भी दिखता है, संवेदना भी होती है।
4: एक पढ़े की पाठ, एक भ्रमय उदास, एक नगन निरंतर रहे निवास, इस बीच जुगति तन हो ही खीर, ऐसे राम नाम संगे रहे नवीन, एक होनी दीन, एक देही दान, एक तो कलापी सुरा पान, एक तंत मंत्र औषध तुहान, एक सकल पिंड राखे अपान, एक तीरक व्रत करी गाय भीती, ऐसे राम नाम नाम सु कौर करे न प्रीती, एक धूम थ्यूटी तन हो ही श्याम, जो मुक्ति नहीं बिन राम नाम, सदगुरु तत्व कहो विचार, मुझ कहो बन्ने विस्तार, जुड़ा मन के भय की राम कृपा भई कही कबीर। तो आगे चलकर निर्गुण राम के पास कभी लौटते हैं और हम देखते हैं कि वो निर्गुण राम के भक्ति की तरफ आते हैं। ये जो निर्गुणता है उन्हें निष्प्रहणी बनाती है, वो उन्हें बहुत लोभी और मोह वाली भी बनाती है, निष्प्रह बनाती है। निष्प्रहता मुझे लगता है कि एक बड़ा गुण है जो हमें आज के समय में, गांधी ने भी इसके बारे में कहा और कभी भी।

0: और इसी के साथ इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित मोको कहां ढूंढे रे बंदे कबीर जन उत्सव की रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। प्रस्तुतकर्ता थे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक।
1: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी आपने सुना इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति थी आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अतुल भट्ट के गाए गीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं अतुल भट्ट के गाए गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में अगला गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना अतुल भट्ट के गाए गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर लाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना शंकरलाल भारोट का सारंगी पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है अश्विनी बालोटिया का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक सप्ताह से आंधी और तूफान के साथ हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली है। शादी विवाह के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के चलते जिले में जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 4 दिन तक बंद रखा गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को धूप और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई तथा लोगों को समझाइश दी गई कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने कान व सिर को ढक कर निकले तथा समय समय पर तरल पदार्थ पीते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से परामर्श लें। कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में बंद चीतों को गर्मी से बचाने के लिए भी घास की झोपड़ी और पानी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। श्योपुर जिले में 33 सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य जारी है। अभी तक श्योपुर जिले में 39,895 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है तथा 34,800

दिनों मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 27,167 से अधिक श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। श्योपुर जिले में 458 हितग्राहियों को 9,60,00,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। पिछले दिनों श्योपुर प्रवास पर आए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आदिवासी विकास खंड कराहल के पनवाड़ा ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 2,40,00,000 रुपए की लागत से 4 ग्रामों में बनाए गए मल्टीपर्पज सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी विकास खंड कराहल के अंतर्गत नौनार सरकार पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समाज सेवा का सबसे बड़ा कार्य है। नौनार सरकार मंदिर परिसर में आयोजित 351 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन के इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गांधी पार्क स्थित विजय स्तंभ का लोकार्पण किया गया और शहर के बाईपास रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आधुनिक चौपाटी के निर्माण तथा 19,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस मौके पर भूमि पूजन किया गया। सांसद निधि से 10,00,000 रुपए की लागत से वार्ड 12 में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी सम्पन्न हुआ। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा पिछले दिनों राजस्थान के अलवर जिले में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई और उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। उन्होंने शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा परिजनों को दिलाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बीते दिनों राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। श्योपुर जिले में ये परीक्षा 3 सेंटरों पर आयोजित की गई, जिसमें दोनों पालियों में 692 परीक्षार्थी शामिल हुए। जनपद पंचायत कराहल के सभागार में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 6 बालिकाओं को 1,18,000 रुपए की राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रदेश भर में संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत श्योपुर जिले में भी जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके साथ ही पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा और जिले में स्थित 40 गौशालाओं में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। श्योपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालाचुड़िया का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।
1: कार्यक्रम सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। लीजिए, हम हाजिर हैं आपकी फरमाइश पूरी करने को, और हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर MP से मैं सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
1: सूर्य प्रताप यादव जी, अशोकनगर से?
3: बिल्कुल।
1: कहिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: आज मुझे संग्राम फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
1: अच्छा, संग्राम फिल्म का है।
3: हाँ
1: ठीक है, हम सुनवाएंगे आपका ये गाना। इस बीच आप ये हाँ बताइए।
3: आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मैं अमृता बोल रही हूँ
3: जी मैम।
1: और बताइए, क्या करते हैं सूर्य प्रताप जी आप?
3: मैम, हम खेतीबाड़ी करते हैं।
1: अच्छा, खेतीबाड़ी में अभी क्या है, क्या उग रहा है?
3: अभी तो फसल जो है वो गेहूं चने की फसल कट चुकी है, अभी धान की तैयारी हो रही है।
1: अच्छा, गर्मी काफी है उधर?
3: हाँ, गर्मी बहुत है मैम।
1: अच्छा, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं?
3: बिल्कुल मैम, कल भी।

0: मेरा कॉल लगा था।
1: हाँ, क्या बात है। तो इस गीत को चुनने का कोई खास वजह?
0: ऐसी कोई वजह तो नहीं है, पर मुझे ऐसे गाने पसंद आते हैं, 90 के दशक के गाने अच्छे
1: अच्छा,
0: लगते हैं।
1: हाँ, 90 के दशक के गानों का अपना एक स्वाद, अपनी एक तासीर है, बहुतों को बहुत
0: हाँ,
1: पसंद आते हैं। चलिए
0: वैसे
1: आप,
0: गाने तो मैं सभी तरह के सुनते ही रहता हूँ, रेडियो है तो
1: हाँ
0: चलता ही रहता है। हाँ
1: बिल्कुल, तो लीजिए आपका गाना मिल गया है, क्यू कर दिया है और ये गया एयर पे, आप सभी के साथ सुनिए अपने पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद।

0: तो अशोकनगर से इस गीत के लिए कॉल किया था हमें सूर्य प्रताप यादव जी ने। संग्राम फिल्म का गीत आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। अगले कॉलर हम देखते हैं कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मार्ग से अम्ब्रीना।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर से कॉल आया है।
1: हाँ,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: लतीफ अमुद्रैना।
0: लतीफ अमुद्रैना,
1: हाँ।
0: मैंने आपका नाम सही बोला?
1: हाँ ठीक है।
0: क्या बात धन्यवाद। चलिए, कश्मीर से कॉल आया, सुनते हैं। यहाँ की भरी गर्मी में हमें बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है।
1: हाँ सही बात
0: कहिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बरसात फिल्म का कोई भी।
0: कौन सी वाली बरसात का?
1: नई वाली।
0: नई वाली बरसात का।
1: हाँ।
0: ओके।
1: और मेरे साथ लोकिंदर वर्मा।
0: हाँ, आपके साथियों के नाम आप लेना चाहते हैं?
1: लोकिंदर वर्मा।
0: लोकेंद्र वर्मा, अच्छा।
1: हाँ जी।
0: और
1: बस
0: क्या करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: बस यही खेती बाड़ी करते हैं।
0: कश्मीर में खेती बाड़ी करते हैं? किस चीज की खेती बाड़ी है कश्मीर में?
1: धान और मक्का।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: एक गाना है प्यार आया, ये सुनवा दें आपको बरसात का?
1: चलो सुनाइए सुनाइए।
0: ठीक है, चलिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कश्मीर से हमारे श्रोता थे लतीफ़ अमुद रैना जी। तो लीजिए, आपकी पसंद का गीत हमने सुनवाया और अब हम देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो,
1: नमस्ते अमर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारे सुजावा नगर से बोल रहा हूँ।
0: ओहो अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: बस आप कैसे हो? बढ़िया है।
0: बिल्कुल अच्छे।
1: तो आपके कार्यक्रम सुन के हम पुराने गीतों को आनंद देते।
0: धन्यवाद। बात हम करते हैं पर उससे पहले बताइए गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: आज हम आशा भोसले की याद में फिल्म दिल्ली चौक का गाना सुना चाहेंगे।
0: अच्छा, कवाली।
1: बहुत प्यारा, बहुत कवाली, बहुत सुंदर गीत है।
0: हाँ, आपने आशा भोसले बोला और दिल ही तो है मैं तो बेहद खूबसूरत कवाली है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
1: निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
0: हाँ, बहुत
1: मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत कवाली है।
1: संगीत रोशन ने दिया है, गीत शायर ने लिखे हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन इस गाने में संगीत के शब्द तारी अवस्थी है, बहुत सुंदर लगता है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत। हाँ
1: देव की आवाज से गड़गड़ा से म्यूजिक में मजा आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आशा
0: भोसले। और बताइए अनिल साहब, अभी आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं?
1: बस मनोरंजन करते हैं, रेडियो से और क्या, घर के काम काज।
0: कब से हैं आप हमारे श्रोता? कितने पुराने श्रोता हैं आप हमारे?
1: अरे हमने शुरू से आकाशवाणी को हमने अपने जन्म देते हुए देखा है, उन्नीस सौ बचपन में।
0: अच्छा, आकाशवाणी को जन्म देते हुए देखा है?
1: हाँ, उन्नीस सौ बचपन मतलब पहला दिन पूरा कार्यक्रम देखा है हमने।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात।
1: आज तक तब से आज तक चल ही रहा है।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी इंदौर, आकाशवाणी अपने भारती मुंबई से भी जुड़े हुए हम।
0: क्या बात। हाँ,
1: वहाँ से भी कार्यक्रम आते हैं, भाग लेते रहते मुंबई में भी।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी तो पुराने जमाने में आना जाना रहते थे, बहुत आते थे, अब कम हो गया। पहले बहुत आते थे आकाशवाणी, आकाशवाणी अनाउंसर से, डायरेक्टर से बात करते थे पहले। बाकी फोन से, अब फोन से बातें होती है भाई।
0: और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आप पत्र भी भेजते हैं?
1: हाँ, पत्र भेजते।
0: अनिल भंडारे, उषा भंडारे, ये वही है ना? आप वही है ना? वाह, देखिए मुझे याद है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: आप धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो लीजिए अनिल भंडारे जी, आपकी पसंद पे हमने ये गीत सुना फिल्म दिल ही तो है से। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: शिमला से बात कर रहे हैं?
1: जी जी।
0: क्या बात है, हिमाचल प्रदेश से?
1: जी जी, हिमाचल प्रदेश से।
0: आपका नाम राकेश?
1: जी राकेश।
0: कहिए राकेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अंदाज मूवी का गाना सुनना है।
0: अंदाज?
1: जी जी, रब्बा इश्क ना होए।
0: रब्बा इश्क, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज है?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, बिल्कुल, हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। और बताइए राकेश जी, शिमला में तो अभी बिल्कुल पर्यटन भरा पड़ा होगा, बिल्कुल बहुत से लोग आ रहे होंगे, भीड़ होगी?
1: जी जी जी जी जी, क्योंकि गर्मी का मौसम तो आपके क्षेत्र में पूरे देश में है, तो इस समय जो है पर्यटक तो शिमला आएंगे।
0: तो आप क्या करते हैं शिमला में?
1: हम तो खेतीबाड़ी करते हैं।
0: खेतीबाड़ी करते हैं? अच्छा,
1: बागवानी सेब की।
0: अच्छा, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया, भूख भी लग गई मुझे। वहाँ के सेब वहाँ के सेब तो बहुत ही स्वादिष्ट।
1: जी जी जी।
0: और प्राकृतिक छटा कितनी खूबसूरत है आपके शहर की।
1: जी जी बिल्कुल।
0: चलिए, आपकी पसंद पे हम ये गीत आपको सुनवाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। नहीं,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हिमाचल की वादियों से राकेश जी की फरमाइश पर हमने सुना ये गीत। हम लेते हैं अगले कॉलर से बात। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम उलझान जिला सीहोर से ग्राम गेंदालाल परिहार बोल रहा
0: हूँ। गेंदालाल जी उलझान से?
1: उलझावन गांव।
0: उलझावन
1: जी
0: सीहोर में है? उलझावन
1: हाँ, सीहोर के पास ही है, सीहोर भोपाल के मध्य में।
0: अच्छा अच्छा, उलझावन।
1: जी जी।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है उलझावन। कुछ खास कहानी है क्या इसके पीछे?
1: नहीं मैम, कहानी तो पहले तो पहले से रखा है गांव का नाम।
0: अच्छा। ये नाराल जी पहले तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम निकाह फिल्म गाना है।
0: बीते हुए लम्हों की
1: जी।
0: अच्छा, और बताइए कौन कौन है और क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं सिलाई काम है।
0: अच्छा, तो आप दुकान से बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम जी।
0: आपके साथ और भी लोग सिलाई करते हैं वहाँ? आपके साथ साथी लोग?
1: मेरे साथ में दो लड़के करते काम।
0: अच्छा,
1: दो की शादी हो गई है।
0: अच्छा,
1: होते भी है मेरे दो।
0: क्या बात है। ओके, और आप क्या क्या सिलते हैं, क्या स्पेशलिस्ट है आपका, सूट वगैरह है?
1: नहीं, जेंट्स काम करते हैं।
0: अच्छा
1: जी जी।
0: अच्छा, और घर में कौन कौन है?
1: घर में मेरे सभी बहुएं हैं।
0: अच्छा,
1: पोते भी हैं।
0: वो भी सुनते हैं क्या गाना?
1: हाँ सुनते हैं।
0: अच्छा, आप कुछ कह रहे थे?
1: रेडियो का बहुत पुराना सोता हूँ मैडम जी मैं।
0: हाँ हाँ, अच्छा।
1: मेरे कम 40 साल हो गए रेडियो सुनते हैं।
0: ओ हो हो हो, क्या बात है। आप पत्र भी लिखते हैं?
1: पत्र लिखते थे पहले, हमने मोबाइल का जमाना किया तो फोन से बात हो जाती है।
0: हाँ। पर आपको पता है ना, अब हम मोबाइल से भी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, तो आप?
1: हाँ। नहीं, ज्यादातर मैं वैसे फोन इन कार्यक्रम सुनता हूँ, भोपाल भी लगा लेता हूँ।
0: अच्छा,
1: भारती को।
0: अच्छा,
1: आपको इंदौर पहली बार लगा है?
0: अच्छा, पहली बार लगा है
1: जी इंदौर को।
0: क्या बात है, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम सुनाते हैं फिल्म निकाह से, बीते हुए लम्हों की। महेंद्र कपूर की आवाज में सुनते हैं ये गीत
1: जी। ओके।

0: ग्राम उलझावन सीहोर के पास है, वहां से हमारे श्रोता हैं गेंदालाल परिहार जी, उनकी फरमाइश पर हमने ये गीत सुना। अगला कॉल किनका है? हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से।
0: अरविंद अग्रवाल महोबा से?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा।
0: श्रीनगर जिला महोबा
1: जी।
0: कैसे हैं अरविंद जी आप?
1: एकदम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं?
0: एकदम अच्छी
1: जी।
0: आप लोगों को गीत सुना रही हूँ।
1: जी
0: और बताइए क्या करते हैं आप अरविंद जी?
1: जी मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा रेडियो चलता रहता है, मोबाइल पे सुनते हैं कि रेडियो पे?
1: नहीं मोबाइल पे सुनते हैं, मुझे ऐप पे आपका यहाँ थोड़ी प्रसारण से आप सुनाई देता है।
0: अच्छा बहुत अच्छे।
1: बहुत दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है कम से कम।
0: अच्छा ओके। और किराने में आप अकेले होते हैं या आपके साथ और भी काम करते हैं लोग?
1: मैं अकेला ही हूँ, वैसे बच्चे हैं साथ में।
0: हाँ
1: तीन दुकान चलाते हैं हम लोग।
0: अच्छा
1: एक किराने की है, एक कोल्ड ड्रिंक्स और स्टेशनरी है उसमें मिक्स।
0: अच्छा बहुत खूब।
1: एक मेरी मिसेज पार्लर चलाती है।
0: अच्छा मुझे याद आ गया, मैं कभी आपसे बात की हूँ पहले भी। बहुत खूब। तो ये रेडियो से जुड़ाव है आपका बहुत
1: जी,
0: और फिल्मों से भी?
1: जी फिल्मों से काफी पहले था, अब नहीं है वैसे, लेकिन लाइव प्रोग्राम से इंटरेस्ट है केवल, और कुछ इसे नहीं है।
0: हाँ हाँ कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सलामी पिक्चर का।
0: सलामी
1: जी।
0: गाने का नाम बताएं?
1: चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना।
0: वाह वाह क्या बात है। आशा जी की आवाज और उनका गाने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है इसमें, हर गानों की तरह। साथ में कुमार सानू। बिल्कुल आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत
1: जी। धन्यवाद पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ मैम, श्यामलाल कचीरिया।
0: श्यामलाल जी मंदसौर से।
1: हाँ,
0: कहिए श्यामलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत गर्मी पड़ रही है मैम। और बढ़िया है, काम कर रहे खेत में अभी।
0: अच्छा, गर्मी पड़ रही है, हर जगह बहुत गर्मी है। बल्कि
1: हाँ,
0: आज तो सुबह थोड़ी राहत हुई है इंदौर में
1: ठंडी
0: तो।
1: हवा चल, हाँ
0: हाँ
1: यही भी ठंडी चल रही है। हवा बादल हुए थे कल तो, हवा भी
0: हाँ
1: चल रही थी,
0: हाँ
1: कई कई बूंदाबांदी भी हुई है आगे। हाँ,
0: अच्छा,
1: ठंडी हवा आई थी।
0: गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: कुर्बान फिल्म का एक गीत है, बैठा नीली झील किनारे, चंदा को आकाश पुकार।
0: क्या बात है, कुर्बान।
1: कुर्बान का
0: बिल्कुल गर्मी से परेशान होके ये गाना बिल्कुल ठंडक देता हुआ झील किनारे।
1: हाँ, तो झील के किनारे बैठ के
0: बहुत खूब।
1: 15 दिन बाद लगाया मैंने। हाँ,
0: 15 दिन बाद बिल्कुल सही किया। और ऐसे ही अंतराल पे ही लगाना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पे, 15 दिन 1 महीने, ताकि सभी को जो है ना कॉल करने का, कॉल उनका शामिल हो, ये मौका सभी को मिल सके। तो
1: हाँ, वो क्या है कि अब जो नए जो होते हैं वो क्या है कि ज्यादा मेहनत तो करते नहीं, बेचारे काम धंधे में रहते हैं, एक दो
0: बिल्कुल
1: बार लगाते हैं, कोशिश कर लेते हैं, एक दो चार बार नहीं लगता है, फिर वो काम वो लगाते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और ये क्या है, लगातार उंगली करते ही रहते करते रहते करते रहते, किसी का ही नंबर नहीं आने देते।
0: हाँ सही बात है। और बहुत बहुत मेहनत के बाद फिर एक कॉल लग पाता है, तो आपकी ये जो कोशिश है ना, ये बिल्कुल सराहनीय है। और हम हमारे अन्य श्रोताओं से भी कहेंगे कि थोड़े थोड़े अंतराल पे आप कॉल लगाएं, ताकि सभी के कॉल जो है वो शामिल हो सके।
1: वाह, शायद अपने तो अपने कभी बात ही नहीं देखा, शायद मुझे ऐसा लगता है।
0: हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ।
1: और
0: तो
1: वंदना जी से और अपने मैम से, सभी से बात कर।
0: ठीक है, मतलब आप आकाशवाणी से जुड़ते रहिए, और अगर
1: हाँ,
0: हम सीधी बात नहीं कर रहे हैं तो हम आपको रेडियो पे सुन रहे हैं, क्योंकि जब हम ड्यूटी पे नहीं होते हैं तो भी हम आपको सुनते रहते हैं अपने घर से उस वक्त हम श्रोता हो जाते हैं।
1: अच्छा, आप भी सुनते हो घर जाके?
0: बिल्कुल जिस दिन ड्यूटी
1: अच्छा
0: नहीं होती है उस दिन हम घर पे आपको सुनते हैं, अगर हम कहीं
1: अच्छा
0: बाहर किसी काम से नहीं गए हो तो। तो
1: अच्छा
0: श्यामलाल जी चलिए। हाँ बोलिए।
1: हाँ, मैं क्या, बस सब बढ़िया मैम
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी।

0: मंदसौर से हमारे श्रोता थे श्यामलाल जी, उनकी फरमाइश पर हमने ये गीत सुनाया आपको। अब इजाज़त दीजिए श्रोताओं हमें, पर चलने से पहले हम बता दें कि हमारे आज ये जो कार्यक्रम था उसमें तकनीकी सहयोग दिया भानु अहिरवार और अतुल श्रीवास्तव ने। कॉल करने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जिनका कॉल नहीं लगा उनको उनके प्रयास के लिए धन्यवाद। और अब इजाज़त दीजिए अमृता को, नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
2: हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो चुकी हैं, और ऐसे में बच्चों को क्या कुछ समझाइश दें कि वो जिम्मेदार, होनहार और अच्छे मानवीय आचरण का अनुसरण करें। ऐसे ही बातों के साथ बुना है आज का कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का ये अंक। लेकर हाजिर हूँ मैं नीतिका वर्मा। तो कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं अपने पहले श्रोता के साथ। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्ते मैम।
2: किससे बात कर रहे हैं हम?
3: जी मैं जिला आदमपुर मध्य प्रदेश से निकिता बात कर रही हूँ। मैम आपका नाम?
2: मेरा नाम नीतिका वर्मा।
3: जी मैम।
2: तो निकिता जी कैसी हैं?
3: कैसी हैं मैम आप?
2: जी हम अच्छे हैं, आप बताइए।
3: हम भी अच्छे हैं मैम।
2: जी निकिता जी आप क्या कुछ करती हैं?
3: अभी तो कुछ नहीं कर रहे मैम, घर पे ही है।
2: पढ़ाई हो चुकी?
3: नहीं, पढ़ाई तो पहले ही को बहुत दिन हो गए तब छोड़ दी।
2: क्यों छोड़ दी?
3: मैम यहाँ से थोड़ी दूर था स्कूल, तो फिर यहाँ से मेरे दोस्त लोग भी काफी मतलब पढ़ा और लोगों ने भी छोड़ दिया था, तो मैंने भी छोड़ दिया, फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए।
2: अच्छा, तो पढ़ाई आगे जारी रखने का कोई इरादा है या नहीं है?
3: अब देखते हैं मैम।
2: नहीं देखते हैं नहीं, जरूर कीजिएगा। ये एक ऐसा हथियार है शिक्षा जो कि आपको हमेशा काम आएगा, है ना?
3: जी मैम।
2: चलिए तो निकिता जी ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां लगी हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं?
3: जी मैम, मेरी दो सिस्टर हैं।
2: अच्छा, तो ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां जो लगी हैं तो उसमें वो क्या कुछ करें, क्या कुछ सीखना चाहिए?
3: जी मैम अभी तो वो घर पे ही रहती हैं, तो अभी जो आगे की पढ़ाई, जो आगे की क्लास आने वाली है तो उनकी तैयारी कर रही हैं।
2: अच्छा।
3: जी मैम वो अभी अभी घर पे ही हैं और सब लोग घर पे ही रहते हैं।
2: अच्छा, तो पढ़ाई जो आगे की कक्षा की कर रही है वो?

0: बताते हैं ना सर लोग कि जो आपकी आगे क्लासों में ये आने वाला है, तो अभी जो एक महीने तक स्कूल लगे थे तो अभी स्कूल जाती थी, हमारे यहाँ से तेंदुखेड़ा जाते हैं स्कूल।
1: चलिए निकिता जी, ऐसा है जब लग जाएंगी तो उनको क्या कुछ सिखाएंगी? बड़ी बहन है आप।
0: हाँ बड़ी बहन तू मैं।
1: तो उन्हें
0: जी मैम मेरा दायित्व है उनको कुछ सिखाना, जो मेरे से आता है वो बताना उनको।
1: हाँ जो हुनर है आपके पास में वो उनको दीजिए, है ना। और जाहिर है कि हर किसी के पास में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है।
0: हाँ मैम वो तो है,
1: है ना। तो निकिता कौन सा हुनर रखती हैं आप?
0: मुझे तो गाने गाने का बहुत शौक है मैम।
1: चलिए तो संगीत जो है एक साधना के समान है, तो उनको संगीत जरूर सिखाइएगा। और एक डिसिप्लिन लाइफ होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में संगीत की शिक्षा भी हो।
0: यस मैम।
1: चलिए निकिता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। काफी सालों बाद बात हुई है मेरी, कम से कम 2 साल हुए तब बात हुई थी फोन करेगी इसने कार्यक्रम, आज मेरा कॉल लगा, मुझे बहुत खुशी हुई।
1: चलिए
0: ठीक है मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, किससे बात कर रहे हैं हम?
1: जी। मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, साहब, ग्राम बौतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से।
0: जी, दमोह से आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां जो लगी हैं,
1: जी जी मैम,
0: तो इसमें बच्चों को क्या कुछ सिखाना चाहिए हमें?
1: देखिए सर, हम लोग तो ऐसा करते हैं सर, उनके लिए मतलब अच्छी अच्छी जैसे कहानियां हैं सर, और जैसे अपने जैसे रामायण को नियम पहलो रखे मैम हम तो,
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल,
1: शाम को बैठो अपने रामायण करो।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो समाज की संरचना है
1: जी
0: वो राम के चरित्र पर आधारित है,
1: बिल्कुल मैम,
0: और इसके लिए रामायण का ज्ञान होना बहुत जरूरी भी है।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चों को रामायण की शिक्षा आप दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बच्चों को एक गुरु ये भी मिल जाएगा, और बच्चे अपने समय के साथ में समझ भी अपनी बढ़ाएंगे, इस उम्मीद के साथ में। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके।
1: ओके, धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना होता है फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पंजाब से बोल रहा हूँ, पहली बार फोन लगा
0: जी। पंजाब से कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी गुरमुख बोल रहा हूँ मैम।
0: जी गुरमुख जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैम, आपका पहली बार कॉल लगा आपके यहाँ चैलेंज से, मैंने बहुत ट्राई की लेकिन आज लग गया।
0: चलिए, आपको बहुत बधाई कि आज आपका जो प्रयास था वो सफल हुआ है।
1: जी मैम
0: जी, तो गुरमुख जी हम जानना चाहते हैं, बच्चों की गर्मियों की ये जो छुट्टियाँ लगी हैं।
1: छुट्टियाँ क्या मैम, हम दृष्टिहीन है, छुट्टियाँ छुट्टियाँ हमारी तो।
0: अच्छा, तो परिवार के सदस्य होंगे छोटे बच्चे?
1: सभी है मैम
0: जी। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या कुछ सिखाना चाहिए कि वो गर्मियों की छुट्टियों का आनंद भी ले सकें और वो कुछ सीखें? हालांकि खेलना, अगर वो मैदान में जाके खेलते हैं जिससे कि उनका शारीरिक बल बढ़े और मैदान में जाके खेलते हो तो, लेकिन यदि नहीं खेलते हैं और मोबाइल पे ही रहते हैं, आप चाहें तो बच्चों के साथ में बैठ करके कहानियां या जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो उनको सिखाएं, पुरानी बातें बताएं, क्या कुछ हुआ करता था हमारे पुराने समय में, तो वो बच्चों
1: बहुत सुनाते हैं मैम। मेरे जो है जो कहते हैं बचपन की, कहते हैं हमारे बच्चे बचपन की मामा, एक मेरी बहन के भी यहाँ लड़के लड़कियाँ, तो कहते हैं मामा जी पुरानी बातें सुनाई अच्छी लगती है, हम सुनाते रहते हैं।
0: हाँ, उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ दीजिए क्योंकि ये जानकारियाँ उन्हें पता चलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है कि जब उनको बताते हैं ना कि चिट्ठियां लिखा करते थे और चिट्ठियों के माध्यम से ही बातें हो पाती थी क्योंकि टेलीफोन हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे, इस प्रकार की जब बातें बताते हैं तो बच्चे बड़ा आश्चर्य करते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: और उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे इन गर्मियों की छुट्टियों में।
1: जी मैम
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: अनिल कंसल है, इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: कैसे हैं?
1: हम बैंक में नौकरी करते हैं, इस समय बैंक में है, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं।
0: चलिए, अच्छा है, रेडियो का शौक आपका बना हुआ है जो नौकरी के साथ में, बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए कि बच्चों की छुट्टियां जो ये इन दिनों लगी हुई हैं गर्मियों में, तो क्या कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को?
1: हाँ, बच्चों को तो सबसे पहले तो यही सिखाना चाहिए कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए, मोबाइल का उपयोग केवल अपने पढ़ाई के काम के लिए करे। सबसे बड़ी शिक्षा यही है आजकल के जमाने में बच्चों को।
0: जी बिल्कुल, सबसे बड़ी शिक्षा यही है। लेकिन इसके अलावा ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप कि उनको कुछ सीखना चाहिए?
1: नहीं, बच्चों को जैसे कहे कि हम देखते हैं कि बच्चे अधिकतर मोबाइल और टीवी में ज्यादा रहते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, उनके लिए जैसे पहले के जमाने में हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट, ये खेलने देना चाहिए
0: हाँ
1: और इसके लिए खेलने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक रूप से विकास हो। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होंगे तभी वो अच्छा पढ़ पाएंगे।
0: ये बिल्कुल सही कही आपने बात कि बच्चों को शारीरिक विकास के लिए प्रेरित करें, है ना। इसके अलावा आपको लगता है कि बच्चों को कुछ कामकाज भी सीखना चाहिए दैनिक दिनचर्या की?
1: बच्चों को मतलब क्या कि खान पान भी ध्यान रखा जाना चाहिए बच्चों का, कि आहार अच्छा होगा तो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, और
0: जी
1: शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो वो पढ़ाई में भी ध्यान अच्छी तरह से लगा पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। बच्चों, आप नौकरी करते हैं बैंक में आपने बताया, तो ऐसा भी होता है कि घर में पापा मम्मी अगर दोनों नहीं होते हैं और बच्चे घर पे अकेले हैं इन दिनों गर्मियों में, यदि
1: बिल्कुल
0: तो बच्चों को कुछ फायरलेस कुकिंग वगैरह भी आना चाहिए,
1: जी बिल्कुल।
0: है ना।
1: तो मतलब है कि आजकल के जमाने ऐसे कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए और हर तरह की शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी कोई सी बात आप रखना चाहेंगे जो कि इस समय की मांग है?
1: इस समय की तो मांग है कि बस सभी रूप स्वस्थ, सभी लोग स्वस्थ रहे, बच्चों को गर्मियों को छुट्टी में धूप में कम से कम निकलने दें, उनके शारीरिक और मानसिक रूप का विकास का ध्यान रखें,
0: जी
1: और अच्छी पढ़ाई के लिए उनके लिए ये चीजें सबसे पहले जरूरी हैं।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बात की अहमियत हम मानते हैं और आपकी बात रेडियो के माध्यम से सभी तक पहुंच रही है, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैडम, वो बहुत दिनों के बाद है आपके कार्यक्रम में हमारा फोन लगा है, कम से कम 6-8 महीने तो हो ही गए।
0: जी, खैर ये तो बहुत लंबा समय हो गया, इतनी भी दूरी मत बना के रखिए आप, है ना।
1: क्या कि हम तो फोन लगाते हैं लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि 10 बजे का समय तो बैंक के कर्मचारियों के लिए काफी
0: हाँ
1: महत्वपूर्ण होता है और
0: जी,
1: रहता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: 2-3 बार हमने कोशिश भी करी लेकिन लग नहीं पाया, आज लग
0: हाँ।
1: पाया।
0: चलिए, हमारा भी सौभाग्य कि आपसे बात हो पाई।
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत आपका शुभ नाम।
0: जी, मेरा नाम नीतिका वर्मा है। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते,
0: नमस्ते। कैसे
1: कैसी हैं?
0: हैं आप? कैसे हैं पहले ये बताइए
1: हम ठीक हैं, बस
0: जी।
1: गर्मी में झुलस गए हैं।
0: अच्छा, आपका परिचय तो दे दीजिए पहले। जी
1: मेरा नाम भावना यादव है, काली चौक सिवनी से बोल रही हूँ मैं।
0: सिवनी तो बहुत अच्छी जगह
1: जी मैम, बहुत अच्छी जगह है जी,
0: है ना
1: सिवनी
0: जी। तो
1: के लोग भी अच्छे हैं।
0: जी जी जी
1: जी
0: तो भावना यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि
1: जी
0: गर्मी की ये जो छुट्टियां लगी हैं, इसमें बच्चों को क्या
1: जी
0: कुछ सिखाएं, क्या कुछ करना चाहिए, उनका समय कैसे बीतना चाहिए गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए।
1: बच्चों को बाहर नहीं निकल देना चाहिए, घर में ही उनके साथ खेलें कूदें, जो बोले अपने हाथों से बना के खिलाएं, बस बाहर का ना खाएं, बाहर धूप में ना घूमें बच्चे,
0: इसके अलावा बच्चे अपना समय कैसे बिताएं?
1: बस खेल कूद के मैडम, छोटा छोटा अट्ठो बोलते हैं, लूडो बोलते हैं, सांप सीढ़ी बोलते हैं,
0: हाँ
1: इसके इसमें खेल के बच्चों
0: हाँ हाँ
1: के साथ अपना समय पास करें।
0: हाँ अच्छा, तो घरेलू खेल खेल करके वो अपना समय बिताएं, आप ये चाहती हैं।
1: जी
0: अच्छा,
1: मैम
0: और
1: जी,
0: सिखाना हो तो क्या कुछ सिखाएं,
1: मतलब मैडम
0: यदि बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए या नहीं,
1: हाँ मैडम, बहुत कुछ
0: तो क्या कुछ
1: सिखाने का है बच्चों को।
0: क्या कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को?
1: बच्चों को मैडम बस बेटा बाहर ना जाओ, जरूरी
0: जैसे कि
1: है
0: आ,
1: जी,
0: आ, उनकी रुचि के अनुसार सिखाना चाहिए, या तो फिर
1: उनकी
0: भावना जी
1: लाइन
0: मेरा
1: से
0: कहना
1: चलनी
0: है
1: चाहिए,
0: कि
1: उनकी रुचि जो है उस लाइन से चलना चाहिए, और उनकी रुचि ये ऐसी होना चाहिए जो अपन को भी पसंद हो, अन्यथा उनकी रुचि अलग है तो फिर अपन लोग नहीं जा सकते, उनका साथ नहीं ले
0: चलिए
1: सकते।
0: भावना जी, हम ये कहते हैं कि दैनिक दिनचर्या जो होती है ना,
1: जी,
0: उसमें से कुछ काम हम बच्चों को सिखाएं तो कैसा रहेगा,
1: जी मैम बढ़िया है, सुबह
0: है
1: उठिए,
0: ना?
1: घूमने फिरने जाइए।
0: हाँ, दैनिक दिनचर्या उनकी
1: जी हाँ जी
0: नियमित करें पहले तो, क्योंकि ये ना हो कि बच्चे बहुत देर देर तक सो रहे हैं,
1: जी हाँ जी,
0: है ना?
1: जितने जल्दी उठे उतने अच्छा, हो सके तो घूमने जाएं।
0: हाँ, उनकी दिनचर्या जो है वो अच्छे से समायोजित रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को जो दैनिक जीवन के काम होते हैं, है ना, वो बच्चों को ज़रूर सिखाए जाने चाहिए, है
1: जी मैम, सब सिखाना
0: ना?
1: चाहिए बच्चों को।
0: हाँ, घरेलू कामकाज में भी उनकी
1: जी
0: रुचि होना चाहिए, क्योंकि ये उनके
1: मैम
0: जीवन का एक भाग होता है, एक हिस्सा है उनके जीवन का, जिसको कि उन्हें अपनाना है और नियमित रूप से चलना है ना? तो बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, उस उम्र के अनुरूप कहना चाहिए, उस उम्र के अनुरूप उन्हें काम सीखना चाहिए, है ना? तो भावना यादव जी, और भी कोई बात करना चाहती हैं आप, या फिर गीत सुनवा देंगे आपको?
1: जी सुनवा दीजिए मैडम,
0: जी, हम सुनवा देंगे। और बहुत अच्छा
1: मैडम
0: लगा।
1: मेरा 6 महीने बाद कॉल लगा है,
0: अच्छा, तो ये बहुत
1: मैडम
0: लंबा गैप हो गया है, अगली बार आप जल्दी फोन कीजिएगा। एक आध
1: लगता नहीं, कॉल में लेकर बैठ रहती मोबाइल।
0: हाँ, चलिए कभी लेकिन ऐसा है ना कि दूसरों की बातें सुनकर भी बहुत मजा आता है ना?
1: जी मैडम
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपका फोन जो है वो जल्दी लग जाएगा, है ना? और एक अंतराल के बाद में फोन लगाना भी जरूरी है, ताकि हमारे नए श्रोता भी हमसे जुड़ते रहें।
1: जी
0: चलिए, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया भावना जी,
1: मैम,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू मैम, नमस्कार।
2: नहीं,

0: कब।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए।
0: मेरा अंत्य प्रयाग से बात कर रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की ये जो छुट्टियां हैं, इसमें बच्चों को क्या कुछ सीखना चाहिए अपनी रुचि के अनुसार, या हस्तशिल्प का, या क्या कुछ करके समय बिताना चाहिए, आप ये बताएं।
0: जैसे हमें पेंटिंग बनाना चाहिए, चित्र होता है ना।
1: हाँ हाँ,
0: उसको, और जैसे हमें बहुत जैसे किताबें हैं उसको पढ़ना चाहिए।
1: हाँ हाँ, पढ़ना चाहिए।
0: और जैसे कहीं है घूमना चाहिए, हमारे जैसे फैमिली में बड़े लोग उनके साथ।
1: हाँ,
0: और बहुत चीज को हमें जानना चाहिए।
1: हाँ,
0: जैसे हमें किसी चीज की जानकारी नहीं पूछना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने, है ना। तो
0: बहुत चीज सीखना भी चाहिए।
1: जी, बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। घर में यदि कोई हुनरमंद है, हस्तशिल्प की भी जानकारी रखता है, तो वो कुछ भी सीखे तो भी बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ,
0: और आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम नीतिका। बहुत अच्छी बात बताई आपने, है ना। तो
0: बहुत चीज सीखना भी चाहिए।
1: जी, बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। घर में यदि कोई हुनरमंद है, हस्तशिल्प की भी जानकारी रखता है, तो वो कुछ भी सीखे तो भी बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ,
0: और आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम नीतिका।

0: प्रकाश परियाम बोल रहा था।
1: प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं सीनी जिला मध्य प्रदेश से बात कर रहा था
1: जी। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ये बताइए कि बच्चों की जो ये छुट्टियां लगी हैं गर्मियों की,
0: जी
1: जी, तो बच्चों को क्या कुछ सीखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में?
0: या बच्चे को खैर तो काफी छोटे बच्चे हैं तो मैं कह नहीं सकते, लेकिन बड़े हैं तो अपना जो भी चीज जो स्कूल को छोड़ स्कूल के अलावा और भी जो बाकी चीजें होती है वो करने की इच्छा होती है बच्चों की।
1: जी जी, वैसे ऐसा है ना कि गर्मी की छुट्टियां तो सभी की लगी हैं बच्चों की, छोटे बड़े सभी के लिए, तो उम्र के अनुरूप ही उनको काम दिया जाना चाहिए या सीखना चाहिए। कहने का अर्थ यही था हमारा। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि बच्चे अगर आपके बहुत छोटे हैं, आप बता रहे हैं, तो वो अपनी उस उम्र के बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ देखना सुनना चाहिए, सिखाना चाहिए, है ना, जानकारी देनी चाहिए कि उनका अच्छा समय बीते।
0: अब कई चीजें तो ऐसी है कि छोटे रहते हैं, ज्यादा बाहर आदमी घूम पाते मैडम।
1: हाँ हाँ।

0: उनको कई चीज देखना रहता है, जैसे मेरा बड़े वाला लड़का 8 साल का है तो वो बोलते मेरे को वाटरपोर्ट जाना है, नहाए नहीं हूँ मैं, नदी जाना है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अब भी हम कल परसों गए थे मैडम, तो वहाँ से क्या है फिर हम उसको नदी अदी नहला के लेके आया, आम के झाड़ देखना है, जंगल का सीन देखना है।
1: हाँ।
0: क्या हम प्रॉपर शहर में ही रहते हैं तो गांव देहात के नजारे नहीं देख पाते बच्चे।
1: हाँ। और उसके अलावा बच्चों को बहुत अच्छी कहानियां सुनाई जानी चाहिए, अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली है और आपके मदर फादर वगैरह रहते हैं, दादी नानी वगैरह हैं, या आप खुद भी हैं, जो वो बच्चों को कहानियां सुनवाइए और बच्चों को कहानियों की किताबें दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि 8 साल की उम्र के बच्चे यदि पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
0: है ना? बात भी सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आजकल वो स्मार्ट है, हर चीज स्मार्ट आ गई ना आजकल के, ना मैडम बच्चे भी स्मार्ट हो गए क्या?
1: हाँ, तो
0: आजकल उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है, अपने मन से निकाल के डायरेक्ट वीडियो समेत देख ले।
1: नहीं तो बच्चों की इंटरनेट पे बच्चों
0: जी
1: बच्चों की इंटरनेट पे भी कहानियां अवेलेबल हैं, तो बच्चों को कुछ अच्छी जानकारी के साथ में वो मिले तो ज्यादा अच्छा है, है ना? इंटरनेट है जो, उसका सदुपयोग करना आना चाहिए।
0: जी,
1: है ना? तो यदि आप उस पर ध्यान दें तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यदि कुछ कलात्मक चीजें उनको दे सकें तो भी बहुत अच्छी बात है।
0: नहीं, हालांकि कहानियां आनी जो आपने बोले ना, मैं वो चीज में करता हूँ मैडम, मैं अपने बच्चों को सुनाया हूँ अपनी जो कहानियां मेरे को जो बचपन में सुना हूँ।
1: हाँ हाँ।
0: पहले अधिकार से उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इंसान क्या कहानी से संतुष्टि कर देता था बच्चों को।
1: जी जी जी।
0: और आजकल के बच्चे तो आपको तो खैर पता ही है, सभी को पता है कि आजकल के बच्चे छोटेपन से मतलब कि बहुत ज्यादा स्मार्ट ही हो गए हैं कोई भी चीजों में।
1: जी जी। लेकिन प्रकाश जी,
0: पहले जो का जमाना था मैडम जी, देखिए आप हमारे जमाने में हम लोग छोटे थे, हम यहाँ तक कि काफी 12-13 साल की उम्र तक के कंचे वंचे दुनिया की चीज गिल्ली डंडा कुछ भी मतलब खेले ही हैं।
1: जी जी जी जी।
0: और आजकल के बच्चे मतलब कि एक प्रकार से खेल कूद भी उनका आजकल बहुत कम हो गया, मोबाइल पकड़ लेते हैं, अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, मोबाइल में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। जो पहले के जो खेल कूद था, जो अपना शरीर भी क्या है, खेल कूद में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहना, शरीर भी सही बढ़ना, पाचन भी अच्छा होना,
1: इन सब चीजों के लिए प्रकाश जी केवल अफसोस ही जाहिर करते रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए एक प्रयास ये किया जा सकता है कि यदि उनको संगी साथी नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद साथी बनकर देखिए, आपसे अर्थ है आपके परिवार के अन्य सदस्य भी उनका साथी बनके देखें, उनके साथ खेल के देखें, उनको आनंद जरूर आएगा। और कहानियां जो हैं वो उन्हें पढ़ने को मिले तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि आप उनके साथ में समय बिताते हैं सबसे बड़ी बात, तो हर दिन की एक सी दिनचर्या होना जरूरी नहीं है, हमारी खुद की भी नहीं हो पाती है, है ना? व्यस्ततम जीवन में
0: एक बात आपसे शेयर किया, आपने बात किया मैं मुझसे
1: जी जी,
0: तो इस टाइप की बातें खैर जो चीज मैं बोल रहा हूँ चीज को तोड़ भी करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, क्या जैसे टीवी देख रहे बंद कर देता हूँ, जो साइकिल पकड़ो छोटी साइकिल है, बेड बेड बेड पेंटल ला दिया हूँ, या जो भी अपनी जो भी है इस टाइप की चीजें खेलो।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं,
0: जीवन बहुत जरूरी चीज है ना, खेलना बहुत अच्छी चीज है।
1: जी जी जी। चलिए, तो आप
0: जी जी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ही सहारा लो आप,
1: जी
0: चीजें खेलने की, बैडमिंटन है अपना, क्या बोलते क्रिकेट के लिए बैट बॉल ले हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो यही हमारा कहना, यही हमारा कहना,
0: घर के पीछे झूला झूलो, खेलो, मतलब इस टाइप की चीजें कराते रहता है।
1: जी प्रकाश जी, हमारा उद्देश्य यही है कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिले। बच्चे गर्मियों की ये जो छुट्टियां हैं, ये समय ऐसा होता है जिसमें पढ़ाई से थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं बच्चे, और थोड़ा सा समय ज्यादा दे सकते हैं आपके अनुरूप, वो आपसे कुछ सीख सकते हैं, है ना? तो वो शिक्षा के माध्यम से हो, या किसी गुण के माध्यम से हो, या किसी प्रकार की हस्तशिल्प या किसी भी प्रकार की चीज सीखें, यही कहना था हमारा। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: जी, जी।

0: श्रीमती रचना राजेश खेड़े खरगोन से,
1: कि बच्चों की ये गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को आप क्या कुछ सिखा रही हैं, क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ सिखाएंगी
0: तो
1: भी?
0: मैं वैसे शिक्षिका हूँ
1: जी,
0: मेरी अभी 1 महीने की छुट्टी चल रही है।
1: हाँ,
0: और मेरा ये है कि बच्चों को मैं पर्यावरण के लिए जागरूक करूँ, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश करूँ
1: जी,
0: क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा
1: जी,
0: है ना। तो जितना हो सके पशु पक्षियों की सुरक्षा का भी हम ध्यान रखें। मैंने खुद में मेरे घर में बर्ड हाउस लगा रखे हैं, गोरैयाओं के लिए बहुत पानी की दाने की व्यवस्था कर रखी है।
1: जी जी जी, पर्यावरण की पर्यावरण की सीख के अलावा रचना जी क्या कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में?
0: मैं सबसे पहले संस्कार डालने की कोशिश करूँ। मैं
1: बहुत अच्छी बात,
0: अपने माता पिता दादा दादी घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब की बात सुने, उनके पास देखे, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूरी बनाकर रखे और उनसे उनके अनुभव जाने।
1: जी जी जी,
0: उनके समय में कैसे होता था, क्या होता था। तो पुरानी बातों को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करने की कोशिश करें, हमारे संस्कारों से जुड़े।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात
0: कही। और मेरी यही कोशिश है कि आधुनिकता के साथ साथ हम हमारे संस्कारों को भी जाने
1: जी,
0: कि हमारे दादा दादी नाना नानी किस प्रकार से रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, वो कैसे चीजों को सहेज के रखते थे।
1: जी बिल्कुल अच्छा।
0: हम भी हमारे पर्यावरण के साथ साथ हम हमारे संस्कारों से भी जुड़े, हमारी जड़ों से भी जुड़ के रहे। और भी बहुत सी चीजें हैं
1: जिनसे
0: बच्चों को अवगत हमारी, जैसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जाने
1: जी जी,
0: रामायण महाभारत उनके बारे में जाने
1: जी,
0: गीता के बारे में जाने
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ बचा के रख सकते हैं।
1: जी जी जी,
0: इस आधुनिकता के साथ साथ
1: जी। रचना जी, बतौर शिक्षिका आपने बहुत अच्छी बात कही है और उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात को गांठ बांध करके जो परिवारजन है, है ना, और उसमें जो मतलब परिवारजन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे परिवार के साथ में रहते हैं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चे का ख्याल रखें हर प्रकार से, है ना। तो बड़े बुजुर्ग अपना पक्ष जो है वो मजबूत रखते हुए उनको अपनी शिक्षा दें और जो उनके हम उम्र के लोग हैं वो उनके साथ रहें और उनके साथ में वो अपनी समझाइश के साथ साथ में वो अपनी चीजों का आदान प्रदान करें।
0: आजकल ये देखने में आ रहा है कि किसी के पास समय नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चों को बड़ों के पास बैठने का समय नहीं है और बड़ों को बच्चों के साथ रहने का समय नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप समय निकालें, बच्चों के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करें और उन्हें अच्छी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बातें सिखाएं
1: जी,
0: कि पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ हम हमारी संस्कृति को ना भूलें।
1: जी जी जी, रचना जी आपने बतौर शिक्षिका एक बहुत अच्छी बात रखी है, गुड़ बात है आपकी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी इस बात का ख्याल रखेंगे। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी।
0: धन्यवाद दीदी, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: जी मुझे भी बहुत खुशी हुई रचना जी, बहुत गुड़ बात आपने कही है, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद।

0: बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का आनंद मिले, वो अपनों से मिले, कुछ सीखें, स्वस्थ मनोरंजन करें, इसी उम्मीद के ताने बाने से बना ये कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे का अंक समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। असम में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल कर चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं केरल में यूडीएफ ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन ने 18 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। कल दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए नए सवेरे का प्रतीक है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी और यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा भोपाल में प्रदेश के शासकीय स्कूली शिक्षकों के लिए आवासीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 2160 शिक्षक सहभागिता करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पलक, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का ये नगमा।

आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं कटी पतंग फिल्म का नगमा, जिसे सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनकी परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब हमें जो ख़त लिख के भेजा है वो है गोला बाजार से सिद्धा आर्या, अभय नंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। एक और ख़त हमें लिख के भेजा है, ये लिखने वाले हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है आर पार फिल्म का नगमा जिसे गाया है गीता दत्त ने।

फिर वही दिल आया हूँ इस फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनना चाहा है। आप सभी ने लिखने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, ग़ुलाम साबिर राही महराज और इनके परिवार के सभी सदस्य। शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू साजिदा रानी और हिना कौसर। तो आइए सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

राजकुमार फिल्म कनकमां आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई।

राजकुमार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल थे और सुनने के ख्वाहिशमंद थे मेहर नगर अमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि और इनके परिवार के सभी सदस्य। आइए अब आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

0: दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे, जिसे सुनना चाहा था संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदा, आसमा, सालिमा, शुएब और मुश्तबा, रऊफ और शहीद। तो आप सभी ने इस गीत को सुनना चाहा था दिल है तुम्हारा फिल्म से, जिसे
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: और सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं जादूगर को सलाम धारावाहिक का छठवां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। श्रोताओ, धारावाहिक की छठी कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी दुस्साहस। ये कहानी प्रेम पच्चीसी, बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियां मानसरोवर भाग 8 में संकलित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण। आज का मौका बड़ा ही खास है, सब बड़े ही उत्साहित हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर मुंशी मैकुलाल जी के यहां दावत की व्यवस्था जो है, सब जल्दी में है। कोई मुंशी जी को इंतजार नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुंशी जी के रसूख के सब कायल हैं। उनके व्यक्तित्व का जादू सभी के सिर चढ़कर बोलता है, भाई मुंशी जी ही हैं। उनका हर काम औरों से अलग और बेहतर जो होता है, चाहे वो सोमरस का आनंद हो या फिर धुएं का।
1: रामबली, ओ रामबली।
2: कौन इदू? आया भाई, आया, रुको जरा।
3: अरे जल्दी आओ भाई, चिराग जल गए हैं, मुंशी मैकुलाल जी इंतजार कर रहे होंगे।
2: अरे आया आया आया भाई, रुको तो।
1: जिनको तो पहुंच भी गया होगा,
3: अलगू ने भी सारा बंदोबस्त कर ही लिया हो।

0: venga.
1: चलो चलो भैया, माफ करना, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा।
0: अरे हमारी कोई बात नहीं है, मुंशी को हमारा इंतजार करना पड़े ये बात अच्छी नहीं।
2: हाँ भाई, लखनऊ के नौबस्ता मोहल्ले में मुंशी मैकुलाल जी जैसा कोई दूसरा उदार, दयालु, सज्जन, रसूखदार व्यक्ति कोई दूसरा है क्या?
0: हाँ भैया, शहर के इतने बड़े वकील हैं, ये तो हम लोगों का भाग्य है कि वो हमें अपने साथ उठने बैठने लायक समझते हैं।
1: अजी हमारी छोड़िए, मोहल्ले में एक आदमी ऐसा बताइए, क्या इक्केवान, क्या ग्वाला, क्या कहर, जो उनके एक इशारे पर 100 काम छोड़कर न चलाए। और रही बात वकालत की, तो भैया एक बात बता देते हैं, अपने काम का इतना पक्का एक भी आदमी हमने नहीं सुना जो दिन भर कचहरी और रात को नशे की खुमारी में भी मुवक्किलों को कानूनी सलाह दे दे। ये मुंशी जी के ही बस की बात है।
2: अरे भैया, नशा तो उनकी कुल प्रथा है। हाँ
0: भैया, ये सारी चीजें तो देवताओं का सोमरस हैं कि जिससे बुद्धि प्रज्वलित होती है।
1: हाँ भैया, नशे का एकदम और दिमाग सुम सातवें आसमान पर।
0: लो, बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला।
2: हाँ, बातें इतनी नशीली जो थी।
3: मुंशी मैकुलाल रोजाना कचहरी से लौटते और अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक कर चले जाते। अलगू इसका मतलब समझता था। शाम होते ही एक नशे की बोतल उसके सामने पेश कर दी जाती, बस महफिल जम जाती। एक ओर मुवक्किलों की कतार और दूसरी ओर मित्र मंडली, वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती। यही रोज का नियम है। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवाय कोई दर्द अपने सिर मोल नहीं लेते थे। देश का कोई आंदोलन, कोई सामाजिक सुधार, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं था। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, स्वराज का आंदोलन चला, आत्मरक्षा की आवाजें सारे देश में गूंजने लगीं। किंतु मुंशी जी की दिनचर्या में कोई विघ्न नहीं पड़ा। अदालत और नशे के सिवाय उनके लिए संसार की सभी वस्तुएं केवल माया थीं। चिराग जल चुके थे, मुंशी जी की सभा जम गई थी, उपासक गण जमा हो चुके थे, लेकिन अलगू अभी तक बाजार से नहीं लौटा था। सभी की व्याकुल निगाहें दरवाजे पर ही अटकी थीं। एक आदमी बरामदे में, 2-3 महाशय टोह लेने के लिए सड़क पर, लेकिन अलगू था कि दूर दूर तक नजर नहीं आता था। आज जीवन में यह पहला मौका था कि मुंशी मैकुलाल जी को इतना इंतजार करना पड़ा। वो ना कुछ बोलते थे, ना किसी की ओर देखते थे, उनकी तमाम इंद्रियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रित हो गई थीं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े, मित्रगण खिल उठे, आसन बदल कर सारे संभल बैठे, सभी की आंखें चमक उठीं। आशामय विलंब आनंद को और जो बढ़ा देता है।
4: अलगू, बोतल कहाँ है?
5: ना जी, आज नहीं मिली।
4: आज नहीं मिली, ऐसा क्यों?
5: अजी, दुकानों के दोनों रास्तों पर वो सुराज वाले खड़े थे, किसी को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। हाँ,
4: तो तुमने हमारा नाम नहीं लिया?
5: अजी कहा, बहुत कहा, लेकिन वहाँ कौन किसी की सुनता था, सभी लौट आते थे, तो मैं भी लौट आया।
4: नशा लाए?
5: अजी वहाँ भी यही हाल था।
4: हैं? अरे तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के?
5: हाँ नौकर हूँ जी, नौकर, लेकिन मुंह पे कालिक लगवाने के लिए थोड़ी नौकर हूँ मैं।
4: तो क्या वहाँ बदमाश मुंह पर कालिक लगा रहे थे?
5: देखा तो नहीं, पर सभी यही कह रहे थे।
4: अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूँ, देखूं तो किसकी मजाल है जो रुके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई गुंडा राज थोड़ी है। वहां कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। अरे थानेदार मेरे दोस्त हैं। चलो जी ईदू चलते हो, राम बली बेचन ए झिनकू सब चलो। अरे एक एक बोतल पकड़ लो, देखता हूं कौन रोकता है।
3: मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ नशे के अड्डे के सामने वाली गली में पहुंच गए तो वहां बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी हुई थीं। एक मौलाना जामिन थे जो शहर के मशहूर आलिम थे, दूसरे स्वामी घनानंद थे जो वहां की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हित चिंतक थे। उनके सामने ही थानेदार साहब कई सिपाहियों के साथ खड़े हुए थे। थानेदार साहब भी मुंशी जी के प्रशंसकों की फहरिस्त में शामिल हैं। वहां से तो सभी आगे बढ़ गए, पर आगे कहीं मौलवी साहब ने तो कहीं पंडित जी ने सबका मन खट्टा कर दिया।
6: आइए आइए मुख्तार साहब, ये क्या आज आपको ही तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आप ही के साथ है ना?
4: जी हाँ, पहले आदमी भेजा वो नाकाम वापस गया। सुना है आज यहाँ हुड़दंग मचा हुआ है, स्वराज वाले किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे।
6: जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो आपको रोके? आप शौक से जाइए, कोई चूं तक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ?
4: ये हुई ना बात, आ भाई आओ राम बली अजिनकू बेचा नीदू, आओ भाई चलो चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो। अरे ईदू भाई दोस्त, ये तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आए? क्या इसी रवैये से अंग्रेजों से लोहा लोगे हैं? अपने देश को स्वाधीन करवाओगे?
7: जी वो जी मौलाना जी वो मैं तो
8: बच्चा ये पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा।
9: जी स्वामी जी।
4: स्वामी जी इसे तो आप खुद ही पी जाइए।
8: अरे मुंशी जी इस भिक्षुक पर दया कीजिए, उधर मत जाइए।
4: देखो तो सही चारों कैसे मूर्तियां बने खड़े हैं। अरे चलना है तो चलो भाई, मैं तो जाता हूँ। अब हटिए स्वामी जी, रास्ता दीजिए। राम बली अरे सुनते क्यों नहीं हो? अरे भाई चलना है कि नहीं?
3: वहां चारों तरफ स्वराज वालों का बोलबाला था, आंदोलन की ध्वनियां पूरे माहौल में व्याप्त थीं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो देशभक्ति के भाव से आंदोलित ना हो रहा हो। ऐसे में इन चारों की मनोस्थिति भी डामाडोल हो चुकी थी। मुंशी जी के शब्द अवश्य कानों में पड़ रहे थे, परंतु कदम साथ नहीं दे रहे थे। स्वामी जी के तेज ने इन चारों के कदम बांझो दिए थे। चारों ठिठके सहमे अपनी जगह पर खड़े रहे और मुंशी जी को अकेले ही नशे के अड्डे पर जाना पड़ा।
10: अरे कब तक हम ऐसे भेड़ बने खड़े रहेंगे?
11: ठीक कहते हो भैया, हर बात की एक हद होत है।
10: यहाँ आकर ऐसा लगा कि नशे ने हमारे शरीर के साथ आत्मा को भी खोखला कर दिया है। भाई मुझसे तो अब और सह नहीं जाएगा।
12: क्या मेरा जमीर इतना मर चुका है कि नमाज के वक्त मैं यहाँ नशे की एक बोतल के पीछे? ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा।
10: तो फिर ये बोतलें हाथ में लिए क्यों खड़े हो? पेको इन्हें।
9: ये लो।
11: एक बेर हमारा इक्का बेगार में पकड़ जात रहे।
10: और मुंशी जी अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं। आदमी कोई बुरा कार्य करता है तो छिपा कर करता है, बेहयाई की भी एक हद होती है भाई।
11: भाई पीठ पीछे कऊ की बुराई ना करे चाहिए, और जान कुछ होए पर आदमी बड़ा हिम्मती है। इतने आदमियन के बीच में कैसा घुसत चला गया है?
10: अरे भैया झिनकू ये कोई हिम्मत ना हुई, थानेदार ना होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता।
8: अरे भैया राम बली मुझे तो कोई 50 रुपए भी देता तो भी मैं पैर आगे नहीं बढ़ाता। स्वामी जी के सामने तो शर्म से सिर ही नहीं उठ रहा था।
12: ठीक कहते हो बेचन।

0: या मुंशी जी के साथ आकर आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहां देखेंगे वहां आड़े हाथ लेंगे। धर्म के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज से तौबा करता हूं, अब बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
1: भाई दू, नशेड़ियों की तौबा कच्चे धागे से ज्यादा मजबूत नहीं होती।
0: अरे भैया, अब फिर कभी मुझे पीते देखो तो मुंह में काली बोत देना। हाँ
2: अच्छा, तो इसी बात पर आज से मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। अब पीऊं तो गाय के खून के बराबर।
3: तो हम सब, अरे फिर कभी जो इसको पियत देखी हो बैठाए के 50 जूते लगाइयो।
4: अरे जा झिनकू, अभी मुंशी बुलाएंगे तो तुम हिलाते हुए पहुंच जाएगा।
3: अजी मुंशी जी के साथ बैठा देखियो तो 100 जूते लगाइयो। जिनकी बात में फर्क है उनके बाप में फर्क है। हाँ
4: तो भाई, मैं भी आज से कसम खाता हूँ, आज से गांठ के पैसे निकाल कर न पीऊंगा। हाँ, मुफ्त के पीने में इनकार नहीं।
2: गांठ के पैसे, अरे रामबली, तुमने कभी खर्च किए हैं पैसे?
5: कहाँ गए चारों? अभी तो यहीं छोड़कर गया था।
6: ए सिपाही, जरा भीड़ हटाओ, मुंशी जी को आने दो, और हाँ इन्हें घर तक छोड़ कर आओ।
5: धन्यवाद धन्यवाद थानेदार साहब।
7: मुंशी मैकुलाल यद्यपि बाजी मार कर आए थे, लेकिन उनके मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। हृदय के किसी कोने में लज्जा उनकी चुटकियां ले रही थी। इस दुस्साहस की उनके अंतर्मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी।
4: आइए आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई।
5: अरे तुम सब के सब कायर ही निकले, एक साधु के चकमे में आ गए।
4: अरे मुंशी जी, इन लोगों ने तो आज से नशा न करने की कसम खा ली है।
5: अरे ऐसा तो मर्द ही नहीं देखा जो एक बार चंगुल में फंस कर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है,
0: जिंदगी रही तो देख लीजिएगा।
3: दाना पानी तो कौ से नहीं छूट सकते हैं, बस चोट लग जाए का चाही। नशा खाए बिना कौ मर नहीं जाते मुंशी जी।
5: अरे देखूंगा तेरी बहादुरी भी।
2: देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। यही ना होगा कि 2-4 दिन तो सुस्त रहेंगे। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दी थी, जो इसे रात दिन पीते हैं तो हमारे लिए कौन मुश्किल काम है।
5: बात करते हैं। अरे एक बार बोतल खुली और नशे की महक और लालिमा देखते ही सभी की तौबा टूट जाएगी। जहां से मैंने जरा सा बढ़ावा दिया वहीं सबके सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी।
0: तुम भी चलते हो जिनको?
3: चलो।
7: अभी तक आपने सुना किस तरह लोग मुंशी जी के कायल थे, पर अब बगावत के स्वर बुलंद होने लगे हैं। ईदू, झिनकू, बेचन, रामबली सबके अपने अपने तर्क हैं मुंशी जी की बात को काटने के, और बेचारे मुंशी जी सभी की बेवफाई से हतप्रभ सबको मनाने में जुटे हैं। पर सबने तो जैसे मानो संकल्प ही कर लिया हो कि अब नशा नहीं करेंगे।
5: यारो, यूं साथ छोड़ना अच्छा नहीं, आओ जरा आज इसका मजा तो चखो। खास तौर पर ये बहुत अच्छी है। अरे आओ तो, इन बातों में क्या धरा है।
0: आप ही को मुबारक रहे, मुझे तो जाने दीजिए बस।
3: हाँ मुंशी जी, हम तो भगवान चाही तो इका नजदीक ना जाब, जूता कौन खाए।
5: अरे बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे?
2: मैंने तो बड़ी कसम खाई है मुंशी जी, जब एक बार इसे गऊ रक्त कह चुका हूँ तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन हो गए पीते हुए।
5: देखा रामबली, इन सब की बेवफाई, ये लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं नहीं जानता था। आओ आज हम दोनों ही

0: मैं तो हाजिर ही हूँ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊंगा।
1: अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना चाहो पियो, गम किस बात का है।
0: लेकिन आप न रहे तब ऐसा सज्जन फिर कहां पाऊंगा।
1: अरे राम भरी, तब की तब देखी जाएगी। अरे मैं आज ही थोड़ी मरा जाता हूँ।
0: जी मुंशी जी, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे, तो उस वक्त कौन रोज पिलाएगा। नहीं नहीं, तब तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकूंगा, इससे तो बेहतर यही है कि मैं अभी से ही ना फिक्र करूं।
1: ओहो राम बली, ऐसी बातें करके दिल ना छोटा करो। अरे आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना बस।
0: मुख्तार साहब, अब ज्यादा मजबूर ना कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे पियक्कड़ों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच पी गए और नीरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने तो मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, और उनकी आज्ञा मैं किसी तरह

बेचारे मुंशी जी अब अकेले पड़ गए थे। अकेले में अशांत मुंशी जी अपने सभी साथियों को दगाबाज और ना जाने क्या क्या समझते रहे। कोई उनके साथ आज बैठकर हंसने बोलने वाला भी नहीं। आखिर नशे को लोग यकयक घृणित समझने लगे, ये बात मुंशी जी पचा नहीं पा रहे थे। स्वयं को अपमानित समझते हुए मुंशी जी आज खुद को कोस रहे हैं और उन्हें ये बात भी खाई जा रही है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे।

लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब साथ छोड़ गए। अब मैं भूत की तरह अकेला पड़ा हुआ हूं, ना कोई हंसने वाला है ना कोई बोलने वाला है। यह तो सोहबत की नजर है, जब सोहबत का आनंद ही नहीं रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। आज मेरा कितना अपमान हुआ, जब मैं गली में घुसा तो सैकड़ों आदमी जहर बुझी आंखों से मेरी ओर घूर रहे थे। नशा लेकर लौटा था तब तो अगर लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां ही नोच कर खा जाते। थानेदार ना होता तो घर आना मुश्किल हो जाता। ये अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी पर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी मजाक करने वाला तक नहीं, लोग इसीलिए तो इसे घृणित वस्तु समझते हैं। इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ है, नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती नशे के आदि पियक्कड़ यूं मेरी बात नहीं डाल जाते। बात यही है कि

0: क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं? इतना अपमान सहकर जनता की निगाह में गिरकर सारे शहर में बदनाम होकर एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या बहुत बड़ा काम कर लिया? बुरी आदत के लिए आत्मा को इतने नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? ये चारों के चारों इस समय मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे मुझे दुष्ट ठहरा रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं कितना नीचा हो गया। ये मानसिक व्यथा अब नहीं सही जाती। आज इस वासना का अंत करके ही छोड़ूंगा, अंत कर दूंगा मैं इसका। आज इस अपमान का मैं अंत कर दूंगा।
1: मुंशी जी,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की छठी कड़ी दुस्साहस। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, मनोज कुमार शर्मा, माधवा अनंत, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम की 6वीं कड़ी।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: कवि श्री राग तेलंग,
6: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।
2: पंछी रे, गगन गगन मस्त मगन।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। असम में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरल में यूडीएफ ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन ने 30 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देश के लिए नए सवेरे का प्रतीक है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। ये पुरस्कार अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। देश में एलपीजी वितरकों के यहां एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अप्रैल माह में 2.15 लाख टन से ज्यादा कमर्शियल एलपीजी बेची गई। अब तक ऑटो एलपीजी की बिक्री लगभग 11,100 टन तक पहुंच गई है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा भोपाल में प्रदेश के शासकीय स्कूली शिक्षकों के लिए आवासीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 2,160 शिक्षक सहभागिता करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सखियों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप इस गर्मी के मौसम में स्वस्थ होंगी। सखियों, मई का महीना आते ही घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। बच्चों की छुट्टियां लग जाती है, सुबह की जो भाग दौड़ है वो थोड़ी कम हो जाती है और घर में बच्चों की हंसी खुशी गूंजने लगती है। लेकिन कभी आपने महसूस किया सखियों कि ये हंसी खुशी धीरे धीरे कहीं खो सी जाती है जब बच्चे घंटों मोबाइल या टीवी में खो जाते हैं। बस एक स्क्रीन और उसी में सिमट जाती है उनकी दुनिया। तो सखियो, आज जरा इसी विषय पर दिल से बातें करते हैं। सखियो, आज मोबाइल, टीवी और लैपटॉप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज्यादा इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। खास तौर पर अब जब गर्मी की छुट्टियां चल रही है, बच्चे खेल के मैदान की जगह मोबाइल और टीवी की दुनिया में खोते जा रहे हैं। सखियो, इस समय बहुत बड़ी चुनौती है कैसे हम अपना भी और बच्चों का भी स्क्रीन टाइम कम करें और घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लेकर आए। सबसे पहला और आसान सा उपाय ये है सखियो कि नो फोन जोन बनाइए। जी हाँ, नो फोन जोन। घर में एक जगह ऐसी तय कर लीजिए जैसे डाइनिंग टेबल, जहाँ ना हम फोन इस्तेमाल करें ना बच्चों को करने दे। साथ ही सखियो, सुबह की शुरुआत बिना स्क्रीन से कीजिए। सिर्फ हम ही नहीं, बच्चों को भी इस आदत में शामिल कीजिए। उन्हें सुबह थोड़ी देर वॉक के लिए ले जाइए, योग या फिर हल्की फुल्की एक्टिविटी की आदत डालिए। सखियो, बच्चे मोबाइल इसलिए नहीं देखते कि उन्हें मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद है, बल्कि इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें साथ चाहिए, थोड़ा सा आपका समय चाहिए। तो उनके साथ खेलिए।

रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें ही मोबाइल छोड़ना होगा। सखियो, बचपन बहुत अनमोल होता है, उसे स्क्रीन में नहीं बल्कि खेल में, हंसी में और अपनों के साथ बिताए पलों में जीने दीजिए। यकीन मानिए सखियो, उन्हें मोबाइल की याद ही नहीं आएगी। और क्यों ना इस छुट्टी के समय को हम उनके लिए खास बना दे, सुबह या शाम उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजे या कभी खुद भी उनके साथ टहलने निकल जाइए। थोड़ी सी ताजी हवा, थोड़ी सी मस्ती, ये चीजें वो खुशी देती है ना सखियो, जो कोई स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। सखियो, ये छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है, ये तो वो पल हैं जिन्हें हम अपने बच्चों के बचपन में यादों की तरह सजा सकते हैं। उनके साथ हंसिए, खेलिए, बातें कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं। तो सखियो, इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को स्क्रीन से थोड़ा दूर और अपने दिल के थोड़ा और करीब लाइए। आज सखियो कार्यक्रम में बहुत सारी बातें करनी है, पर पहले सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

जैसे हम अपने बच्चों के आज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ना सखियो, वैसे ही उनका कल भी सुरक्षित करना उतना ही जरूरी है। गीत के पहले हमने बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करने की बातें की, अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की, खासकर जब बात हो हमारी बेटियों की। तो आज बात करते हैं कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि योजना की। सखियो, ये योजना खास तौर पर हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई है, जिसमें हम छोटी छोटी बचत करके आने वाले समय में एक बड़ी राशि तैयार कर सकते हैं। सखियो, ये भारत सरकार की एक खास बचत योजना है जो खास तौर पर बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई है। इसमें माता पिता अपनी बेटी के नाम से छोटी छोटी बचत करके उसके भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। सखियो, बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक उसका खाता खुलवाया जा सकता है। साल में सिर्फ 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। इस योजना में सामान्य बचत से ज्यादा ब्याज मिलता है और जिससे पैसा जो है वो तेजी से बढ़ता है। सखियो, इसमें जमा की गई राशि पर टैक्स में छूट भी मिलती है। और तो और सखियो, 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए पैसा निकाला जा सकता है और 21 साल में खाता पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। सखियो, हम अक्सर सोचते हैं ना कि अभी क्या बचत करें, खर्चे ही इतने हैं, लेकिन सच तो ये है सखियो कि छोटी छोटी बचत ही बड़े सपनों को पूरा करती है। तो क्यों ना आज से ही एक छोटा सा कदम उठाया जाए, अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जाए। सखियो, ये सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि हमारी सोच है अपनी बेटियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की। और इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी के बाद सखियो आपको सुनवाती हूँ हमारा क्रम मेरी उड़ान।

0: श्रोताओं, घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं है, ये वो जगह है जहाँ जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत रंग भरती है और इन्हीं रंगों को सही रूप देने का काम करता है एक इंटीरियर डिजाइनर। जब एक डिजाइनर किसी खाली जगह को देखता है ना, तो उसे वो सिर्फ खाली जगह नहीं दिखती, उसे दिखती है संभावनाएं, एहसास और कहानियां। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही है एक इंटीरियर डिजाइनर दीप्ति पवार जी। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका।
1: हेलो, मैं दीप्ति सुरंशी पवार, इंटीरियर डिजाइनर।
0: दीप्ति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र से कैसे जुड़ी।
1: मुझे घर डेकोरेट करना बहुत पसंद है और डेकोरेशन के बारे में जानना, जब अपन कोई साइट विजिट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि क्लाइंट अपने को बोलता है हमारा घर डेकोरेट करो, हम कुछ अच्छा चाहते हैं, इसमें कुछ अलग चाहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, उसको नया तरीका देना, हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड होती है, उसको फुलफिल करना, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: तो बचपन से शौक था आपको इस सब चीजों का या आपने बाद में इस करियर को चुना?
1: नहीं, मुझे बचपन से शौक है, मुझे अच्छा लगता था घर डेकोर, मैं मेरा खुद का घर भी अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि नहीं ये चीज यहाँ होना चाहिए, इसको इस तरह से परफेक्टली वर्क करना चाहिए, इस चीज पे मुझे अच्छा लगता था।
0: अच्छा, आजकल बहुत सारे युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगी उन्हें?
1: इस चीज के लिए मैं इनको ये सलाह दूंगी कि इंटीरियर डिजाइनिंग करना है आपको तो आपका विजन पूरा क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी एक ब्लैंक हाउस को देखते हैं तो उसमें आपके थॉट क्लियरली क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है, यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ उसको बनाना नहीं, उसका विजन पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। आपके विजन पूरे क्लियर होंगे तो आप इस फील्ड में बहुत अचीव कर सकते हैं, विजन क्लियर नहीं होंगे तो आप उतना प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट को नहीं दे पाओगे। आपका एक एक्टिव क्रिएटिव बहुत अच्छी होना चाहिए, क्रिएटिव जितनी अच्छी होगी आप इस फील्ड में उतना अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर जिनकी क्रिएटिव बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उसको आप प्रेजेंट करते हो, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल जाइए, आप बहुत अचीव करेंगे।
0: आजकल ना दीप्ति जी, जो घर है ना वो बहुत छोटे हो गए हैं, खुले मकानों की जगह जो है अब है ना छोटे छोटे फ्लैट्स ने ले लिया है और जगह कम होती है, लेकिन हर कोई अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाना चाहता है, तो किस तरह से वो अपने घर को सजा सकते हैं?
1: एक्चुअली क्या होता है कि छोटे जो घर होते हैं उसको बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर करना, छोटी जगह को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना ही एक इंटीरियर का काम है। बड़े हाउस को इंटीरियर करना कोई बड़ी बिग डील नहीं है, उसको कि आपके पास स्पेस भी, आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, पर छोटे हाउस को कितना अच्छा आप एलिगेंट एथेटिक्स बना सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। छोटे घर में जितनी कम स्पेस में आप कितना अच्छे उसको प्रेजेंट करेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बेस्ट इंटीरियर का वर्किंग एक छोटे हाउस से प्रेजेंट होता है, जो कितना अच्छा डिजाइनर है
0: वही सबसे चुनौतीपूर्ण है, वही चैलेंजिंग होता है।
1: यस।
0: दीप्ति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल इंटीरियर डिजाइन में कौन कौन से ट्रेंड सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं?
1: आजकल युवा ये चाहते हैं कि हमारा घर थोड़ा सा एकदम होटल जैसा दिखना चाहिए, लाइट की ज्यादा डिमांड हो गई है, ज्यादा हेवी डिमांड्स नहीं आती कि ज्यादा वर्किंग दो, पूरे रूम में वर्किंग, मतलब ज्यादा प्लाई का वर्क हो या हेवी वर्क हो, सब एकदम डिसेंट वर्क करना चाहते हैं आजकल कि हाँ एकदम एंट्री हो तो एकदम डिसेंट सी वार्म फीलिंग आए हमारे घर में।
0: बहुत सी महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या संभावनाएं हैं उनके लिए?
1: संभावना इसमें बहुत है, आप बहुत अच्छे, मगर आप क्रिएटिव होना चाहिए। इस फील्ड की पहली डिमांड है कि आप क्रिएटिव होना चाहिए। आप हर इंसान की एक एक अपनी अपनी चॉइस होती है, उस सोच के अकॉर्डिंग आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन उसके हाउस में देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपका वर्किंग आपकी माउथ पब्लिसिटी से ही चलेगा,
0: मतलब संभावनाएं तो बहुत है, आपके काम में रचनात्मकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। आप काम जितना अच्छे से करके देंगे तो, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी पे ही वर्किंग चलती है बेस्ट इंटीरियर की।
0: और बजट प्रॉब्लम भी कई बार होती है, लोगों के पास कम बजट होता है लेकिन फिर भी वो अपने घर को आकर्षक दिखाना चाहते हैं।
1: यस। एक्चुअली देखो, जब अपन वर्किंग करते हैं तो सब लोग पहले अपना डिमांड ही बजट से स्टार्ट करते हैं।
0: हाँ।
1: हमारा बजट ये है, और इंटीरियर का मतलब ये नहीं है कि आप बस कुछ चीजें हेवी लगा के, महंगी से महंगी चीजें लगा के उस घर को डेकोरेट कर दी जाए। आप कितना अच्छा वेल बजट में उनको चीजें प्रेजेंट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है।
0: अगर आप में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं।
1: ये बहुत कोर्स चलते हैं ना, पहले हमारे टाइम पे तो ग्रेजुएट

0: नहीं होता था उसमें, आजकल ग्रेजुएशन भी होने लगा है। हमारे टाइम पे डिप्लोमा होता था तो आपको 4 इयर्स का पूरा ग्रेजुएशन होता है इसमें।
1: अच्छा, जब आप इतनी सारी क्रिएटिविटी करती हैं और खूबसूरत घर को तैयार करती हैं, तो लोगों की किस तरह की आपके प्रति भावना होती है? कितने खुश हो जाते होंगे वो?
0: वही ट्रस्ट है उनका हमारे पर कि हाँ, इन्होंने बेस्ट वर्क दिया है, हमारे रेगुलर बजट के अकॉर्डिंग काम दिया है इन लोगों ने, तो उन्हें अच्छा लगता है। उसी हिसाब से प्रोजेक्ट टू बे प्रोजेक्ट मिलते हैं फिर अपने को।
1: बिल्कुल, आप उन्हें उनके सपनों का घर बनाकर देती हैं। ये एक वाकई में उनके लिए बहुत खुशी का पल होता है और हर किसी के लिए बहुत, क्योंकि घर जो जगह होती है ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, जीवन भर वो उस घर में रहता है। तो वो चाहता है कि उसके घर का हर कोना बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ हो।
0: जैसे अभी आपने कहा ना कि वो उनके जीवन भर के लिए कमाई रहती है उनकी, एक्चुअली जीवन भर की कमाई वो उसमें लगाते हैं। अगर वो पूरे जीवन भर वहां रह रहे हैं तो वो अपने को ब्लेसिंग देते हैं।
1: और आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे हैं या जो युवा है अभी कोर्स कर रहे हैं?
0: कि आप जब भी वर्क करें, एक अपनी ऑनेस्टी के साथ वर्क करें, अपनी कैपेबिलिटी, अपने विचारों को फर्स्ट जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें बताएं हम ये चाहते हैं, उनके विचार आप सुनिए और दोनों के बीच के अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको वर्क करना, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे।
1: और बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी आपसे बात करके, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। तो सखियो, ये था हमारा क्रम मेरी उड़ान। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

सखियो कार्यक्रम में अब बात करते हैं हमारे क्रम रूप लावण्य की। सखियो गर्मी के मौसम जैसे ही दस्तक देता है ना, धूप और तपिश के साथ हमारी त्वचा भी थोड़ी सी रूठने लगती है, कभी टैनिंग, कभी पसीना, तो कभी मुहासों की परेशानी। तो आज के रूप लावण्य में हम बात करेंगे कि गर्मी में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें, वो भी

आसान और घरेलू तरीके से। सिक्योर, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात याद रखिए, खूबसूरती महंगे प्रोडक्ट में नहीं सही देखभाल में होती है। गर्मी में जितना हो सके पानी पीजिए। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लेकर आता है। इसके अलावा सखियो, दिन में 2 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा जरूर धोइए। बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि सखियो गर्मी में त्वचा पहले ही संवेदनशील हो जाती है। सखियो, जब भी घर से बाहर निकलें उस समय दुपट्टा, सनग्लासेस या छाता जरूर साथ में लेकर निकलें, और अगर संभव हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा टैनिंग से बची रहे। कभी कभी चेहरे पर ठंडक देना भी जरूरी होता है। आप दही और बेसन का फेस पैक लगा सकती हैं या फिर खीरे का रस चेहरे पर लगाइए। ये ना सिर्फ आपको ठंडक देगा सखियो, बल्कि त्वचा को ताजगी भी देता है। सखियो, इस मौसम में ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाने से बचे। फल, सलाद, नींबू पानी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। यही छोटी छोटी बातें असली खूबसूरती को बनाती है। सबसे जरूरी सखियो, खुद को तनाव से दूर रखिए, क्योंकि जब मन हल्का होगा ना सखियो, तो चेहरा अपने आप खिला खिला नजर आता है।

सखियो अब आपको लिए चलते हैं हमारे क्रम फूड जोन में। सखियो गर्मियों में ना कई बार ऐसा होता है कि भूख तो लगती है लेकिन कुछ भी भारी भरकम खाने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कुछ ऐसा मिले जो ठंडा भी हो, हल्का भी हो और खाने के बाद अच्छा सा फील दे। तो आज कार्यक्रम में फूड जोन में बातें करते हैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे आसान से स्नैक्स की जो झटपट बन जाए और सबको पसंद भी आए। सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की। आपने सत्तू तो जरूर खाया ही होगा सखियो। पहले के समय में हमारी दादी नानी इसे कितना महत्व देती थी, तो क्यों ना आज उसी सत्तू को थोड़ा नया अंदाज दे। एक ग्लास ठंडा पानी या दूध लीजिए, उसमें सत्तू घोल दीजिए, थोड़ा सा गुड़, नमक, जीरा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। अगर आप मीठा खाना चाहे तो गुड़ डाल लीजिए और अगर नमकीन पीना चाहे तो उसमें थोड़ा सा नमक और जीरा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। सच कहूं ना सखियो तो ये सत्तू स्मूदी इतना सुकून देती है ना कि शरीर को भी ठंडक मिलती है और मन भी खुश हो जाता है। और अगर कभी अचानक कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो ना सखियो तो खीरा तो घर में होता ही है। बस उनके गोल गोल स्लाइस काट लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा पनीर रख लीजिए और हल्का सा नमक या फिर चाट मसाला। ये इतना सिंपल लेकिन खाने में इतना टेस्टी कि बच्चे भी बिना मना किए इसे आसानी से खा लेते हैं। सखियो जब बात गर्मी की हो और फ्रूट चाट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। घर में जो भी फल हो बस उन्हें काटिए, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से नींबू की कुछ बूंद डाल दीजिए। बस एकदम ताजा, रंग बिरंगा और मन को खुश कर देने वाला स्नैक्स तैयार हो जाएगा। सखियो गर्मी में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि खाना ज्यादा भारी ना हो, सादा हो, ताजा हो और प्यार से बना हुआ हो, क्योंकि जब खाना हल्का हो ना सकियो तो तन भी खुश रहता है और मन भी।

0: जैसे कि गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है हीट स्ट्रोक का, यानी कि लू लगने का। थोड़ी सी लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ सकती है। इसके लिए सक्यू पानी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल ना होने दे। दिन भर में पानी बार बार पीती रहे, चाहे प्यास लगे या फिर ना लगे। आप चाहे तो साथ में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी भी लेती रहे। धूप में निकलने से बचे, खासतौर पर सक्यू दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचे। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो सिर को दुपट्टे या कैप से ढककर ही निकले। इन दिनों सखियो कॉटन के हल्के रंगों के कपड़े ही पहने, जिससे शरीर को ठंडक मिले। सखियो घर से निकलने से पहले कुछ हल्का जरूर खाए, जैसे फल या फिर दही। खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। शरीर को ठंडा रखने के लिए खीरा, तरबूज, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फल सब्जियां जरूर ले। दिन में 1 से 2 बार ठंडे पानी से मुंह हाथ धोते रहे। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो सखियो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दूं कि हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास

0: तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आइए आपको सुनवाते हैं इंदौर की प्रस्तुति। कलाकार हैं लवलीना जैन।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ है। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम बरसात की एक रात।

0: कस्मे वादे, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाजों में। बोल गुलशन बावरा के थे और धुन आरडी बर्मन की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि आम लोगों और बुनियादी सुविधाओं पर हमला करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और भारत यूएई के साथ पूरी तरह खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि असली कामयाबी सिर्फ ताकत या बाहुबल से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, नैतिकता और लगातार मेहनत के दम पर ही टिकाऊ और सच्ची जीत हासिल होती है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ईमानदारी से पाई गई सफलता न सिर्फ लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि मन को गहरा सुकून भी देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जो वंदे मातरम के सामूहिक गान से शुरू हुई। बैठक में बताया गया कि इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत कुल 21 देशों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत अगले 5 साल में 2,442 करोड़ रूपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
1: दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2,442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। हम लोग इसके अंदर खड़े उतरेंगे। कृषि कल्याण वर्ष में इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने बंगाल की जीत को डर, तुष्टिकरण और घुसपैठियों को शरण देने वालों के खिलाफ जनता का कड़ा जवाब बताया। असम में हैट्रिक जीत को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में किए गए कामों पर जनता की मुहर करार दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक 7.5 लाख से ज्यादा किसानों से करीब 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 6,490 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी गई है। हर खरीदी केंद्र पर तौल काटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है और तौल पर्ची बनाने का वक्त रात 10 बजे तक कर दिया गया है। प्रदेश में आज सुबह से धार, बड़वानी और झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल मौसम केंद्र ने प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी में तेज आंधी चलने की सबसे ज्यादा आशंका है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को लेकर सख्त

से दिखाते हुए 3 जनपद पंचायत सीईओ और 1 नगरपालिका सीएमओ सहित 5 अफसरों पर जुर्माना लगाया है। खंडवा जिले की जावर तहसील के ग्राम भकराड़ा में मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। आगर मालवा जिले में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां जिले में व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। शिवपुरी जिले में कल कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के उपसंचालक और मत्स्य विभाग को किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। मंडला जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के तहत किसानों को खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबलपुर में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ। कटनी से जबलपुर आ रही यात्री बस गोसलपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 50 से अधिक यात्री घायल हो गए और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने

0: आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। AIADMK के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। UDF सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता VD सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व KPCC अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के CR पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है।
4: प्रख्यात भारतीय अमरीकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
6: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
4: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
7: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
4: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
8: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलिट्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
4: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और

छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है, तेज गर्मी तपिश से हर मन परेशान है। ऐसे वक्त में मुट्ठी भर छांव सुरों के लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। खास बात ये कि इन सुरों में फरमाइश आपकी है, पसंद आपकी शामिल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तपता हुआ सा दिन है, कुछ सुकून इन सुरों का इसमें घुलेगा और आप एक मुस्कुराहट के साथ इस तपिश भरे दिन को गुजार पाएंगे। तो चलिए गीत संगीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उन श्रोताओं के नाम बताते हैं जिनकी फरमाइश पर आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा। ये चिट्ठी आई है राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से। लिखने वाले श्रोता हैं एमएम राजावत, मधु राजावत, राशि, चितरंजन, सरोज, आरती, रेखा, ऋषिका, रिचा, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये खत आया हुआ है ग्राम आभा खोडरा पोस्ट रेंगाखार कबीरधाम से। लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्षप्रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। और धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी और शारदा ने इसे गाया है। गुलजार का लिखा हुआ गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। अनुरोध आप सबका है, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता अमृता जोशी और लोकेश जोशी, भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, रॉबिन, मोनिका नूपुर और ऋषिका, और ये खत आया हुआ है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता और नेत्राम, साथ में हैं भूपेंद्र साहू। तो आप सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का ये गीत। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता।

जब भी ये दिल उदास होता है, सीमा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है एक दिल सौ अफसाने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और प्रगति, साथ में है मिथिल। और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी इसी गीत को पसंद करते हैं। ये खत आया हुआ है ग्राम सौगा, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। अगली चिट्ठी है योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय की ओर से। ये हमारे श्रोता सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से हैं, इसी गीत को पसंद करते हैं। ग्राम पोस्ट बाया, तहसील रोहटी, जिला सीहोर से अमर सिंह, कोशाबाई, लक्ष्मीबाई, महेंद्र, सचिन, तरु और इनके परिवार के सभी सदस्य। तिलदा छत्तीसगढ़ से ये खत आया हुआ है प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम कुमार और सोमिन कुमार चंद्र की ओर से। और अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, आप सबकी भी यही पसंद है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। वही लिखने पढ़ने का शौक था, वही लिखने पढ़ने का शौक है, तेरा नाम लिखना किताब में, तेरा नाम पढ़ना किताब में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्णिमा फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल गुलजार के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की है। पसंद आप सबकी है। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। मेरे पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ, तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं कि बिछड़ने का कोई डर न हो।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आरती फिल्म से हमने लिया है। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत है, रोशन का संगीत है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। सुनना चाहते हैं डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि असली कामयाबी सिर्फ ताकत या बाहुबल से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, नैतिकता और लगातार मेहनत के दम पर ही टिकाऊ और सच्ची जीत हासिल होती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जो वंदे मातरम के सामूहिक गान से शुरू हुई। बैठक में बताया गया कि इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल

0: और पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने बंगाल की जीत को डर, तुष्टिकरण और घुसपैठियों को शरण देने वालों के खिलाफ जनता का कड़ा जवाब बताया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक 7.5 लाख से ज्यादा किसानों से करीब 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 6,490 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और प्रदेश में आज सुबह से धार, बड़वानी, झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल मौसम केंद्र ने प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:15 पर और रात 10:00। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। रात 9:30 पर होगा उर्दू प्रोग्राम कहकशां। इसमें आज सुनिएगा आबशारे गजल और आकाशवाणी के 90 वर्ष पर केंद्रित कार्यक्रम इल्म मामूलात और तफरीह का मजमुआ आकाशवाणी। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 आप सुनेंगे पंडित तरुण भट्टाचार्य जी का संतूर वादन राग अभोगी। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTS के ऑडियो चैनल वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी इंदौर है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

भी दिया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर ही बेहतर जीवन जी पाते हैं। और श्रोताओं, सच कहूँ तो आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जीवन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बातचीत, दोस्ती और समाज से जुड़ाव। सोचिए दोस्तों, अगर हम एक दूसरे से बात ही ना करें तो क्या हम अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी खुशी या दुख किसी के साथ बांट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि ये समझने और समझाने का एक माध्यम है, नहीं? हम जब किसी से खुलकर बात करते हैं तो गलतफहमियां दूर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और दिल हल्का सा महसूस होता है। और श्रोताओं, आज के इस डिजिटल दौर में हम चैट और सोशल मीडिया से जुड़े तो हैं लेकिन असली जुड़ाव आमने सामने की बातचीत में ही होता है। दोस्त सिर्फ हाथ साथ हंसने के लिए नहीं होते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में सहारा देने के लिए होते हैं। वो आपकी बात बिना जज किए सुनते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन लोगों के अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं ना, वो मानसिक रूप से और भी ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। कितनी अच्छी बात है जीवन में सिर्फ दोस्तों का होना। और समाज हमें पहचान देता है, सुरक्षा देता है, सीखने का मौका देता है। हम समाज से कई नई चीजें सीखते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, अपना अकेलापन धीरे धीरे दूर करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय लोगों के बीच रहे, थोड़ा सा मी टाइम भी ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन पूरी तरह अलग अलग रहना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं, हमारा अकेलापन जब दूर होता है तो मानसिक रूप से हम कमज़ोर नहीं मजबूत बनते हैं। हमारा सामाजिक जुड़ाव हमें मजबूत बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। हम नए लोगों से मिलते हैं, उनके तौर तरीके अपनाते हैं, उनकी आदतें, अच्छी आदतें हमारे अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बातचीत रिश्तों को जन्म देती है, दोस्ती उन्हें मजबूत बनाती है और समाज हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। मेरे ख्याल से शायद मैं सच कह रही हूँ और आप भी मेरी बात से वाकिफ होंगे, इसलिए आज ही किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लीजिए, परिवार के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताइए और अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और हम कार्यक्रम में और भी खूब सारी बातें करेंगे, कई नई नई जानकारी दूंगी मैं आपको, लेकिन उसके पहले मैं सुनाती हूँ आपको ये गीत।

तो श्रोताओं, आज हम बात करते दो ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य दिवसों की जो कहीं ना कहीं लोगों से रिलेटेड है और बहुत ही ज़रूरी है उन पर बातचीत होना। तो पहले हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और उससे जुड़े वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले दिवस विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। दोस्तों, इस दिन का लक्ष्य है लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और बीमारियों की रोकथाम के प्रति सचेत करना। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाने वाला विश्व अस्थमा दिवस सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन है। श्रोताओं, WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 26 से 30 करोड़ लोग अस्थमा से प्रभावित है। हर साल लगभग 4 से 5 लाख मौतें अस्थमा के कारण होती है। भारत में भी लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। अस्थमा में व्यक्ति के फेफड़ों की नलियां सूज जाती है और सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसके कारण क्या होते हैं? वायु प्रदूषण, धूल और एलर्जी, धूम्रपान, मौसम में बदलाव या फिर अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। और इसका बचाव और नियंत्रण के लिए कई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जैसे कि आप नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें, इन्हेलर और दवाओं का सही उपयोग करें, घर और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ये बहुत प्रमुख नियंत्रण का उपाय है दोस्तों। प्रदूषण और धूल से बचाव करें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि अस्थमा पूरी तरह ठीक ना सही लेकिन सही

ही देखभाल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति सामान्य जीवन भी जी सकता है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक और दिन मनाया जाता है, यानी कि 5 मई को, जो है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। हर साल 5 मई को मनाया जाने वाला विश्व हाथ स्वच्छता दिवस WHO द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। WHO के अनुसार सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण का खतरा 40% तक कम हो सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ गंदे हाथों के कारण फैलने वाली बीमारियों से ग्रसित होते हैं। बच्चों में डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण हाथों की अस्वच्छता है दोस्तों। और हाथ साफ रखना या हाथ धोते रहना क्यों जरूरी है? तो ये बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, संक्रमण को फैलने से रोकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी ये जीवन बचाने के लिए एक अहम तरीका है श्रोताओं। और सही तरीका हाथ धोने का तो ये है कि कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से हाथ धोते रहना चाहिए। उंगलियों के बीच नाखूनों और कलाई को भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए। खाने से पहले, शौचालय के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, कोविड के बाद हम लोग हाथ धोना कितना जरूरी और प्रभावशाली है, ये तो हम जान ही चुके होंगे। तो दोस्तों, इसी के लिए आप अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें, प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें और सबसे महत्वपूर्ण, हाथ धोने जैसी छोटी आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी आज के स्पेशल सेगमेंट के बारे में, जो है हमारा शहर। तो चलिए आज हम चलते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे शहर की ओर जो भले ही बहुत बड़ा महानगर न हो, लेकिन अपनी ऐतिहासिक गहराई, सांस्कृतिक पहचान और शांत जीवन शैली के कारण बेहद खास है। गुना। गुना मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्व हिस्से में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से ये मालवा क्षेत्र का हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र पर प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई शासकों का शासन रहा है, जिनमें राजपूत, मराठा और बाद में सिंधिया राजवंश प्रमुख रहे। सिंधिया शासन के दौरान इस क्षेत्र के प्रशासनिक और सैन्य महत्व काफी बढ़ा है दोस्तों। साथ ही ब्रिटिश काल में भी गुना एक अहम केंद्र बन गया था, खासकर रेलवे और प्रशासन के लिहाज से। श्रोताओं, आज भी गुना रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण रेल मार्गों में गिना जाता है, जो इसे भोपाल, ग्वालियर और कोटा जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। जानते हैं श्रोताओं, गुना का नाम गुण इस शब्द से निकला हुआ माना जाता है, जो इस शहर की विशेषताओं को कहीं ना कहीं दर्शाता है। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि का अपना बहुत महत्व है। मौसम की बात करें तो गुना शहर का मौसम सामान्यतः थोड़ा सा गर्म होता है। मार्च और जून तक में गर्मी का मौसम चलता है, जहां पारा 40 डिग्री के ऊपर तो जाता ही जाता है। बरसात में मध्यम वर्षा होती है और हरियाली भरा मौसम हो जाता है। साथ ही सर्दी सुहावनी होती है और तापमान कई बार 8 से 10 डिग्री तक गिर जाता है। और यहाँ का मौसम यहाँ की जीवन शैली और खान पान को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, गुना के बारे में और भी दिलचस्प जानकारी आपको दूंगी इस गीत के बाद।

दोस्तों अब बात करते हैं गुना की शिक्षा, भाषा और घूमने फिरने की जगहों की। तो गुना धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ सरकारी स्कूलों के साथ साथ कई निजी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान हैं। साथ ही यहाँ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। आसपास के कस्बों जैसे राघोगढ़ से भी यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। तकनीकी और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए ये एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। अब बात करें भाषा की तो श्रोताओं, गुना में मुख्य रूप से तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की स्थानीय बोली में मालवी और बुंदेली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों की भाषा सरल है, मीठी है और अपनापन लिए है। और अब घूमने की जगहों की बात करें तो गुना और उसके आसपास कई दर्शनीय स्थल है, जैसे बजरंगगढ़ का किला। ये किला ऐतिहासिक किला है जहाँ से प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हनुमान टेकरी है, धार्मिक स्थल है और शहर का शानदार व्यू पॉइंट है। जय स्तंभ ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसके अलावा आसपास के छोटे मंदिर, तालाब और ग्रामीण क्षेत्र भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव के लिए बेहद खास है। साथ ही त्योहारों की बात करें तो गुना में सभी प्रमुख त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, गणेश उत्सव और यहाँ के स्थानीय मेलों का भी बेहद महत्व है। दोस्तों यहाँ के जो छोटे छोटे स्थानीय मेले होते हैं वो भी बहुत रोचक लगते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। और यहाँ की संस्कृति में सादगी है और पारंपरिकता

दोस्तों, गुना के खाने की अगर बात करें तो वह पूरी तरह मध्य प्रदेशी स्वाद के लिए होता है। सुबह की शुरुआत होती है लोकप्रिय नाश्ते पोहा और जलेबी के साथ। दोपहर का खाना कहीं ना कहीं उसमें आप दाल बाफले शामिल कर सकते हो, बिल्कुल राजस्थान का स्वाद लिए हुए। साथ ही यहाँ का कढ़ी चावल, भुट्टे का कीस भी बेहद प्रसिद्ध है। और मीठे में अगर बात करें तो सर्दियों में गजक और रेवड़ी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का खाना साधारण है लेकिन स्वादिष्ट और पौष्टिक है। वहीं दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो गुना की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, यानी कि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। गेहूं, सोयाबीन और चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ के कृषि बाजार यानी कि मंडियाँ काफी सक्रिय है, जो आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही अन्य खास बात मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों, गुना में भारतीय वायुसेना स्टेशन है, जो इसे सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाता है। हवाई निगरानी के लिए ये स्टेशन बेहद उपयोगी है। साथ ही यहाँ पर हवाई वायुसेना वालों को ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दिलवाई जाती है। पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ के लिए एक सपोर्ट बेस की तरह काम करता है। गुना एयरफोर्स स्टेशन में एक एयर स्ट्रिप है दोस्तों, जहाँ छोटे और मध्यम आकार के विमान संचालन कर सकते हैं। ये इस क्षेत्र में एक स्टेशन होना, वो भी हवाई वायु सेना का स्टेशन होना, वाकई में गुना के लिए गौरव की बात है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में ये रोजगार और विकास में भी योगदान देता है। और वहीं दोस्तों, अगर इस शहर की जीवन शैली की बात करें तो बड़ी ही शांत, कम भीड़ भाड़ और साफ सुथरे वातावरण वाली है। यहाँ का जीवन संतुलित है, ना बहुत तेज और ना बहुत धीमा। तो दोस्तों, गुना एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास की गहराई, शिक्षा की प्रगति, संस्कृति की सादगी और जीवन की शांति, ये सब का मिश्रण है। अगर आप एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जो जहाँ छोटे शहर की बड़ी बातें हैं, तो सच में एक बार गुना जरूर घुमाइएगा।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये स्पेशल सेगमेंट हमारा शहर आपको पसंद आता होगा। और आए भी क्यों ना, हम हर हफ्ते आपके लिए नए नए शहर लेकर आते हैं जिनके ऊपर बहुत कॉमनली बात नहीं की जाती है, लेकिन वो शहर अपने आप में खूबसूरती समाए रखते हैं, अपने आप में बहुत ही प्रसिद्धि पाए रखते हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रगति में हाथ भी बटा रहे होते हैं। और दोस्तों, सच कहूँ तो जब भी हम घूमने की बात करते हैं या घूमने की बात आती है, तो अक्सर हमारे ख्याल में बड़े शहर, पहाड़ों वाली जगह, बर्फ़ वाली जगह या कहूँ तो भीड़ भाड़ वाली जगहों के ही ख्याल आते हैं। पर असली सुकून तो कहीं ना कहीं भारत के इन छोटे शहरों में होता है। इन छोटे शहरों को एक्सप्लोर करना एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कहीं घूमने का प्लान करें तो कोशिश करें कि नए शहर, छोटे शहर, प्यारे से सुंदर शहर एक्सप्लोर करें जहाँ की सुबह शांत होती है और चाय की खुशबू वहाँ की हवा में तैरती रहती है। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे गए पूछे सवालों का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। तो हमारा आज का पहला सवाल था कि भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। वहीं हमारा आज का दूसरा सवाल था कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है, जिसका उत्तर है आनंदीबाई गोपाल जोशी। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब मैं अपर्णा आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। फिल्म संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए तीसरी मंजिल। इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, साथी कलाकार मोहम्मद रफ़ी। इसे लिखा है मजरूह ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।
1: रोकी साहब ने आपके नाम चिट्ठी भेजी।
2: लेट्स सी, एक्सक्यूज मी। देखा आपने, ये दुनिया वाले उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ते हैं।
3: क्या हुआ?
2: यहाँ के ड्रम प्लेयर है ना रॉकी
3: जी, जी
2: पीछे पड़े हुए थे, गाना दीजिए लिख कर दे दिया। अब चिट्ठी भेजते हैं कि आज मेरी आवाज खराब है, मैं ड्रम बजा रहा हूँ, आप गाना गा दीजिए, मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ।
1: जी नहीं सरकार।
2: तुम्हारे रॉकी साहब जानते नहीं मैं कौन हूँ?
1: सर भगवान दास करोड़पति के बेटे को कौन नहीं जानता हुजूर।
2: मेरी सोशल पोजीशन की कोई खबर नहीं होनी?
1: क्यों नहीं हुजूर, आपकी इज्जत तो बच्चे बच्चे करते हैं।
2: और वो चाहते हैं कि मैं इस होटल में गाना गाकर उस इज्जत को खाके मिला दूं? बिल्कुल नहीं, बोल दो उन्हें मैं गाना नहीं गाऊंगा, जाओ चलो चलो चलो।
3: थैंक गॉड बाल बाल बच गया मीना। अगर ये हसरत गाने को तैयार हो जाते तो अपनी शाम का सत्यानाश हो जाता।
4: क्या फरमाया आपने?
3: जरा सोचो, सुनने को आए हैं रॉकी का गाना और सुनना पड़े किसी बेसुरे बोंगे का गाना।

यादों की बारात, ये है फिल्म का नाम। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी की। इसे लिखा है मजरूह ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार,
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है, उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है। पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
2: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। NCERT उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है, इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहूं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
2: तो श्रोताओं, लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं, आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
2: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
2: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
2: जी,
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
2: वो क्या?
1: वो ये कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
2: जी,
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
2: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
2: जी अजी जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
1: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
2: जी
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
2: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका

0: का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा
0: जी।
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
3: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहम दिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? हुँ? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
4: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
3: पता है क्यों?
4: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
4: अरे
3: ये तो खेल है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
4: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
4: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
5: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
1: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
5: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
0: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
1: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
5: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
0: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
1: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
0: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती, और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
1: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
5: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

ये आकाशवाणी इंदौर है। सुगम संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए हरिहरन की आवाज में ये रचना।

जगजीत सिंह की आवाज में गाई इस रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी इंदौर है। सुगम संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए सीमा मिश्रा और मुकेश बागड़ा की आवाज में ये लोक रचना।

0: सीमा मिश्रा और मुकेश बागड़ा की आवाज में गाई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। 7 बजे चाहते हैं समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
2: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग इसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकते हैं रात 10 बजे से। उर्दू

ये कार्यक्रम रात 8 बजे से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे। आपसे कुछ ही देर में यास की गाई गजलें सुनिएगा, शाम 6:30 बजे और सुबह 9:15 बजे। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुंदरलाल मालवीय और साथियों की गाई लोक रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:45 पर और सुबह 9 बजे। हर रोज की तरह युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय है शाम 5 बजे का। सुबह 7:20 पर आपका पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगे कार्यक्रम प्रमुख राजेश। सुबह 6:35 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें। कल इसमें सुनिएगा गर्मी के मौसम में खेती में पानी का प्रबंधन कैसे करें। ये थे श्रोताओं कल के मुख्य कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूएई के फुजैरा पर ईरानी ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा, कहा निर्दोष लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, दलहन मिशन को 2,442 करोड़, सड़क और आवास के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा मंजूर। और कुछ ही देर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के फुजैरा पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है और भारत यूएई के साथ पूरी तरह खड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। वहीं भाजपा का कहना है कि चाहे ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल इस महीने की 7 तारीख को समाप्त हो रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया,
1: व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना, निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजना है उनको, व्यापारियों को या हमारे छोटे उद्योगपतियों को समझाना और जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना कि व्यापारी को कम से कम शासन

0: की बाधाओं से निपटना पड़े उसके लिए नीतिगत सुझाव भी यह बोर्ड देगा।
1: इसके अलावा अगले पांच साल यानी 2026 से 2031 तक दलहनी फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को 2442 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने सड़क निर्माण, आवास अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सड़क सुरक्षा सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 32,405 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और आईटी संबंधी योजनाओं के लिए 1295 करोड़, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के संचालन के लिए करीब 2412 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के दताना एक उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं का हाल जाना। डॉ. यादव ने बताया कि गेहूं के साथ साथ चना और मसूर की खरीदी भी हो रही है और किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। डॉ. यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा
2: कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लॉट की तारीख बढ़ाई थी बल्कि गेहूं उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ, हमारी भावना भी है, नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधाएं भी बढ़वाई गई, किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
1: वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गेहूं 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए किसानों को अब तक 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में 9 से 13 जून तक 21 देशों के कृषि मंत्रियों का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों के मंत्री, कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्धारक हिस्सा लेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मई है। विद्यार्थी eprovesh.highereducation.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब बात प्रदेश के मदरसा बोर्ड की। मदरसा बोर्ड ने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिन्हें छात्र स्वयं अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भर सकते हैं। सीधे आवेदन करने वाले छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापन कराकर निर्धारित तिथि में बोर्ड को भेजना होगा। शैक्षणिक कैलेंडर और शुल्क संचालन की पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेरिस में यूरोप के प्रतिष्ठित मेले फोयर डे पेरिस में प्रदेश की पारंपरिक बाघ प्रिंट कला चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां नेशनल अवार्डी शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ठप्पों से बाघ प्रिंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। प्रदेश में ही मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह से ही धार, बड़वानी, झाबुआ, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। भोपाल मौसम केंद्र ने 8 मई तक प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत की पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीमें 15 से 20 मई के बीच भोपाल के उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीमों के खिलाफ 4-4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। इस महीने के आखिर में जापान के काका मेगाहारा में अंडर 18 एशिया कप 2026 होना है, जिसमें एशिया की शीर्ष जूनियर टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए सीनियर हॉकी तक पहुंचने का अहम मंच माना जाता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के ग्राम कुडवासा में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने दिव्यांग हितग्राही रामचंद्र मैडा को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकल प्रदान की। शिवपुरी में आज कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। देवास में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कलेक्टर ने अमलतास अस्पताल में किलकारी अभियान 2.0 की शुरूआत की। नीमच जिले ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। धार जिले में गर्मी के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7:30 बजे से दिन के 11:30 बजे तक कर दिया गया है। खंडवा में रेडक्रॉस सप्ताह के तहत टीबी मुक्त

भारत अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित की गई। आगरमालवा में कलेक्टर ने एक गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 828 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। पन्ना में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाड़ली उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में अव्वल रहने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्वालियर में कलेक्टर ने शहर में चल रहे जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औचक निरीक्षण किया। श्योपुर जिले में 33 सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। अब तक 44,776 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सबे किसान भाई बहन नख आपके बहन तुलसा के राम राम। भाई बहन होनी खेती बाड़ी को काम तो कसो चली रहो, आपने रबी की फसल को भंडारण तो करी दी होएगा न जी। किसान भाई नका पास पानी की व्यवस्था छे, उन अपना खेत में सब्जी भाजी लगाई दी होएगा। साथ ही हमारा कुछ किसान भाई ने तो खरीफ की तैयारी भी शुरू करी दी होएगा, बीज बीजे तैयारी करी लिया होएगा न। साथ भाई बहन देख ही रहे हम कि आजकल खेती किसानी में भी नई नई तकनीक आई गई न, नया आधुनिक कृषि यंत्र आई गया जेका सी हमारो काम भी जल्दी हुई जाए न, हमारा समय की भी बचत हो। आज का समय में खेती में AI जेका हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवान ओको महत्व भी तेजी से बढ़ी रहे, जेका हम स्मार्ट फार्मिंग भी कवान। इन्हीं तकनीक किसान भाई नख डेटा आधारित फैसला लेना में मदद करत, जेका सी फसल की उपज की पैदावार भी बढ़त न, जो हमारी फसल हमारा खेत में लगे छे उकी लागत भी हमका कम लगत। भाई बहन AI में आसी संवेदी चीज न रहना जेका सी हम मिट्टी की नमी उको पोषण स्तर न फसल का स्वास्थ्य को विश्लेषण करी सकाए, यानी एका द्वारा हमको पता चली जाए कि हमारा खेत की मिट्टी में नमी कितनी छे कि ना पोषक तत्व न की कमी छे, ये सब जानकारी हमको AI का माध्यम से पतो चली जाए। एक अलावा मोबाइल ऐप से फसल की फोटो खींची न AI हमको तुरंत बीमारी न कीट न को पतो हम लगाई सकान कि हमारी फसल पर कहाँ की बीमारी न लगी छे, कहाँ का कीट लगे छे, एक ही जानकारी भी हमका तुरंत लगी जाए। किसान भाई नोनी AI से हमका ये भी पतो चली जाए कि खेत का किना हिस्सा में कितनी सिंचाई करनू या फिर कितना हिस्सा में उर्वरक या कीटनाशक न की जरूरत छे जो कि हमका नुकसान से भी बचावज। AI से मौसम को पैटर्न को विश्लेषण करी न हम बुआई सिंचाई न कटाई को सही तरीके से न सही समय पर पतो लगाई सकान। AI सक्षम ड्रोन फसल न पर कीटनाशक न को छिड़काव न फसल की निगरानी भी हम करी सकान। भाई बहन बिना ड्राइवर को चलने वालों ट्रैक्टर खेती में आसान बनावज। AI से फसल न की सही देखभाल होने से उत्पादन में भी वृद्धि हुई, साथ ही कम संसाधन न का उपयोग से खेती की लागत घटी जाए न किस

किसान भाई ना का मुनाफो ज्यादा हो। AIC बदलती जलवायु का अनुसार फसल चयन का प्रबंधन में मदद करत, जो कि खाद्य सुरक्षा का लेना भी जरूरी छे। भाई हमारो कहने को मतलब ई कि AI भारतीय कृषि में एक क्रांति लाई रहे, जिका से किसान भाई पारंपरिक खेती से हटी न स्मार्ट न ज़्यादा लाभदायक खेती की ओर बढ़ी रहा है। तो भाई होन AI से फसल की पैदावार भी अच्छी हो, संसाधन न को अनुकूलित प्रबंधन हो, साथ ही पौधा न की बीमारी न कीट न को पतो भी हमका जल्दी लगी जाए, जेका सी समय रही तो हम उकी रोकथाम भी करी लेवा न हम नुकसान से भी बची सकान। भाई अपना कार्यक्रम में आवा सुना जापन एक मामेरो गीत, जेका गावे अपनी बहन प्रीति देवले न उनकी मंडली ना।

0: भैरों ने अभी हम न प्रीति देवलेन उनकी मंडली को गए ली लोकगीत सुनियो न भैरों अभी हमारा खेत में जायद की फसल लगेल छे न एक कुछ समय के बाद हम खरीफ की फसल सोयाबीन लगाने जावांगा। तो सोयाबीन में हम किस प्रकार से पोषण प्रबंधन करा, किस प्रकार से खाद डाला, इना बारा में ज़्यादा जानकारी का लेना अपन सुना जी वार्ता। वार्ता को विषय छे सोयाबीन में पोषण प्रबंधन हेतु जैव उर्वरक या कंसोर्सिया का प्रयोग। इना विषय पर हमका जानकारी दे रहा है डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुना जपनी वार्ता।
1: नमस्कार, राम राम किसान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। और आज हम बात करेंगे माइक्रोबियल कंसोर्टिया द्वारा सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाना, उर्वरक में बचत और मिट्टी की सेहत को सुधारना। और ये एक ऐसी सस्ती और प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जो कि आपके सोयाबीन की फसल की पैदावार तो बढ़ाएगी, साथ ही रासायनिक उर्वरकों भी कम करेगी और खर्चा भी कम करेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होगी। इस तकनीक का नाम है माइक्रोबियल कंसोर्टिया। और ये है क्या? ये माइक्रोबियल कंसोर्टिया कई प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण है जो मिलकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसमें शामिल हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, जिसको हम आम में बोलते हैं राइजोबियम कल्चर। दूसरा, इसमें फॉस्फेट घुलनशील बनाने वाले जीवाणु, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं। तीसरा, जिंक घुलनशील बनाने वाले जीवाणु। और चौथा है साइड्रोफोर बनाने वाले जीवाणु, जो लोह की, जिसको आयरन बोलते हैं, उसकी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनको उपयोग करने से सोयाबीन में अनेक लाभ हैं। हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे यूरिया की आवश्यकता कम हो जाती है। मिट्टी में उपलब्ध फॉस्फोरस की घुलनशील बनाकर पौधों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर कर जड़ों की वृद्धि, गांठ जिसको नोड्यूल बोलते हैं, बनाने की क्षमता बढ़ाते हैं। पौधे को मजबूत बनाने में और उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता और जैविक सक्रियता में सुधार होता है, तो होता है ये लाभकारी हैं। इन माइक्रोबियल कंसोर्टिया का उपयोग बीज उपचार के उपयोग में किया जा सकता है और किया जाता है, जो कि बुआई से लगभग आधा घंटे से पहले करना चाहिए। पाउडर के रूप में, अगर कल्चर आपके पास कंसोर्टिया पाउडर है तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको यूज करें। और अगर तरल रूप में है, लिक्विड जिसको बोलते हैं लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, उसमें 80 ml प्रति 30 किलोग्राम बीज, जो कि एक एकड़ की सीड रेट है, उसके से उसका उपयोग करें। ध्यान रखें कि पहले बीज को अनुशंसित कीटनाशक और फफूंदनाशक से उपचारित करें, उसके बाद ही इस माइक्रोबियल कंसोर्टिया का उपयोग करें। इसकी लागत काफ़ी कम है। एक पैकेट की कीमत 50 रुपये प्रति पैकेट है, जो कि एक एकड़ के लिए काफ़ी है। और बीज उपचार करते समय कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, बीज उपचार हमेशा छाया में करें और धूप में नहीं करें। माइक्रोबियल कंसोर्टिया का उपयोग रासायनिक उपचार के बाद ही करें, जैसे मैंने बताया फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बाद ही करें। हाथों में दस्ताने जरूर पहने, बीज को छाया में हल्का सुखाएं और उपचार के 30 मिनट और आधा घंटे के भीतर भीतर इसकी बुआई करें। अंत में मैं किसान भाइयों और बहनों, माइक्रोबियल कंसोर्टिया एक सरल, सस्ता और टिकाऊ उपाय है। यह आपकी सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उर्वरकों की लागत को बिल्कुल कम करेगा। आपकी मिट्टी को लंबे समय से

0: समय तक उपजाऊ बनाने में सहायक होगा। अतः आप इसी खरीफ सीजन में हमारे संस्थान में पहले आकर इसको बुक करें और इसको जरूर अपनाएं, अपने खेत में इसका लाभ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाइनोनी, अभी हम सुनी रहा था वार्ता सोयाबीन में पोषण प्रबंधन हेतु जैव उर्वरक या कंसोर्सिया को प्रयोग। जानकारी दे रहा था डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। न अपना कार्यक्रम में आवा सुना एक लोकगीत बहन मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री ने उनकी मंडली को गाया।

0: किसान भाइयों ने अभी हम न मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गाए ली लोकगीत सुनियो न भाइयों अभी जो मौसम चली रो जायद को एकामा हमारा खेत में सब्जी भाजी लगेल छे फल लगेल छे तो कामा अभी काई काम चली रो तो एका बारा में ज़्यादा जानकारी का लेना सुना जा अपन एक वार्ता वार्ता को विषय छे जायद फसल में सब्जी न फल की खेती जानकारी दे रही डॉक्टर अनुराधा शर्मा तो सुना जा अपन इनी वार्ता
1: सभी किसान भाई बहन का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने गर्मी का महीना किसान न कलेण बहुत काम का समय रज इना समय रबी की फसल की कटाई हुई जाज न खेत किसान भाई बहन का खाली रज बहुत सारा किसान भाई ऐसा छे जी की अगली फसल को रस्तो देखी राज की दो या तीन महीना बाद बारिश आवागन जमो फसल लगावगा पर जी समझदार किसान भाई छे उनने यदि पानी को सोय करी राखियो तो वो इना समय छोटी अवधि की कहीं सब्जी न की फसल लगाना भी अच्छो पैसो कमाई सकज। इस जायद को मौसम जी छे एकामा फसल न अच्छी न जल्दी तैयार हुई जाज न बाजार में इनकी मांग भी बहुत ज्यादा रज एकाले न किसान कम समय में अपनी आमदनी ज्यादा बढ़ी लेज बस सही फसल को चयन न उको उचित प्रबंधन करनू न कम से कम 45 से 90 दिन का बीज अच्छी उपज उनका मिली जाए पर कम जब फसल को चयन अच्छो होगो न उको प्रबंधन अच्छो हो गर्मी का इना महीना न तापमान बहुत अधिक रज एकाले न असी फसल न को चयन बहुत आवश्यक छे जी गर्मी का सहन करी लेगा न जल्दी पकी न तैयार हुई जाएगा तो इना समय सब्जी न फल बाजार में बहुत ज्यादा देख रहा है उनकी मांग भी बहुत ज्यादा छे तो यदि किसान भाई बहन उनका लगाई दे तो उनका अच्छो मुनाफो मिली जाए पर जायद की फसल का लेना सबसे महत्वपूर्ण बात जी छे कि सफल खेती का लेना सिंचाई की उचित व्यवस्था होना बहुत आवश्यक छे। अपना यहाँ कहे कि जल ही जीवन है तो ग्रीष्म काल में तो जल की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण हुई जाए उसकी सुरक्षा भी आवश्यक हुई जाए नो को उपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ी जाए असो अपन देखी रहा है कि जितनी जल की अपन का आवश्यकता छे पर ओकासी उपलब्धता कम छे फिर भी पिछला कुछ समय सी वर्षा जल जी छे वो अलग अलग जगह पर सिंचित हुई रो जगह अलग अलग जगह पर इकट्ठा करी रहा तो ऐसी स्थिति में हमारा क्षेत्र की सिंचाई क्षमता जी छे वो बढ़ी गई एका लेना हमारे यहाँ का किसान भाई खरीफ की फसल का साथ रबी की फसल भी लेना लगी गाज न अवा जब उनका पास जल की उपलब्धता छे तो वो जायद की फसल भी लई राज एको मतलब छे कि वो साल में तीन तीन फसल न लई राज न पालन पोषण करी न पर्याप्त जल ओखा दई पाई राज जायद की फसल में अपन देखी रहा है कि हमारा किसान भाई जितनी सिंचाई दई राज उका मसी लगभग 25% जल वाष्पीकरण का माध्यम से उड़ी जाए तो वो हमारा जल को नुकसान छे उचित तरीका से की गई सिंचाई तकनीक न को उपयोग यदि हमारा किसान भाई करज तो अपन ये समझी सकें कि वो वर्षा जल गया अपन जल की स्थिति के कवा की सिंचाई जल की उपयोगिता का लगभग 65% तक बढ़ाई सकज तो यदि किसान भाई जायद की फसल न फव्वारा पद्धति से सिंचाई करज या ड्रिप पद्धति अपनावज तो उनका वाष्पीकरण की समस्या उनकी कम हुई जाए हमारा किसान भाई बहन इन्हीं बात का अच्छा तरीका से समझी राज कि सामान्य परिस्थिति में वर्षाकालीन फसल या जो ठंड के मौसम की फसल छे उका हिसाब से जायद की फसल में उत्पादन 2 से 3 गुना तक अधिक मिली जाए उनका क्योंकि इना मौसम में वातावरण को प्रभाव सूर्य प्रकाश को प्रभाव ज्यादा रज एक कारण कीट न रोग न की क्रियाशीलता ज्यादा नहीं बढ़ी पाती है उनको असर फसल न पर ज्यादा नहीं देखा तो है इना सब कारण न सी अवा अपन देखी रहा है कि वर्तमान समय में जायद को रगबो अवा बढ़ी रोज खाली एक चीज की आवश्यकता छे कि सिंचाई जल को पर्याप्त प्रबंधन हो न समुचित उपयोग हो न गर्मी का मौसम में हरियाली देखी न मन भी बड़ो खुश हुई जाए गर्मी की फसल न यदि अपन सब्जी की बात करा तो सब्जी में कद्दू वर्गीय फसल न मुख्य रूप से छे न एका साथ साथ नदी किनारा की रेत में लगाने वाली फसल छे वो भी इना समय बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन दे देज न उका में जल को अपव्यय भी बिल्कुल नहीं होता है असी एक फसल छे सब्जी की लौकी की खेती की जेका में की कम लागत न ज्यादा उत्पादन मिली जाए लौकी भी एक बेल वाली फसल छे जेका में की कम खर्च में अच्छी पैदावार मिली जाए अप्रैल में या मई का महीना में जिन न बोई दीज उनका लगभग 50 से 60 दिन में फल भी आने लगी जाएगा न बाजार में उनकी कीमत भी अच्छी मिली जाएगा लौकी का लेना तो किसान भाई मेड़ पर भी कभी कभी एखा लगाई देज बेल चढ़ाई दी न थोड़ा सो जाल को सहारो दे दियो तो अच्छी उत्पादन उका मसी मिलने लगी जाए 5 से 6 दिन का अंतराल पर उका में सिंचाई करनू पड़ज पर 50-60 दिन का बाद जी फल लगनू मिल शुरू होज तो ओको लगातार उत्पादन मिलतो चली जाए जायद की फसल नमा भिंडी भी एक तेजी से तैयार होने वाली सब्जी छे एक ही बुआई भी हमारा बहुत सारा किसान भाई बहन न करी दीज न कोई मई का महीना में भी करज वो भी अच्छो समय रज 40 से 50 दिन में फसल तैयार हुई जाएगा नौका बाद एक सीजन में बहुत बार तुड़ाई हुई सकज न भिंडी तो ऐसी सब्जी छे जेकी मांग हमेशा लगातार बनेल रह तो एक कारण कासी किसान नख लगातार आय भी मिलती रह। भिंडी में कभी सिंचाई की बात करा तो 4 से 5 दिन में एक बार हल्की सिंचाई देने की आवश्यकता रह। न फायदा की देखा है तो एक बार लगावना का बाद भिंडी में कई बार तुड़ाई हुई जाज एकासी बार बार कमाई वाली फसल एक कज लोग। करेला भी गर्मी में सबसे ज्यादा मांग वाली सब्जी छे। करेला गर्मी का मौसम में प्रमुख फसल छे जेखा किसान भाई अप्रैल या मई का महीना में आसानी से बोई सकज। एक ही बेल खबी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है एक कारण बाजार में एक ही कीमत भी अच्छी मिली जाए तो कम पानी में अच्छो उत्पादन देने वाली एक फसल छे करेला की। बहुत सारा भाई करेला की फसल का लगावना का लेना बीज नख पहले पानी में भिगोई न धर देज ओका बाद भिगोल बीज नख लगावज तो ओकासी बीज को अंकुरण अच्छो हो जाए न बेल का सहारो देना थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई दे न कबा जैविक खाद नाखी दे तो कम पानी में अच्छी पैदावार करेला की सब्जी सी मिली जाए। तोरई भी एक बेल वाली फसल छे जी गर्मी का समय में अच्छी तरीका सी बढ़वार पर रज न समय पर बुआई करना पर जल्दी न अच्छो उत्पादन मिलज न बाजार में की मांग भी लगातार बनेल रज। पर नियमित सिंचाई एक लेना भी आवश्यक छे। तोरई की फसल में भी 45 से 55 दिन का अंतराल पर फल आनु शुरू हुई जाए न लगातार तुड़ाई का बाद बाजार की मांग का अनुसार उत्पादन भी अच्छो मिली जाए न पैसों भी अच्छो मिली जाए। बैंगन भी इना समय एक लाभकारी विकल्प छे। एक अपन देखा है कि जिन्ना भाई बहन ना थोड़ा समय पहले बैंगन की रुपाई कर दी उनका भी न अभी जी रुपाई करेगा उनका भी कम समय में न कम लागत में तैयार होने वाली एक फसल मिली जाए न लगातार उत्पादन एक मिला न किसान न की नियमित आय लगातार उनका बनेल रज। बैंगन में तो किसान भाई पहले नर्सरी तैयार कर ले ओका बाद ओकी रोपाई करज तो ऐसी स्थिति में कीट नसी बचाव का लेना उनको उपाय भी आवश्यक रज रोपाई का बाद पर लंबा समय तक फल एकासी मिलता रज यदि कीट न को प्रबंधन समय पर कर लियो न सिंचाई को ध्यान रखी लियो। तो एक अलावा जायद की फसल न सब्जी न की फसल अपन जब बात करे रज तो एक में खीरा छे हरी मिर्ची छे हरा धनिया नबी अपूर्ण न कद्दू की बात करी ये सब गर्मी में आसानी से उगाने वाली फसल न छे न अच्छो मुनाफो देने वाली भी फसल छे। जायद की फसल न में यदि अपन तरबूज न खरबूज की बात करा तो गर्मी का मौसम में तरबूज न खरबूजा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी जाए तो इनकी अच्छी स्थिति में जिन्ना हमारा किसान भाई बहन न समय से की बुआई करी दी थी वो वहाँ उसका थोड़ा सा बस इन्हीं बात को ध्यान रखने की आवश्यकता छे कि ड्रिप चाहे तरीका सी वो की तकनीक अपनाई ले न ओकासी यदि सिंचाई करेगा तो 60 से 70 दिन का अंदर फसल तैयार हो जाएगा न ओकासी भी फल अच्छा मिलना लगी जाए न जब ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें हमारा किसान भाई तो उत्पादन न गुणवत्ता दुआ ही बेहतर हुई जाए। तरबूज न खरबूज की फसल का लेना रेतीली या अपन ने जखा कह रहा था ना कि मिट्टी का नदी का आसपास की रेतीली भूमि न एक साथ साथ हल्की मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त रज न पौधा न की दूरी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ज एकामा क्योंकि फल बड़ो रज तो ओखा बढ़ने का बाद थोड़ी सी जगह चाहिए। पर यदि ड्रिप सिंचाई को उपयोग कर लियो तो आप उन्हें समझा कि लगातार उत्पादन मिलेगा न बाजार में अच्छी मांग का कारण उसकी कीमत भी अच्छी मिलती रहेगा। तो अपन ई समझी सकें कि यदि अपन नख सब्जी न फल न की खेती करनू तो जायद का समय में खाली एक चीज ध्यान रखने की बात छे ऊ छे सिंचाई को सही प्रबंधन। गर्मी का मौसम में पानी को सही उपयोग बहुत आवश्यक छे। नियमित अंतराल पर सिंचाई करना सी खेत में पानी जमा नहीं होना को न कभी ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई सी का तकनीक न का अपनाई लियो तो पानी की बचत भी होगा न फसल की वृद्धि भी बहुत अच्छा तरीका से हुई। इना समय फसल न जी कीट लगी रहा सब्जी के ओकामा या फल का ओकामा तो ओकामा गर्मी का मौसम में फल मक्खी न अन्य कीट फसल न को नुकसान ज्यादा होज तो एक कारण बहुत ज्यादा कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। नीम आधारित जैविक उत्पाद न को उपयोग

0: करीने ना सुरक्षित न प्रभावी तरीका से कीट प्रबंधन करी सकान। हानिकारक रासायनिक दवानों को उपयोग करना की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, या जरूरत पड़ा तो बिल्कुल सीमित मात्रा में को उपयोग करो। तो गर्मी को इस समय किसान भाई बनने का लेना अतिरिक्त आय कमाने को अच्छो अवसर रह। सही फसल, उचित सिंचाई न बेहतर प्रबंधन का साथ हमारा किसान भाई बहन कम समय में अपूर्ण समझा कि 2.5 से 3 महीना का अंतर में अच्छी पैदावार प्राप्त कर ले। न जायत का इना मौसम में फसल न ख अपने न लगाई न किसान अपनी आमदनी ख बढ़ाई लेज, न खेती का लाभकारी बनाई लेज। बहुत बहुत धन्यवाद
1: भाइनोनी। अभी हम सुने रहा था जायद फसल में सब्जी न फल न की खेती, जानकारी दे रही थी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। न हमारा पास अब मंडी ना का भाव आएगा तो वो आपको बता देवा। कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मीबाई नगर मंडी का भाव इस प्रकार से छे। सोयाबीन की आवक रही 714 क्विंटल, जिको भाव रहो 4500 से लगाई न 6990 रुपया, मॉडल भाव 6395 रुपया। गेहूँ की आवक रही 8563 क्विंटल, जिको भाव रहो 2100 से लगे न 2765 रुपया, मॉडल भाव 2399 रुपया। चना की आवक रही 75 क्विंटल, जिको भाव रहो 4800 से लगे न 6605 रुपया, मॉडल भाव 5495 रुपया। मॉडल भाव यानी सबसे ज़्यादा सौदा इनाज भाव में हुआ। मक्का की आवक रही 15 क्विंटल, जिको भाव रहो 1881 एको इक्कीस भाव रहो न। अब कल की भी तय कर लेवा। कल सवेरा खेती की बात में अपन सुनांगा गर्मी का मौसम में खेती में पानी को प्रबंधन कसो करा। न संजा की घड़ खेती ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनांगा फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी। साथ ही अपना प्रगतिशील युवा कृषक भाई जितेंद्र पाटीदार ग्राम गोपीपुर जिला शाजापुर से आलू न लहसुन की खेती पर बातचीत। न सात भाई नोनी अभी मई को महीनों चली रो न इना महीना में तेज गर्मी न लू छे, एक ध्यान में रखते हुए अपना किसान भाई अपनी फसल की सुरक्षा कर, साथ ज अपनी जो अगली फसल छे वो की तैयारी पर भी ध्यान दे। फसल की सुरक्षा की बात करा तो भाई इन्होंने अपना जो गेहूँ चना की जो रबी में फसल लगाई थी वो तो काटी ली होएगा, न उनको भंडारण भी करी ली होएगा। साथ ज अपनी जो फसल अभी खेत में छे उखर लू से बचौना का लेना खेत में हल्की सिंचाई करा। एक अलावा सब्जी न जो बागवानी की फसल न छे न उनका में पानी की नमी बनी न रखना का लेना पराली या फिर प्लास्टिक की मल्चिंग को उपयोग करा। हमारी फसल में कीट न को भी प्रबंधन हम करा, जैसो कि चूसक कीट छे, फल छेदक कीट छे, वो कीट न की निगरानी करता रहा। कदी वो हमका कीट देखा है तो समय के अनुसार हम कीटनाशक दवानों को छिड़काव करा। एक अलावा भाई नोनी जैसी जायद की फसल हमारी कटेगा कि हमका खरीफ की तैयारी भी करनू, तो खरीफ की तैयारी का लेना हमका कटाई के बाद जो हमारी जायद की फसल कटाई जाए उसका बाद खेत खर ट्रैक्टर से गहरी जुताई करी न आसो छोड़ी देवा। एका सिकाई होगा कि हमारी जो मिट्टी में जो हानिकारक कीड़ा छे जो चारा छे वो घाम में अच्छी तरह से नष्ट हो जाएगा। न साथ ज हमारी अगली फसल का लेना उका में खेत में हम गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाला। अभी भाई बहनों अभी हमारा खेत न में तरबूज खरबूज की फसल लगेल छे, कदी खेत खाली हो तो अपन इना समय में मुनाफा देने वाली फसल तरबूज खरबूज ककड़ी या खीरा की खेती करी सकान, या अपने लगाई दे तो समय समय पर हमका ध्यान देने की जरूरत है। एक अलावा अपना खेत में हरी खाद अपन का कभी प्रयोग करनो तो एक लेन अपना खेत में पानी की व्यवस्था हो, जगह भी छे अपना पास, तो अपन हरी खाद का लेन देहचा या सनई की बुवाई करी देवा, जिका से काई होगा कि हमका खाद तो मिलेगा साथ ज हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनेल रहेगा। न एक अलावा कुछ बात नारू ध्यान रखा कि जैसे हम खरीफ की बुवाई करांगा तो खरीफ की बुवाई का लेना हम ट्रैक्टर ड्रिप सिस्टम ने जो भी पंप छे उनकी सर्विसिंग करा ले, उनका मरम्मत करा लेवा, जिका से बुवाई का समय हमका कोई परेशानी नहीं आवे। अपना जो पशु छे उनका छायादार स्थान पर बांधा, पानी को उचित प्रबंधन करा न उनका भी लू से बचावा। साथ भाई होनी पशु न का साथ साथ फसल का साथ साथ अपनों खुद को भी ध्यान रखा कि कभी जरूरी नहीं हो तो 12 से 4 का बीच में अपन घर से बाहर नहीं निकला, न कभी निकल ही रहा हो तो अपना माथा पर गमछो बांधी लेवा, साथ में पानी भी रखा साथ में, न तुरंत कभी अपन का सो लगा कि अपनी तबीयत खराब ही रही तो थोड़ी देर पेड़ की छाव में बैठी जावा। न ई सब बात न ध्यान रखांगा तो भाई बहन अपन भी स्वस्थ रहेंगे, अपनी फसल भी अच्छी रहेगा और अपना जो पशु रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। न भाई बहन आज मंगलवार छे, न मंगलवार का दिन अपन रामायण पाठ सुना तो अपन सुना रामायण पाठ सीताराम वर्मा की आवाज़ में।

0: भाई उन सीताराम वर्मा का गायल ये रामायण पाठ का साथ ताज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय भी समाप्ति रोज अपनी बहन का देव आ गया राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी इंदौर है। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
3: देश में हुए 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के नतीजे जो हैं अब हमारे सामने हैं। कल इन सारे असेंबलीज में गणना हुई है। हम आज बात कर रहे हैं 2 खास राज्यों की जिनका डिसाइसिव मैंडेट है, एक हिस्टोरिक मैंडेट भी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये अब नंबर्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आज उसके पास 206 सीटें उन्होंने जीती हैं। ये 2/3 का बहुमत है उनके पास जिससे वो इंडिपेंडेंटली सरकार वहां बना सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक वहां पावर में थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके 80 सीटें हैं। एक असेंबली की 294 सीटें हैं टोटल पश्चिम बंगाल में। एक में फाल्टा में जो है इलेक्शन कमीशन ने रीपोल ऑर्डर किया है, वो बाद में होगा कुछ दिनों के बाद। अदिति जी, मैं आपसे 2 चीजें जानना चाह रहा था। हम तमिलनाडु पर इसके बाद जाएंगे, हम दोनों ही राज्यों के बारे में बात करेंगे, बट जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका क्या मायने हैं इस जीत के बीजेपी के लिए और क्या मायने हैं इस हार के टीएमसी के लिए।
4: देखिए, भाजपा के लिए इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं 2 वजहों से। पहली वजह ये है कि उनका सारा जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो बंगाल और बंगाल की जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म है उससे जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। भाजपा को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल प्लेज और कमिटमेंट सालों साल रहा आर्टिकल 370 हटाना JNK से, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था जिसको भाजपा ने 2019 में पूरा किया। तो एक तो ये, दूसरा ये कि भाजपा की राजनीति में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा महत्व है, हम सब जानते हैं। उनके जो आइकॉन्स हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के लिरिसिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या श्री अरबिंदो हो, ये सब बंगाल से आते हैं। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो ब्रिटिश ने इसलिए किया था क्योंकि बंगाल की जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है उसको तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने स्पीचेस में बहुत बार किया है। तो एक तो ये, और दूसरा कारण ये है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसका सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है हर भारतीय स्टेट में, अगर आप देखें कंपेयर करके। करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से है जहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब जब भाजपा यहां जीत चुकी है तो अपने तरीके से इस स्टेट को चला सकती है, और उनकी पहली जीत है बंगाल की हिस्ट्री में, तो इसलिए इसका महत्व है।
3: मैं बंगाल पे फिर आपको लेकर आऊंगा, बट उसके पहले हम तमिलनाडु की भी बात करना चाहेंगे, जहां पर टीवी के जो विजय हैं, विजय जो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने 2024 में ये पार्टी लॉन्च की थी और आज इस चुनाव में उनके पास 108 सीटें आ गई हैं। ये एब्सोल्यूट कंप्लीट मेजोरिटी तो नहीं है, वहां 118 सीटों की दरकार है सरकार बनाने के लिए।

0: 234 सदस्यों की असेंबली है, और डीएमके जो वहाँ पावर में थी वो 59 सीट्स, और एआईएडीएमके और उनके एलाइज 47 सीट्स हैं। तो वहाँ पर जो विक्ट्री है, आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि ये द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का कुछ अंत जैसा दिखता है, तो इस राज्य की और इस विक्ट्री का आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है अदिति जी कि ये किस तरह की विक्ट्री है, इसके मायने क्या हैं?
1: देखिए, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और एक टेक्टोनिक शिफ्ट है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। अगर आप 1957 से लेके आज तक की राजनीति तमिलनाडु में देखें तो दो द्राविडियन पार्टीज ने उसको डोमिनेट किया है। द्राविडियन पॉलिटिक्स क्या है नीला? द्राविडियन पॉलिटिक्स के दो पिलर्स हैं। पहला तो ये पिलर है कि रीजनल आइडेंटिटी, तमिल आइडेंटिटी की ये लोग बात करते हैं, ये एंटी हिंदी इम्पोजिशन की बात करते हैं। तीसरा, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, लार्जली एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी सनातन एंड एंटी जिसको कहते हैं हिंदी पॉलिटिक्स
0: हाँ,
1: रहती है।
0: पश्चिम बंगाल पे वापस आते हैं और तमिलनाडु पर, दोनों पर ही इनफैक्ट, कि अब दोनों ही जैसा है कि अब एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो तो हो गया, इलेक्शंस कैंपेन हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए, अब है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार की बनाने की प्रक्रिया। तमिलनाडु में तो एक दूसरा डायनेमिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वहां पर सरकार के पास एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, बट पश्चिम बंगाल के बारे में यदि बात करें तो प्रोसेस चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो इसके सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, साथ ही साथ उनके को ऑब्जर्वर भी हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। तो ये प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव की रैली में भी कहा था कि यदि हमें मैंडेट मिलता है तो हम 10 मई के पहले सरकार बनाएंगे। तो मेरा आपसे ये समझना था कि क्या किस तरह की प्रोसेस होगी, अब क्या कैसे एक चीफ मिनिस्टर के नाम को फाइनलाइज किया जाएगा, और कौन प्रोबेबल है? शुभेंदु अधिकारी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, क्या वो इसके सबसे प्रबल दावेदार हैं?
1: जी, शुभेंदु अधिकारी इसलिए दावेदार हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में वो तृणमूल कांग्रेस से आए ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी को दो बार हराया है, 2021 में नंदीग्राम से और अब भवानीपुर से कल दोबारा हराया है। और बीजेपी की जो साइड में एक्सपेंशन चल रही थी एक लंबे प्लान के तहत, उसको बहुत बल शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में दिया है क्योंकि वो टीएमसी की राजनीति को अंदर से अच्छे से पहचानते थे और टीएमसी की राजनीति को तोड़ने के लिए कोई अंदर का स्ट्रेटेजिस्ट जरूरी था। जो काम हेमंत बिश्व शर्मा ने भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में किया है, वो भी कांग्रेस से आए थे आपको याद है, वही काम शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से भाजपा में आए उन्होंने सैफरन फोर्सेस के लिए किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के ज्यादा चांसेस है।
0: और जैसा कि अब सरकार बनने की प्रक्रिया है, तो जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद नाम फाइनलाइज होंगे और उस तरह से ये प्रोसेस जाएगा, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंस है इस काम में, तभी शायद गृह मंत्री खुद सेंट्रल, और मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता है कि कभी वो शायद पहले एक किसी इलेक्शन में थे, आप बेहतर बता पाए
1: नहीं,
0: इसके।
1: आप

0: जैसा कि हम बात कर रहे थे मैम कि 118 का वहाँ पर मैजिक फिगर है या सिंपल मेजोरिटी 118 सदस्यों के आने पर होती है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एफर्ट होगा टीवीके का? आज टीवीके ने सरकार बनाने का क्लेम भी प्रस्तुत किया है, गवर्नर को लिखा है विजय ने, उन्होंने ईमेल किया है उनको एक पत्र और कहा है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है। और मैं कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स को सुन रहा था जहाँ उनका कहना था कि कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, IUML, CPI, CPIM और VCK, इनके पास 2 विधायक है और DMDK के पास एक। तो क्या यहाँ पर डिले हो सकता है? क्या आपको लगता है ये सरकार आसानी से बन जाएगी?
1: देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति उत्पन्न हुई है तमिलनाडु में। जैसा आपने कहा कि एक्टर विजय, जिनकी सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, उन्होंने द्राविडियन पार्टीज को हराकर अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये जाहिर है। अब उन पर निर्भर है निलाब कि वो किसका समर्थन लेना चाहते हैं। उनको कोई भी समर्थन देने को तैयार होगा। अन्ना डीएमके लेड बीजेपी एनडीए अलायंस भी तैयार होगी, कांग्रेस भी तैयार होगी, और जैसा आपने कहा बाकी दल भी तैयार होंगे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विजय एनडीए अलायंस के साथ जाते हैं तो सेंटर में भाजपा रूल होने की वजह से उनको फायदा हो सकता है गवर्नेंस को आसान करने में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि विजय की जो राजनीति है वो थोड़ी एंटी बीजेपी, एंटी अन्ना डीएमके, उन्होंने अपनी रैलीज में भी इन लोगों के खिलाफ बयान दिए थे, तो आसान नहीं होगा इनके साथ जाना। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस, जिसके पास 5 सीटें हैं, एक VCK पार्टी है तमिलनाडु की, उनके पास 2 सीट्स आई हैं कल, और CPI के पास भी 2 सीट्स हैं और CPIM के पास भी 2 सीट्स हैं। तो अगर ये चारों इकट्ठे हो जाएं, अपने आप को सेक्युलर ब्लॉक बता रहे हैं ये लोग, ये इकट्ठे होके 11 सीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और TVK को मेजोरिटी लाइन के पार कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
0: बिल्कुल अदिति जी, फिर से आपको बंगाल की एक बात पे ले जाना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि मुद्दे बहुत सारे थे वहाँ, और बंगाल में हमने देखा SIR का बिल्कुल लास्ट समय तक वहाँ ट्राइब्यूनल्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है। आपने बॉर्डर का बात किया, पश्चिम बंगाल का, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल दोनों ही का बहुत लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, इन्फिल्ट्रेशन का इशू रहा है, रिवराइन बॉर्डर्स हैं, कई पोरस गैप्स हैं जो आज भी फेंस नहीं है, तो इसके कारण से ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात है, 15 साल की TMC सरकार थी, नौकरियों की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, बिजनेस की हो, सारी बातें हैं। वैसे तो एक ही दिन हुआ है, अभी तो बहुत सारा एनालिसिस फिगर्स का और क्लेम्स काउंटर क्लेम्स का बकाया है, बट आपको क्या लगता है, कैसा आप समझते हैं इसको कि किस तरह से ये मुद्दे लोगों के दिमाग में और उनके एक्चुअल टर्नआउट पे इफेक्ट किए होंगे?
1: देखिए निलाब, जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है किसी पार्टी को तो वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कभी नहीं मिलता है। हर फैक्टर का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहता है। SIR ऑफकोर्स एक फैक्टर था बंगाल में, कोई उसको नकार नहीं सकता है, और हम सब जानते हैं कि 20 लाख के करीब लोग अभी एडजुडिकेशन में हैं, और बहुत सारे जो बोगस वोट्स थे वो हटाए भी गए हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो बहुत पीरियड्स पे होती रही है और ओवर ड्यू थी, और इसलिए हर जगह हुई है और भी स्टेट्स में हुई है। सेकेंड जो फैक्टर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ गया है, वो महिला सेफ्टी को लेके जो टेंशंस थी महिलाओं के बीच, RG कार में जो रेप केस हुआ था उसमें जो ममता बनर्जी का रुख रहा था, वो सिंडिकेट राज जो है, लोगों को पैसा देना पड़ता है काम करवाने के लिए, उससे भी लोग दुखी थे। एक टीचर स्कैम वहां बहुत बड़ा मुद्दा बना, उससे भी दुखी थे। प्लस जो भाजपा ने इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन की बात कही, और ये भी प्रॉमिस किया कि 6 महीने में सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, इन सब बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और प्राइमा फेसाई जब हम डेटा को देखते हैं तो हम ये पाते हैं नीला, कि ना सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन भाजपा के पीछे नजर आ रही है, महिलाओं ने भी भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया है और ट्राइबल वोट भी बहुत हद तक भाजपा को पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट, जो ऐसा माना जा रहा था कि एन ब्लॉक TMC को जाएगा, वो नहीं गया है, तो
0: जी
1: वो
0: हाँ,
1: एक विश्लेषण का विषय है।
0: मैं आपसे तमिलनाडु के बारे में भी एक सवाल करना चाहूंगा, बट मैं वो अंत में पूछता हूँ, हम बंगाल पे हैं तो उसी पे। मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि अब उनको मैंडेट आ गया है, 5 साल सरकार उन्हीं ने चलानी है, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं आप? क्या प्रायोरिटीज होंगी? बीजेपी ने क्या कमिट किया था और अब आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से, जिस तरह से अपनी डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, सेंटर में भी है, तो ये भी आरोप था केंद्र सरकार का कि जो कई सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तो आप मैनिफेस्टो और जो केंद्र सरकार का अपना पॉलिसी है उसको कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा अब बंगाल में?
1: देखिए, सबसे पहली बात जो भाजपा करने जा रही है, वो प्रधानमंत्री ने कल अपनी विक्ट्री स्पीच में ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत स्कीम लागू हो जाएगी बंगाल में। सबसे पहला तो वो वेलफेयर स्टेप हो जाएगा लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच को कल सुने, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कल कि भारत जब गोल्डन एज में था उस वक्त अंग

0: बंग और कलिंग, ये तीन प्रदेश और ये तीन सेगमेंट्स भारत की विकसित यात्रा में बहुत बड़े स्तंभ थे। अंग से मतलब बिहार, बंगाल और कलिंगा उड़ीसा। अब इस वक्त एक ऐसा संयोग है कि इन तीनों स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा था कि इन तीनों सेगमेंट्स को हम दोबारा उनकी प्रिस्टीन ग्लोरी, जो प्रीवियस ग्लोरी है, वहां तक लेके जाएंगे, जिसका जाहिर सा मतलब ये है कि इंडस्ट्री को भी लौटाएंगे, इकोनॉमिक रिजुविनेशन करेंगे इन रीजन्स की। क्योंकि आप जानते हैं नीला, कि जो बंगाल है वो इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस होता था
1: जी हाँ,
0: ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इनरोड्स जो भारत में बनाए थे वो कलकत्ता से ही बनाए थे। कलकत्ता के ट्रेडर्स को ही उन्होंने कोल्यूजन में भारत में एंट्री की थी। तो कलकत्ता एक बहुत रिच रीजन होता था हमारे देश का, इतना रिच होता था कि 10.5% भारत की जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन होता था, जो आज की डेट में 5% से नीचे चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक तो इलीगल जितने भी लोग हैं उनको डिपोर्ट करेगी, दूसरा यूसीसी कायम करेगी, वेलफेयर पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेगी, उन्होंने जितने भी ममता बनर्जी के प्रोग्राम्स चलते हैं, लक्ष्मी भंडार स्कीम वगैरह, उनका डबल अनाउंस किया था फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। जैसे अगर ममता बनर्जी 1500 दे रही हैं तो भाजपा ने 3000 का प्रॉमिस किया है,
1: जी
0: वो
1: हाँ,
0: सब भाजपा को देना होगा। और मुझे लगता है इकोनॉमिक रिजुविनेशन एक बहुत बड़ा प्लान बीजेपी सरकार का वहां होने वाला।
1: तमिलनाडु पे जाते हैं आप। टीवी के 2024 की स्थापित की हुई पार्टी है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आम आदमी पार्टी जो न्यूली फॉर्म हुई और उसके बाद तुरंत सत्ता में आई, तो अदिति जी कैसे देखते हैं आप, क्या ये नई पार्टियां एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग विद ब्यूरोक्रेट्स, अफसरों के साथ काम करना, कर्मचारियों के साथ काम करना, तो कैसे देखते हैं आप कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन कर पाएंगी एक एक नई पार्टी, क्या ये बहुत मुश्किल होता है?
0: नीलाभ, अगर आप तमिलनाडु की गवर्नेंस देखेंगे तो ज्यादातर वहां ब्यूरोक्रेसी ही सरकारें चलाती आई है, और विजय को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करके, और अपनी सूझबूझ से अगर वो चलेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति को अच्छे से चला पाएंगे और गवर्नेंस को भी।
1: इन सारे ही मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। लीजिए श्रोताओं, आपने याद किया और मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेश जैन। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले किस्मत फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा है नूर देवासी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

सब कुछ खुदा से मांग लिया एक तुम्हें मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद।

आंसुओं को लाख समझाया तन्हाई में आया करो, यूं भरी महफिल में तमाशा बनाया ना करो। आंसू तो फिर आंसू है, तड़प कर बोले तुझे भरी महफिल में अकेला पाया तो चला आया।

वीर जारा। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, बोल जावेद अख्तर के, संगीत मदन मोहन का।

दिल ने फिर याद किया कि नगमों के इस आसमान को समेटते हैं, फिर होगी मुलाकात, फिर होगी दिलकश गीतों की बरसात। फिलहाल इजाजत दीजिए अपने दोस्त राजेश जैन को। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी इंदौर है। 8:45 होने को हैं। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
2: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालयों न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता

0: बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर

0: पर बंद हुआ। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupees ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancement. enhancing production technologies, and the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
2: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
1: The scheme aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost cotton production to 498 lakh bales by 2030-31. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. The minister shared that the scheme aims to provide credit guarantee support to help businesses manage short-term liquidity mismatches arising from the West Asia crisis. Under the scheme, 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The guarantee coverage will be offered to member lending institutions by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited for the amount in default under the additional credit facility extended to eligible borrowers. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for the 2026-27 sugar season based on a basic recovery rate of 10.25%. Mr. Vaishnav said the decision will benefit around 5 crore sugarcane farmers along with nearly 5 lakh workers employed in sugar mills and related ancillary activities. The Union Cabinet also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride or GaN technology along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnav said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees.
3: We come to two new semiconductor units. Up until now, 10 semiconductor units have been approved under the India Semiconductor Mission. Out of these, commercial production has already begun in two. Prime Minister Modi inaugurated the first one on March 31st and the second one on April 30th. The positive news is that both plants have achieved full capacity booking. In other words, whatever they produce has already been completely booked.
2: Fully uski booking ho chuki.
1: The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnav said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanction strength of judges in the Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Varinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to three internationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi emphasized that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Several countries including Japan, Ireland, Austria, Saudi Arabia and Jordan today condemned the recent attack carried out by Iran on the UAE. Meanwhile, addressing a press briefing at the Pentagon, US Defense Secretary Pete Hegseth today said that the US-Iran ceasefire is not over as tensions rise in the Strait of Hormuz. A fragile ceasefire in West Asia came under renewed strain today as the UAE reported fresh missile and drone attacks launched from Iran, even as US naval forces pushed ahead with operations in the Strait of Hormuz. Wong from our West Asia correspondent.
4: The situation across West Asia remains volatile, with multiple flashpoints threatened to unravel already fragile ceasefire arrangements. The Strait of Hormuz has once again become a focal point of confrontation as US forces intensify efforts to secure commercial shipping lines. The UAE's industry

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया गीत सुनिए, बोल अख्तर रोमानी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

आदाब सामईन, आकाशवाणी भोपाल के इस खसूसी प्रोग्राम कहकशां के आबशार गजल में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। मैं हूँ आफरीन बानो। दोस्तों, आज की ये पेशकश एक खास उनवान के साथ आपके सामने पेश करने आई हूँ। उनवान है इल्म, मालूमात और तफरीह का मजमूआ आकाशवाणी, और ये पेशकश वक्फ है आकाशवाणी के उस अजीम सफर के नाम जो 8 जून 1936 से शुरू होकर 8 जून 2026 तक अपने 90 साल मुकम्मल कर रहा है। सामईन कराम, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक आवाज का सफर है। एक ऐसी आवाज जिसने इल्म दिया, मालूमात पहुंचाई और तफरीह के जरिए लोगों के दिलों को जोड़े रखा। आइए इस सफर को शुरू से महसूस करते हैं। अगर हम इस सफर की इब्तिदा देखें तो हमें जाना होगा सन 1923 में, जब बम्बई में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के जरिए पहला नशरिया हुआ। सोचिए जरा, वो वक्त जब न वसाइल थे, न जदीद टेक्नोलॉजी थी, लेकिन एक ख्वाब था लोगों तक पहुंचने का। फिर सन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कायम हुई, जिसने बाकायदा नशरियात का आगाज किया। लोग जुड़ने लगे, आवाज

दूर तक पहुंचने लगी, लेकिन माली मुश्किलात के बाइस ये सिलसिला ज्यादा देर ना चल सका और सन 1930 में ये बंद हो गया। मगर जहां जज्बा हो वहां रास्ते रुकते नहीं, इसीलिए सन 1930 में हुकूमत हिंद ने इसकी अहमियत को समझा और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कायम की। ये एक अहम कदम था जिसने आने वाले वक्त की बुनियाद रखी। सामईन कराम, हर शुरुआत के पीछे एक तलाश होती है, एक बेचैनी भी होती है और कभी कभी यही जस्तजू इंसान को एक तवील सफर पर ले जाती है और यही कैफियत इसी गजल में भी झलकती है। हम इस सफर की बात और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गजल गुलाम अली की आवाज में। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। समाप्त कीजिए।

वाह, अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की मखमली आवाज में दिलकश गजल। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। दोस्तों, कभी कभी यही सफर, यही जुस्तजू इंसान को एक नई पहचान दे देती है, और आकाशवाणी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिर आया वो दिन 8 जून 1936, जब इस सर्विस को एक नई पहचान मिली, ऑल इंडिया रेडियो। यही वो लम्हा था जिसने रेडियो को एक कौमी शिनाख्त दी, जैसा कि नाम से जाहिर है। बाद में इसे एक खूबसूरत नाम दिया गया, आकाशवाणी, यानी आसमान से गूंजने वाली आवाज। और वाकई सामईन, ये आवाज सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि महसूस की गई। और एक वक्त ऐसा आया जब पूरा मुल्क तब्दीली के मरहले से गुजर रहा था। मैं बात कर रही हूँ आजादी के दौर की। 15 अगस्त 1947 की वो तारीखी रात जब आजादी का ऐलान हुआ, ये ऐलान उसी आवाज के जरिए घर तक पहुंचा जिसका नाम है आकाशवाणी। वो लम्हा सिर्फ एक खबर नहीं था बल्कि एक जज्बाती तजुर्बा था। आकाशवाणी उस लम्हे में कौम की आवाज बन चुकी थी। आजादी के बाद भी इसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, इसने लोगों को जोड़े रखा और उन्हें आगाह किया और एक बेहतर माशरे की तशकील में हिस्सा लिया। सन 1971, सन 1965, सन 1962 और सन 1999, ये वो साल थे जब मुल्क ने जंगों का सामना किया। ऐसे वक्त में आकाशवाणी ने सही और बरवक्त मालूमात फराहम की, खबरें दी, लेकिन इसके साथ साथ हौसला भी दिया। मुल्क के कोने कोने में लोग एक ही आवाज से जुड़े रहे, वो आवाज थी आकाशवाणी की आवाज। सरहद पर सिपाही हो या घरों में बैठे शहरी, सबको एक ही एहसास मिला, हम साथ हैं। और ये एहसास कराया आकाशवाणी ने। सामईन अजीज, वक्त सब कुछ बदल देता है, हालात भी, तारीख भी, और कभी कभी इंसान की सोच भी। हम इस बदलते हुए वक्त की और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल। वक्त तारीख के पाए को बदल देता है, वक्त जर्रे को भी तूफान का बल देता है। आवाज है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की, समाअत कीजिए।

वाकई सामईन, वक्त बदलता है मगर जिम्मेदार आवाज़ें हर दौर में अपनी जगह कायम रखती हैं। जिंदगी में मुश्किल वक्त सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं, आफात भी आती हैं, सैलाब, जलजले, तूफान, ऐसे हर वक्त में आकाशवाणी ने लोगों तक सही मालूमात पहुंचाई, खास तौर पर देही और दूरदराज इलाकों में जहां दीगर ज़राए महदूद होते हैं, वहां ये एक अहम जरिया बना। हालिया बरसों में कोविड-19 जैसी आलमी वबा के दौरान भी आकाशवाणी ने लोगों को रहनुमाई दी, सेहत से मुतालिक हिदायत, सरकारी स्कीमें और बेदारी के पैगामात, ये सब सादा और काबिले फहम अंदाज में पहुंचाए गए। आकाशवाणी सिर्फ खबरों का जरिया नहीं, ये सकाफत का मुहाफिज भी है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या कर्नाटक, इसे फ़रोग देने में आकाशवाणी का अहम किरदार रहा है। कितने ही बड़े फनकार इसी प्लेटफॉर्म से सामने आए, लोक मौसीकी की बात की जाए या इलाकाई सकाफत की, सबको यहाँ जगह मिली। फिल्मी नगमे हों या गज़लें हों या भजन हों, हर सिन्फ को सामईन तक आकाशवाणी के ज़रिए पहुँचाया गया और इस तरह से आकाशवाणी एक जिंदा सकाफती दस्तावेज़ बन गया। आकाशवाणी ने हमेशा समाज के हर तबके को मद्देनज़र रखा, नौजवानों के लिए तालीम और करियर से मुतालिक प्रोग्राम दिए, ख्वातीन के लिए सेहत, तालीम और ख़ुद मुख्तारी जैसे प्रोग्राम दिए, बच्चों के लिए कहानियाँ और तालीमी मवाद दिया और किसानों के लिए किसानवाणी जैसे प्रोग्राम, जिन्होंने ज़रई मालूमात को गांव-गांव तक पहुंचाया। सामईन इकराम, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिल के बहुत करीब आ जाती हैं और फिर उनसे एक रिश्ता सा बन जाता है। इसी अपनाइयत के एहसास को इस गज़ल में बड़ी खूबसूरती के साथ बयां किया गया है। हम इस रिश्ते की बात और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक और दिलकश गज़ल, कभी तो मेहरबान होकर बुला लो। गुलाम अली की आवाज़ में कलाम है हबीब लतीफ़ का, समाप्त कीजिए।

वाह, गुलाम अली की आवाज़ में हबीब लतीफ़ का कलाम अभी आप सुन रहे थे। यही तो वह एहसास है जो आकाशवाणी को सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक रिश्ते में बांधता है। आज के दौर में मन की बात जैसे प्रोग्राम ने आकाशवाणी को एक नई पहचान दी है। ये प्रोग्राम हर महीने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, जहां आवाम की बात हुकूमत तक और हुकूमत की बात आवाम तक पहुंचती है। और इस बात की मिसाल है हमारे मुल्क के वजीर आजम, जिन्होंने अपनी बातों को आकाशवाणी के जरिए आवाम तक पहुंचाया। इसी के साथ साथ आकाशवाणी ने डिजिटल दौर में भी खुद को ढाला है। FM चैनल्स में, मोबाइल ऐप्स, पॉडकास्ट, आज ये हर जगह मौजूद है, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। तो सामईन अजीज, 90 साल का ये सफ़र सिर्फ वक्त का सफ़र नहीं, ये इल्म का सफ़र है, मालूमात का सफ़र है और तफरी का एक हसीन इम्तजाज है। और सबसे बढ़कर ये एतमाद का सफ़र है, जहां भरोसा है, यकीन है। आज भी जब बेशुमार ज़राए मौजूद हैं, इस दौर में भी आकाशवाणी अपनी सादगी और सच्चाई के बायस खास मकाम रखती है। तो अब वक्त का इशारा है कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन चलते चलते मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि एक भरोसा है। तो अब दीजिए मुझको इजाज़त। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें खतूत के ज़रिए ज़रूर मुतला करें। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। तो दीजिए मुझको इजाज़त, आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत है मन भावन।

श्रोताओं, आपके फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन में मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त राजेश जैन। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें और कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए पत्थर के सनम। इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में, शब्दकार हैं मजरूह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। लावरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्य। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललिता, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल।

एन इवनिंग इन पेरिस, ये है फिल्म का नाम। आवाज मोहम्मद रफी की, साथी कलाकार आशा भोसले। इसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। ग्राम लोहारी से राजेश धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री। मानपुर से विजय वेद, रानी, महिमा, नीतू वेद और इनके बहुत सारे दोस्त। हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोले। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवाना राही, इमरान राजा, आलम शेख, मोहम्मद वकील राही और चांदनी नाज। ग्राम रतनपुर झिरन्या से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, बलदेव और अरुणा दामोदर।

0: आंधी। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत सुनिए। इसे लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा दतरेंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राशि और शीतल साबले पाटिल, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, चित्रा, निशा भंडारे और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम भड़बुंजी से रघुनाथ मालवीय, रीना, सुषमा, दुर्गा, परी, सुषमा, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश मालवीय।
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

मन भवन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं कुर्बानी फिल्म का गीत कंचन की आवाज में। साथी कलाकार मनहर और आनंद, इसे लिखा है इंदिवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं राजीम से अनिल, अंजू, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या आदि, बीटी वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, काना, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्य, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवाणकर।

इस गीत के साथ ही आज का मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को आज्ञा दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी इंदौर है। शास्त्रीय संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, 11 बजा चाहते हैं, समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमा के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1,130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रूपये मिलेंगे। भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupee ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam, TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators